FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, आज शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की चतुर्थी है। तदनुसार 25 मई 2026 सोमवार का दिन है। हमारी आज की प्रातकालीन सभा अब आरंभ होती

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है।

0: से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
1: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
2: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी सीपीआईएम के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, इस समय 6:05 हो चुके हैं। आपको बताते हैं आज दिन भर में हमारे प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण और उनका प्रसारण समय।

अब से कुछ ही समय पश्चात 6:10 का समय होगा चिंतन का। 6:15 पर आप सुन पाएंगे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। 6:45

पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार 7:20 पर आप सुन पाएंगे श्री रामचरितमानस गान 7:30 पर कार्यक्रम नमस्कार चूरू 8:00 दिल्ली से प्रसारण होगा समाचार प्रभात का 8:15 पर आप सुन पाएंगे मॉर्निंग न्यूज 8:30 पर आप सुन सकेंगे झलकी 8:45 का समय जयपुर से कार्यक्रम समाचार तरंग का 9:00 हिंदी में प्रादेशिक समाचार इसका प्रसारण आकाशवाणी जयपुर से किया जाएगा और इसके पश्चात आप सुन पाएंगे 9:10 पर देशगान 9:15 पर फिल्मी कव्वाली का कार्यक्रम होगा महफिल इसके पश्चात 9:30 ये समय होगा किसी एक कलाकार के जीवन पर केंद्रित फिल्म संगीत के कार्यक्रम चित्रलोक का 10:00 आकाशवाणी मुंबई से आप सुन पाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम 11:05 पर फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत 12:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम सुन पाएंगे आप उमंग 12:30 का समय होगा लोक संगीत के कार्यक्रम माटी के स्वर का इसके पश्चात 1:00 जयपुर से हिंदी में प्रादेशिक समाचार 1:05 का समय महिलाओं के कार्यक्रम घर आंगन का इसके पश्चात 2:00 आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित होगा मिड डे न्यूज और 2:15 पर दिल्ली से ही प्रसारण होगा दोपहर समाचार का 2:30 पर ईमेल्स पर आधारित फिल्म संगीत का फरमाइश कार्यक्रम सुन पाएंगे आप मेल बॉक्स इसके पश्चात हमारी सायंकालीन सभा में शाम 5:00 युवाओं के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी और इसके पश्चात 6:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार 6:10 का समय होगा देशभक्ति फिल्मी गीत का और 6:20 पर आप सुन पाएंगे संस्कृत में समाचार 6:30 का समय आकाशवाणी जयपुर से प्रसारण का जिसके अंतर्गत आप सुन पाएंगे 6:30 पर हिंदी में प्रादेशिक समाचार 6:40 पर जिले की चिट्ठी और 6:45 पर राजस्थानी में प्रादेशिक समाचार 7:00 का समय किसान भाइयों के कार्यक्रम खेती और गृहस्थी का और इसके पश्चात फिल्म संगीत का कार्यक्रम आप सुन पाएंगे 8:00 8:45 पर दिल्ली से प्रसारण होगा समाचार संध्या का और 9:00 न्यूज एट 9 9:15 पर आप सुन पाएंगे राजस्थानी लोक संगीत 9:30 का समय दिल्ली से कार्यक्रम पब्लिक स्पीक का रात्रि 10:00 जयपुर से प्रसारण होगा खेल जगत का 10:30 पर आप सुन पाएंगे सुगम संगीत रात्रि 11:00 दिल्ली से हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार श्रोताओं ये है हमारा आज का कार्यक्रम विवरण।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण और अब समय है चिंतन का। चिंतन के लिए आज हमारे पास जो विचार है वो बताएं आपको कि खुशी भविष्य में ढूंढने वाली चीज नहीं है, ये तो आपके वर्तमान के फैसलों और दृष्टिकोण में छिपी होती है। श्रोताओं, भविष्य में हमें क्या मिलना है ये निर्भर करता है कि आज वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, यानी भविष्य का फल आज के बीज रोपण पर निर्भर करता है। आज हमने जो बोया है उसी को हम भविष्य में काटते हैं। ये बहुत सी सामान्य बात है, इसमें कोई भी विशेष तकनीकी बात नहीं है। हर कोई जानता है कि आज जो कर रहे हैं उसका परिणाम हमें कल प्राप्त होगा, परसों होगा, जिस प्रकार से प्राप्त होना है उसका परिणाम हमें प्राप्त होता है। लेकिन उसके बावजूद भी स्थितियां ये बनती है कि व्यक्ति अपने भविष्य को बिगाड़ लेता है। अब इस पर विचार कीजिए, जब सब कुछ पता है कि आज जो हम करेंगे वो कल के लिए है, आज जैसा भी कार्य हम कर रहे हैं उसका परिणाम ही हमें कल के तौर पर मिलेगा, उसके बावजूद भी हम बेहतर परिणाम, बेहतर भविष्य क्यों नहीं बना पाते? इसके पीछे अगर आप विचार करेंगे तो आप पाएंगे कि व्यक्ति ये सोचता है कि भविष्य में क्या होगा उसके बारे में विचार बाद में करेंगे, आज हमें ये जो करना है, जो हमारे लिए सुखप्रद है, जो हमें अच्छा लग रहा है वो कर लेते हैं, क्योंकि कुछ अच्छा भविष्य बनाने के लिए वर्तमान में हमें किसी न किसी प्रकार की मेहनत करनी पड़ती है, किसी न किसी ऐसे विचारों को त्यागना पड़ता है जो शायद आज हमें सुखदायक लगे, जो आज हमें कुछ न कुछ सुकून प्रदान करे। बहुत सी स्थितियां जो आज हमें आराम का एहसास करवाती है, उन स्थितियों से जब हम अपने आप को नहीं निकाल पाते हैं तो उसका परिणाम हमें निश्चित रूप से नकारात्मक ही प्राप्त होता है। सकारात्मक प्राप्त करने के लिए, उस परिणाम के लिए जो भी वांछित कार्य हमें आज करने होते हैं उनसे अगर हम अपने आप को बचाते हैं तो फिर निश्चित मानिए कि आपने जो बोया है वही आपको काटना पड़ेगा। सब जानते हैं इसके बारे में, लेकिन इसके बावजूद भी हम अपने आप को बहुत सी सुविधाओं से, बहुत से आराम के पलों से अलग नहीं कर पाते। हम ये नहीं सोच पाते कि आज का जो मौज मस्ती का समय हम बिता रहे हैं वो कल हमारे लिए दुखदायी हो सकता है, लेकिन अगर आज का समय हम मेहनत से बिता लें तो उस स्थिति में हमारा कल बहुत बेहतरीन होगा। तो ऐसे में आप ध्यान रखिए कि आप आज जो कर रहे हैं उसका परिणाम कल आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा, लेकिन इसके लिए आपको आज अपने मेहनत का, अपने समय का निवेश करना पड़ेगा। अगर आज आप करते हैं तो उसका परिणाम आप कल प्राप्त करेंगे। युवा पीढ़ी के लिए अगर हम इस संदर्भ में बात करें तो युवा पीढ़ी अपने युवावस्था में अपना समय बहुत से ऐसे कार्यों में बिता देती है जो कि किसी भी प्रकार से उनके जीवन के लिए आवश्यक नहीं होता है, या फिर हम उनको सकारात्मक नहीं कह सकते, लेकिन मौज मस्ती में वो समय बिता देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो समय बीत जाता है और जो युवावस्था में किया गया कार्य होता है उसका परिणाम उनको आगे जाकर भुगतना पड़ता है, क्योंकि कर्म फल
निश्चित रूप से व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, उनसे व्यक्ति किसी भी सूरत में बच नहीं पाता है। इसलिए आज के इस चिंतन में हमें इसी बारे में चिंतन करना है कि अगर हम चाहते हैं कि अपना बेहतर भविष्य हम प्राप्त कर सके, तो आप वर्तमान को बेहतर बना लें। इसके लिए किसी प्रकार की मेहनत की, किसी प्रकार के बलिदान की आवश्यकता पड़ती है तो वो देना चाहिए। चिंतन में इतना ही, और अब भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

ये भक्ति रचना अभी आप सुन रहे थे शंकर महादेवन और साथियों की आवाज में। अगली भक्ति रचना चंद्रशेखर गाडगिल और साथियों की आवाज में।

शुद्धों में सुभक्ति रचना के साथ ही भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम वंदना यहीं संपन्न होता है। एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 6:45 हो चुके हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार। कार्यक्रम की पहली प्रस्तुति लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में। इस गीत को लिखा है गुलजार ने और संगीत आरडी बर्मन का। फिल्म का नाम घर।

हमराज फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में। इस गीत को लिखा साहिर लुधियानवी ने और इसे संगीत से सजाया रवि ने।

किसी ना मान जाएगी। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाज में, जिसे लिखा अख्तर रोमानी ने और संगीत दिया कल्याण जी आनंद जी ने।

श्रोताओं, लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी को आप अभी सुन रहे थे हाथ की सफाई इस फिल्म से। इस गीत को लिखा गुलशन बावरा ने और इसे संगीत से सजाया कल्याण जी आनंद जी ने। आप सुन रहे हैं एफएम चूरू से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत बहार।

0: इस को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जानी दुश्मन। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज में। इस गीत को लिखा वर्मा मलिक ने और संगीत दिया लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। अगला गीत लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज में। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत आरडी बर्मन का और फिल्म का नाम झूठा सच।

कठी पतंग इस फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे किशोर कुमार की आवाज में, जिसे लिखा आनंद बख्शी ने और संगीत से सजाया आरडी बर्मन ने। और इस गीत के साथ ही फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम गीत बहार यहीं संपन्न होता है। और अब सुनवाते हैं आपको श्री रामचरितमानस गान।

काक भुशुंडी को अखंड भक्ति का वरदान देकर भगवान राम उन्हें अपनी माया से उत्पन्न जगत का रहस्य बताते हुए निज सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं। कहते हैं, एक ही पिता के अनेक पुत्र अलग अलग स्वभाव और चारित्रिक विशेषताएं लिए होते हैं। कोई ज्ञानी, कोई तपस्वी, कोई वीर योद्धा तो कोई दानी होता है। पिता का प्रेम उन सबको समान रूप में प्राप्त होता है। निरा मूर्ख पुत्र भी पिता को अपने प्राणों के समान प्रिय होता है। उसी प्रकार मेरा सेवक मुझे प्रिय होता है। अतः सब कुछ त्याग कर हे काक भुशुंडी, तू मेरा भजन कर। इस भांति तुम्हारी गति कालातीत होगी, समय का तुझ पर कोई प्रभाव नहीं होगा। प्रभु से अखंड भक्ति का वरदान प्राप्त कर उनके श्रीमुख से निज सिद्धांत की व्याख्या सुनकर काक भुशुंडी का तन मन पुलकित हो।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस का FM 110.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:30 हो चुके हैं। समय है कार्यक्रम नमस्कार चूरू का। नमस्कार चूरू का आज का अंक लेकर मैं हूं आपके साथ आपका साथी राजीव कुमार शर्मा। स्वीकार कीजिए नमस्कार।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू और ये गीत आपने सुना हिना फिल्म से। हमारा मानना है कि आपको अच्छा लगा होगा। हो सकता है हमारे बहुत से श्रोताओं को कुछ विशेष नहीं भी लगा हो, लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगा है। अब आप देखिए, अपने जीवन में आप किसी भी क्षेत्र के बारे में सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आप कोई भी कार्य कर लो, उस कार्य से हो सकता है कुछ लोग प्रसन्न हो और कुछ लोग प्रसन्न ना हो, कुछ खुश हो कुछ ना खुश हो। यानी कोई भी कार्य ऐसा नहीं लगता जिसको करने से आपको हर कोई अच्छा ही कहेगा, पसंद ही करेगा। लेकिन जीवन में ये गलती हम बहुत बार करते हैं। हम करते ये कि हर किसी को खुश रखने की कोशिश करते हैं, और होता यह है कि हर किसी को खुश रखने की कोशिश में अक्सर इंसान खुद को खो देता है। वो दूसरों की खुशी के लिए अपनी इच्छाएं, अपनी जरूरतें, अपना सुकून नजरअंदाज करने लगता है, और धीरे धीरे इसका असर उसके मन पर, जीवन पर, दोनों पर पड़ता है। इंसान थकान, तनाव, अंदरूनी बेचैनी ये सब महसूस करने लगता है, और कई बार लोग उसकी अच्छाई को समझने के बजाय उसे उसकी मजबूरी मान लेते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि कोई व्यक्ति किसी दूसरे के कार्य को ना नहीं कहता। अगर उसको कहा जाए कि मेरा ही काम कर देंगे, वो सहर से स्वीकार कर लेता, हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, तो लोग उसको उसी प्रकार से ले लेते हैं

को कह दो, वो ना नहीं करेगा, वो कर देगा। लेकिन उसके पीछे किस प्रकार की उसकी भावना है और उस भावना की किस प्रकार को व्यक्ति को कद्र करनी चाहिए, उसकी फिक्र बहुत कम लोगों को होती है। और इसलिए होता यह है कि सब उसको यजडुटू मान लेते हैं कि ठीक है, वो तो कर ही देगा। अब सच्चाई अगर देखे तो हर किसी को खुश करना कभी संभव नहीं होता। इसलिए जरूरी है कि दूसरों का सम्मान करें, रिश्ते निभाएं, लेकिन अपनी खुशी, आत्मसम्मान और मानसिक शांति का पूरा ध्यान रखें, क्योंकि वो आपके जीवन के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी है। मान लीजिए एक व्यक्ति ऑफिस में हर किसी की मदद करता है, कोई अपना काम दे दे तो ना नहीं कहता, धीरे धीरे लोग उसका फायदा उठाने लगते हैं और काम का बोझ बढ़ जाता है, तनाव बढ़ जाता है और आखिर में वही व्यक्ति सबसे ज्यादा परेशान रहता है। अब ऐसे में कोई काम जो उसको करना था वो अगर नहीं कर पाता है, तो जिन्होंने उसको अपने काम दिए थे वही उसको शिकायत भी करते मिल जाएंगे कि आपने वो नहीं किया। वो उस समय ये नहीं सोचते कि ये हमारा काम कर रहा था इसलिए अपना काम इससे रह गया, लेकिन उस समय वो भूल जाते हैं कि इसने हमारे काम के लिए अपने काम को साइडलाइन किया। लेकिन जो कुछ किया उसको बहुत कम जज किया जाता है और जो कुछ नहीं किया जाता है उसके लिए शिकायत की जाती है। इसलिए एक छोटी सी सीख अगर हमें लेनी हो तो वो ये है कि जहां जरूरत हो वहां पर हाँ कहिए और जहां आत्मसम्मान या सुकुनदा पर लगे वहां विनम्रता से ना कहना सीखिए। जीवन में बहुत बार ना कहना बहुत आवश्यक होता है और बहुत से लोग ना नहीं कह पाते और ये उनकी एक कमजोरी होती है। इसलिए जहां पे हाँ कहना है वहां पे हाँ, और जहां पे ना कहना है वहां पे निश्चित रूप से ना कहना बहुत अच्छा रहता है। अमिताभ बच्चन ने एक इंटरव्यू में बताया था कि करियर के शुरुआती दौर में वे लोगों की उम्मीदों और काम के दबाव को पूरा करने में खुद को बहुत थका देते थे। लगातार काम, सबको संतुष्ट करने की कोशिश और जिम्मेदारियों के कारण उनकी सेहत पे उसका असर पड़ा और बाद में उन्होंने संतुलन बनाना सीखा। काम भी जरूरी है और सेहत के साथ मानसिक शांति भी। इसलिए अपने जीवन में इस तारतम्य को बना कर रखें कि जहां पर आवश्यक हो वहां पर आप किसी की मदद के तौर पर आगे आते हैं, उसका कार्य करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जहां पर आपको ना कहना हो वहां पर ना कहना सीखिए। और सबसे पहले ये देखिए कि आप जिस व्यक्ति का कोई कार्य कर रहे हैं वो उससे संतुष्ट है या नहीं है। अगर है तो भी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप कई बार सबको खुश रखने की कोशिश में इस प्रकार की ना नहीं कह पाते हैं। इसलिए सबको खुश रखने की कोशिश से अपने आप को बाहर निकाल लें और जहां पर हाँ कहना है वहां पे हाँ और जहां पर ना कहना है वहां पर ना कहना सीख लीजिए। आप सुन रहे हैं FM चूरू से कार्यक्रम नमस्कार चूरू।

श्रोताओं आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। श्रोताओं आज है 25 मई और आज के दिन की एक विशेषता है कि आज विश्व फुटबॉल दिवस है। इस दिन का उद्देश्य दुनिया भर में फुटबॉल के माध्यम से एकता, भाईचारा, टीम भावना, अनुशासन और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। ये दिवस यूनाइटेड नेशंस द्वारा घोषित किया गया था। फुटबॉल को दुनिया का सबसे लोकप्रिय खेल माना जाता है, जिसे करोड़ों लोग देखते भी हैं और खेलते भी हैं। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा लोकप्रिय गेम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें फुटबॉल ही आता है। बहुत से देश हैं जो बहुत से खेलों को नहीं मानते।

जैसे क्रिकेट की बात करें तो बहुत से देश क्रिकेट को नहीं खेलते, लेकिन फुटबॉल एक ऐसा खेल है जिसको लगभग दुनिया के प्रत्येक देश के द्वारा अपनाया गया है और इसको खेला जाता है। विश्व फुटबॉल दिवस 1924 में पेरिस

बातें हमें सिखाता है। जैसे टीम वर्क के साथ जब काम किया जाता है तो उससे हमें जो कुछ हमारा लक्ष्य होता है उसको हम पा सकते हैं। इसके साथ ही धैर्य, फुटबॉल खेलने वाले व्यक्ति में ये गुण डेवलप होता है कि वो धैर्यवान बन जाता है। इसके साथ ही बात करें तो मेहनत, नेतृत्व क्षमता और हार या जीत को स्वीकार करना, ये कुछ एक अच्छी अच्छी बातें इस खेल के माध्यम से हम सीख सकते हैं। खेल का उद्देश्य न सिर्फ मनोरंजन होता है बल्कि इसके साथ ही साथ बहुत सी भावनाएं व्यक्ति की खेल के माध्यम से डेवलप होती है। उसमें एक दूसरे का सम्मान करना, उस स्थिति में जब हम सामने वाले व्यक्ति से उस खेल में हार जाते हैं उसके बाद उस हार को स्वीकार करना, उस जीत को हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करना, जहां पर टीम भावना की आवश्यकता हो वहां टीम भावना के साथ कार्य करना, ये बहुत सी बातें जो है हम खेल के माध्यम से सीखते हैं। इसीलिए फुटबॉल भी एक ऐसा खेल है जो टीम वर्क, धैर्य, मेहनत, नेतृत्व क्षमता और हार जीत को स्वीकार करने की व्यक्ति की कैपेसिटी को बढ़ाने वाला खेल है। भारत में भी फुटबॉल तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और विशेष रूप से अगर देखें तो वेस्ट बंगाल, गोवा और केरला में फुटबॉल के प्रति लोगों में उत्साह बाकी देश के इलाकों के बजाय ज्यादा है। फुटबॉल के कुछ महान खिलाड़ी हुए हैं जैसे मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो और पेले, इनका नाम विशेष रूप से फुटबॉल के नाम पर जाना जाता है और इसमें नाम आता है अर्जेंटीना का, जिसका इस खेल में इस प्रकार के बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ एक अच्छा योगदान है। तो आज के इस दिवस पर हम आपको बता रहे हैं विश्व फुटबॉल दिवस के बारे में। अगर आप भी इस गेम में रुचि रखते हैं तो निश्चित रूप से आपको एक टीम बनाकर इसको खेलना चाहिए और जब आप खेलेंगे तो पाएंगे कि आपको शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर पर विकास की प्राप्ति हो रही है। आप सुन रहे हैं नमस्कार चूरू।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: 27 को सफल बनाना हम सबकी साझी जिम्मेदारी है। जब अधिकृत प्रगणक आपके घर आए उनका परिचय पत्र और QR कोड देखकर पुष्टि जरूर करें।
1: प्रगणक डिजिटल माध्यम से जानकारी संग्रह करेंगे। आपकी सही जानकारी से भविष्य की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन में मदद होती है।
0: आपकी सभी जानकारी गोपनीय रखी जाएगी। जनगणना कार्य निदेशालय राजस्थान द्वारा जनहित में जारी।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

एफएम चूरू से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार चूरू। हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से, जिसमें पहले सुनेंगे समाचार प्रभात 8 बजे और 8:15 पर मॉर्निंग न्यूज़।

साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमरीका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113

0: उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल YouTube चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
1: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले 2 सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
6: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
1: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
6: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
7: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले, हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमेरिका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बनी। बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ते ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, फालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नौतपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
8: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Abhishek Mukhopadhyay. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. Petrol price hike by 2.61 rupees per litre, while that of diesel by 2.71 rupees per litre. National Testing Agency postpones CUET-UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jaishankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
9: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1990.

0: काकी।
1: कौन? लाडली बेटी।
0: देखो काकी क्या लाई हूँ।
1: क्या लाई है? अरे गुड़ सब है ना।
0: हाँ
1: कितना ध्यान रखती है मेरी लाडो इस बुढ़िया का।
0: काकी बड़ी मुश्किल से भाग कर आई हूँ।
1: अच्छा,
0: नहीं तो भैया ने मेरा हिस्सा हड़प ही लिया होता।
2: बड़े नटखट है वो।
0: खाओ ना काकी।
1: ला देना।
0: खा रही हूँ बेटी, खा रही हूँ।
2: रोती नहीं हूँ काकी।
0: कुछ नहीं बेटी, अपने कर्म पे रो रही हूँ। मेरा सब कुछ है फिर भी दाने दाने को तरसती हूँ। अपने ही घर में औरों की मौत आ जाऊं।
3: जरा भी शांति नहीं है इस घर में। काकी, वो काकी, जब देखो खाने के लिए रोना कोसना हद होती है किसी बात की। अरे काहे की मोहताज, उम्र हो गई पर चटोरी जीभ पर काबू नहीं पाया, बस खाना खाना।
0: इस आग लगी मेरी जीभ के कारण सब सुनना पड़ता है। ठीक है बेटा बुद्धिराम, तुम नहीं कहोगे तो और कौन कहेगा। मेरी हिम्मत ही फिर गई थी जो।
3: क्या बके जा रही हो? और तू तू यहाँ से भाग भाग यहाँ से। देखो काकी, हजार बार कह चुका हूँ अब बर्दाश्त नहीं होता।
0: अब क्यों बर्दाश्त होगा, उस वक्त सब बर्दाश्त करने को तैयार था ना। उस वक्त तो
1: चुप हो जाओ काकी।
3: अरे काकी चुप हो जाओ,
1: चुप हो जाओ।
3: अरे काकी मैं जो हूँ तुम्हारा भतीजा, आप काहे की चिंता करती हो।
0: क्या करूँ बेटा, पहले तेरे काका नहीं रहे, फिर तेरे जवान बेटे चले गए, उनका सुख भी ना देख पाए।
1: शांत हो जाओ धीरे सरो, काका जी ना रहे तो क्या हुआ, हम लोग तो हैं।
3: हाँ काकी, हम आपकी सेवा करेंगे।
1: हाँ काकी, हम आपकी सेवा करेंगे,
3: मौका तो दीजिए। हम गैर हैं क्या भला? हिम्मत से काम लो काकी, हिम्मत से। अपने भतीजे को अवसर तो दो सेवा करने का।
1: हाँ काकी, जब तक सांस है पत्थर तो धरना ही पड़ेगा कलेजे पर, और मेरा है ही कौन, पड़े रहूंगी भैया तुम्हारी शरण में।
0: कैसी बातें करती हो काकी।
3: काकी काहे की शरण, हम आपकी शरण में हैं।
1: हाँ काकी, हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी सेवा करेंगे।
0: तब तक तो मैं संपत्ति ही मालिक थी, पर अब तो मेरे हाथ कट गए हैं। संपत्ति का मालिक वो है। कैसी नाच पीटी घड़ी थी जब मैं उसकी बातों में आ गई और अपनी सारी संपत्ति उसके नाम पर कर दी। अब नसीब में है ये कोठरी, रूखा सूखा आदमी।

0: कृपा की कृपा कहे गिरी अपने भतीजे के टीके में ना आएंगे? क्यों नहीं बैठो, मैं और काम निपटा लूं। ये रहा आटा और ये रहा घी, और जरूरत हो तो आकर ले जाना।
1: अरे भाई वो भाट आया है, उसे भी कुछ दे दो।
0: देती हूँ भाई देती हूँ, चलो भाट का सीधा। अरे चंदा तू यहाँ क्या खड़ी है?
2: वो ढोलक मजीरा उतार दो भाभी।
0: ये ले, कमाल है भाभी।
2: क्यों नहीं, कैसे अकेले भंडार से रसोई में, रसोई से आंगन में दौड़ दौड़ कर सारा काम फटाफट निपटा रही हो?
0: अरे अभी फुर्सत कहाँ है तेरी बात सुनने की?
1: अरे भाई भोजन में अब कितना विलंब है?
0: वो अभी हुआ जाता है। क्या हो रहा है? तो महारानी जी कढ़ाई के पास बैठी हैं। अरे काकी ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भार?
3: कोठी में बैठी हुई क्या तुम्हारा दम घुटता था? अभी मेहमानों ने खाया नहीं, भगवान को भोग नहीं लगा, तब तक क्या तुमसे धैर्य ना हो सका? आकर छाती में सवाल हो गई, जल जाए ऐसी निगोड़ी जीप। दिन भर खाती ना होती तो मैं जाने किसकी हांडियां मुंह डालती, कहाँ देखेगा तो क्या कहेगा? बुढ़िया भर पेट खाने को नहीं पाती होगी, तब तो इस तरह मुंह बाई फिरती है, टाए ना मरे ना माछी छोड़े। काकी मैं कहती हूँ भला चाहती तो चली जाओ अपनी कोठरी में, वहीं जाकर बैठो, जब घर के लोग खाने लगेंगे तब तुम्हें भी मिलेगा। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी जाए या ना जाए परंतु तुम्हारी पूजा जरूर हो जाए। बैठे फिर चलो अपनी कोठरी में।
2: रूपानी सच ही तो कहा था, जब तक मेहमान लोग भोजन न कर चुकेंगे घर वाले कैसे खाएंगे? मुझे इतनी देर भी रहा ना गया, सबके सामने पानी उतर गया, अब जब तक कोई बुलाने ना आएगा मेहमान नहीं जाऊंगी, मैं खाना खाने नहीं जाऊंगी।
4: कितना खाएगा भैया?

0: इतनी देर हो गई, अब तक तो मेहमान खा चुके होंगे ना। हाँ हाँ, किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही, शायद शायद वो लोग खाकर चले भी गए होंगे। पर मुझे तो कोई बुलाने भी नहीं आया। रूपा चढ़ गई है ना, क्या जाने आज मुझे ना ही बुलाए, सोचती होगी आप ही आ जाएंगे। हाँ हाँ, मैं कोई मेहमान थोड़े ही हूँ, खुद ही चलू। अच्छा मैं खुद ही चलू, आज तो खूब चक्कर खाऊंगी, गरम गरम मुलायम मुलायम पूड़ियां, तरकारी, शक्कर, रायता, चाहे कोई बुरा माने या भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। यही ना लोग कहेंगे कि उन्हें विचार नहीं है, कहाँ करें, जाने दो कहाँ करें, इतने दिनों बाद पूड़ियां मिल रही हैं, तो मुंह झूठा करके थोड़े ही उठ जाऊंगी। चलो
1: ने तो नाक में दम कर रखा है, किसने बुलाया था तुझे यहाँ, चल जा अपनी कोठरी में मर।

0: काकी काकी काकी उठो, मैं बुला लाई हूँ। कौन कौन? लाडो बेटी, लाडो तू पूरिया लाई है? तू मेरे लिए पूरिया लाई है? मैं तो सोच रही थी रात कैसे कटेगी, क्या खाऊंगी, पेट की आग धधक रही है। किसी ने भी मेरी सुन न ली, मैं अंधी अपाहिज, ना कुछ सुनू ना कुछ बूझू। अगर आंगन में चली भी गई तो क्या बुद्धिराम से इतना कहते ना बनता था कि काकी अभी लोग खा रही है, जाओ फिर आना। नहीं, लेकिन उसने मुझे मारा, उसने मुझे घसीटा, उसने मुझे फटका।
1: काकी काकी खाओ ना।
0: खाती हूँ बेटा, खाती। तेरी अम्मा ने दी है ये पूरियां बेटा?
1: नहीं, ये मेरे हिस्से की है।
0: तूने मेरी सिर तो ली बेटा, तुझे मेरी सुध ली। जी तेरा बेटी, भगवान तुझे हमेशा सुखी रखे।
1: काकी पेट भर गया?
0: नहीं बेटा, अब तो भूख और भी बढ़ गई है। जा अम्मा से थोड़ी और मांग लाना।
1: अम्मा सोती है, जगाऊंगी तो मारेगी।
0: फिर क्या करें, फिर अब क्या करें? हाँ, अच्छा लाडो, लाडो मेरा हाथ पकड़कर वहां ले चल, वहीं जहां मेहमानों ने बैठकर भोजन किया था। हाँ नहीं, जहां सबने खाना खाया था।
1: पर काकी, अरे चल तो सही, तू ले तो चल मुझे।
0: तू चलो। यहीं बैठे थे सब। अरे नहीं काकी, काकी ये क्या, झूठी पतलू से?
1: चुप रह, मुझे खाने दे।
0: ये कितनी सलोनी कचौड़ी, खस्ता। ये लड्डू कितने मीठे, और दही, दही कितना स्वादिष्ट। काकी,
2: लाडली, लाडली।
0: लो अम्मा आ गई, इधर आ रही है।
3: क्यों री, यहाँ क्या हो रहा है?
1: अरे काकी,
0: मेरा
1: ये क्या,
3: इस अधम के पार का भागी कौन है?
1: हे परमात्मा,
3: मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधम का दंड मुझे मत दो, नहीं तो हमारा सत्यानाश हो जाएगा। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी भूल हुई है।

0: क्षमा करो काकी, उठो उठो काकी।
1: हाँ
0: चलो अपने कोठरी में, मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। उठो काकी। डैडी तू काकी को लेकर चल, मैं अभी थाली लेकर आती हूँ।
1: चलो काकी।
0: चलो बेटी। लो काकी भोजन कर लो, मुझसे आज थोड़ी भूल हुई है काकी, उसका बुरा मत मानो। परमात्मा से प्रार्थना कर दो कि वो मेरा अपराध क्षमा कर दे। खाओ ना काकी, खाओ ना। देखो देखो सब कुछ है थाली में, खाओ काकी,
1: काकी खाओ।
0: ठीक है बेटी।

अभी आप सुन रहे थे झलकी, मुंशी प्रेमचंद की कहानी बूढ़ी काकी का रेडियो नाट्य रूपांतरण। इसके प्रस्तुतकर्ता गंगा प्रसाद माथुर। FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ ही समय पश्चात आकाशवाणी के जयपुर केंद्र से आप सुन पाएंगे समाचार तरंग। समय होगा 8:45 और 9 बजे आप सुन पाएंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार।

0: श्रोताओं मैं रितिका गुप्ता
1: और मैं माधुरी वशिष्ठ
0: इस बार के अंक में लेकर आए हैं हफ्ते भर की सुर्खियां। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रदेश दौरे पर रहे, कई रेल सेवाओं और सुविधाओं की सौगात दी।
1: जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आयोजित रोजगार मेलों में 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
0: राज्य मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक में कई अहम निर्णय हुए।
1: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, सरकार पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए संकल्पित।
0: स्वायत्त शासन राज्य मंत्री झावर सिंह खर्रा ने कहा, राज्य सरकार पंचायत और निकाय चुनाव कराने के लिए तैयार।
1: राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए पहली बार गोडावण दिवस मनाया गया।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रदेश दौरे पर रहे, अपने प्रवास के पहले दिन उन्होंने जोधपुर स्टेशन से 20 कोच वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को दिल्ली कैंट के लिए रवाना किया। ये सेमी हाई स्पीड ट्रेन पहले 8 डिब्बों के साथ चलाई जा रही थी। रेल मंत्री ने जैसलमेर स्टेशन पर नए बने कोच केयर कॉम्प्लेक्स का भी वीसी के माध्यम से शुभारंभ किया। इसके बाद श्री वैष्णव ने जालौर से भुज बरेली एक्सप्रेस रेल सेवा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पहले राजस्थान में रेल सेवाओं के विकास के लिए हर साल 500 से 600 करोड़ रुपए मिलते थे, लेकिन अब 10,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इससे राज्य में कई रेल परियोजनाओं का तेजी से काम चल रहा है।
2: राजस्थान में तो काम की कोई कमी नहीं है, बहुत सारे काम हाथ में लिए हैं और आज उसके कारण 85 स्टेशन बन रहे हैं 4,600 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट से और 15 स्टेशन का काम पूरा हो गया है। आगरा बांदीकुई की डबलिंग चल रही है 150 किलोमीटर।

0: अजमेर से चित्तौड़गढ़ की डबलिंग चल रही है 178 किलोमीटर, बीकानेर से लालगढ़ डबलिंग 11 किलोमीटर, देवगढ़ मदारिया से नाथद्वारा ये मारवाड़ जंक्शन को, मारवाड़ और मेवाड़ को जोड़ने वाली मीटर गेज की जो लाइन थी, दोनों ब्रॉड गेज लाइन से पूरी तरह से कनेक्ट होंगे। वैसे ही उमरा से देवारी की डबलिंग, लूनी से भीनड़ी की डबलिंग, आप देख ही रहे कितना तेजी से काम चल रहा है।
1: देश भर में आयोजित हुए रोजगार मेले के तहत प्रदेश में जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में रोजगार मेले लगाए गए। इनमें 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में शिरकत की। इस मौके पर श्री वैष्णव ने कहा कि पहले भर्ती प्रक्रियाएं वर्षों तक चलती थीं, किंतु अब वार्षिक कैलेंडर व्यवस्था लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं को तय समय में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। रेल मंत्री ने युवाओं से राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना के साथ काम करने का आह्वान किया।
2: आप जब भी कोई फैसला लें, तब उस कागज को कागज न मान के, उस फाइल को फाइल न मान के, उसके पीछे लाइफ क्या है, उसके पीछे व्यक्ति कौन है, उसके पीछे किसका जीवन जुड़ा है, उसके पीछे किस परिवार की उम्मीदें जुड़ी है, वो जरूर ध्यान में रखना। दूसरा, जो भी आप फैसला करो, ये याद रखना, राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम। हमें हर कर्तव्य को देश के लिए ही करना है और यही वो पीढ़ी है जो विकसित भारत बनाएगी।
3: जोधपुर में आयोजित रोजगार मेले में केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने युवाओं से अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की भावना से काम करने को कहा।
4: हमारी ऊर्जा का हर एक कण राष्ट्र विकसित हो इसके लिए समर्पित होना चाहिए, क्योंकि हम सौभाग्यशाली हैं। मित्रों, जब कोई देश, कोई समाज इस तरह के परिवर्तन के दौर से गुजरता है, तब उसका हर घटक की अपनी एक उत्तरदायित्व होता है, लेकिन जो लोग सक्षम होते हैं उनका दायित्व तो उतना ही बड़ा होता है। और क्योंकि आज से आप सब लोग सरकार का हिस्सा बनकर के सक्षम हो रहे हैं, ये मानते हुए कि ये शक्ति जो मिली है, ये शक्ति ट्रांसफॉर्मेशन का एक टूल है, इस दृष्टिकोण से हम सबको काम करने की आवश्यकता है।
1: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी के दौरे पर पहुंचे। श्री बिरला ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की। उन्होंने कोटा में भीम राजपूत हॉस्टल में राजमाता शिवकुमारी बालिका छात्रावास की आधारशिला रखी। इस मौके पर श्री बिरला ने कहा कि शिक्षा से ही समाज में सकारात्मक बदलाव लाया जा सकता है। उन्होंने बालिका शिक्षा के प्रसार के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया।
5: समाज के अंदर शिक्षा की आवश्यकता, में कलम की आवश्यकता, ये हमारी आने वाली पीढ़ी शिक्षित बने, इसके लिए समाज ने समय समय में अलग अलग कालखंड के अंदर काम किया, स्कूल बनाए, कॉलेज बनाए, छात्रावास बनाए, लेकिन प्रधान की आवश्यकता ये है, भारत की महिलाएं समाज जीवन के अंदर अलग अलग क्षेत्र के अंदर अपने कीर्तिमान हासिल की, और इस समय आवश्यकता यही है कि समाज ने इतने बड़े संस्कार दिए हैं, तो हमारी आने वाली पीढ़ियां समाज।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की ईंधन बचाने की मुहिम में जनप्रतिनिधि, अधिकारी और लोग अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर रहे हैं। इसी कड़ी में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने जयपुर से अजमेर का सफर रेलगाड़ी से तय किया। इस दौरान उन्होंने यात्रियों से संवाद कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट अपनाने की अपील की।
6: सबको मिलकर अगर हम लोग फ्यूल बचाएं तो मुझे लग रहा है उससे फर्क पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये अपील की है पूरे देश को कि जितना हो सके हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करें, कार पूलिंग करें, साइकिल का इस्तेमाल करें, वॉक करें। हम लोग तो जनप्रतिनिधि हैं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सबसे ज्यादा है।
1: मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद की बैठक में कई अहम निर्णय लिए गए। कैबिनेट बैठक में राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी को मंजूरी दी गई, साथ ही ऊर्जा उत्पादन में बढ़ोतरी और पेंशनर्स कल्याण के बारे में भी फैसले लिए गए। वहीं मंत्री परिषद की बैठक में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान, मुख्यमंत्री विकसित ग्राम शहरी वार्ड अभियान तथा पीने के पानी और बिजली आपूर्ति सहित कई विषयों पर चर्चा की गई। मंत्रिमंडल ने सिविल सेवा पेंशन नियम 1996 में 3 संशोधनों को भी मंजूरी दी है। बैठक के बाद उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने पत्रकार वार्ता में बताया कि अब पेंशनर्स फेस स्कैन तकनीक से घर बैठे ही जीवन प्रमाण पत्र दे सकेंगे।
7: जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए अभी तक हर 3 साल के अंदर विकलांगता का प्रमाण पत्र जारी करना पड़ता था, ऐसी बाध्यता थी, लेकिन अभी कैबिनेट में निर्णय लिया गया है कि ऐसे विशेष योग्यजन जो बच्चे हैं उनको केवल एक बार ही प्रमाण पत्र जारी करना होगा। दूसरा, पेंशनर्स को अब मोबाइल ऐप द्वारा

0: अपना फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से वार्षिक जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। पहले इसमें आपको ई मित्र के पास जाना पड़ता था या SSO ID से साइन इन करना पड़ता था, अब अपने मोबाइल से भी अपना जीवन प्रमाण पत्र वो दे सकते।
1: राजस्थान विधानसभा की स्थापना की 75वीं वर्ष के उपलक्ष्य में विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया गया। विधानसभा

0: स्थानीय संस्कृति के अनुरूप नए नाम दिए गए हैं।
1: शौर्य द्वार और तीसरा है सुशासन द्वार और चौथा है कर्तव्य द्वार, ये अध्यक्ष आने वाला शक्ति द्वार, जहाँ पे विधायिका की असली शक्ति जनता है, जहाँ से जनता आती है उसको हमने शक्ति द्वार रखा है, और जहाँ से अधिकारी आते हैं वो संकल्प द्वार, ताकि उनके कार्यकाल का जनता को राहत देने का संकल्प करें, और जहाँ से माननीय विधायक आते हैं उनको सुशासन द्वार रखा है, और जहाँ से विशिष्ट व्यक्ति आते हैं वो शौर्य द्वार। इस प्रकार पांच द्वारे जो अंदर है उसका नाम हमने उसको रखा है।
2: मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने पिछले हफ्ते आमेर महल का भ्रमण किया। उन्होंने महल परिसर में चल रहे विकास और संरक्षण कार्यों का जायजा लिया। पर्यटकों की बढ़ती आवक को देखते हुए मुख्य सचिव ने आमेर तक पहुंचने वाले रास्तों को और बेहतर बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल संग्रहालय और गाइड प्रशिक्षण को लेकर भी अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
3: जो जयपुर का इतिहास है आमेर किले में रहता है। आमेर डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत काफी रेस्टोरेशन वर्क किया जा रहा है शासकीय में, और हाल ही में दो दिन पहले मैंने रिव्यू किया था तो उस समय मैंने देखा काफी कल्चरल कंजर्वेशन का वर्क आईजीएनसी के साथ मिलकर हम लोग कर रहे हैं। 500 साल पुराना इतिहास को कंजर्व करना बड़ा स्पेशलाइज्ड आर्ट है, तो आज मैंने देखा था और मैं संतुष्ट हूँ।
0: मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र के चुड़ादा गांव में सुबह भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने ग्रामीणों से संवाद किया। ग्रामीणों ने उन्हें अपनी समस्याएं बताई, जिनमें पानी की समस्या सबसे ज्यादा थी। इस पर मुख्यमंत्री ने एनीकट, हैंडपंप और तालाब बनाने सहित कई कार्य स्वीकृत किए। इसके बाद मुख्यमंत्री ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सरकार गांवों की मजबूती के लिए काम कर रही है। पंचायतों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार संकल्पित है।
4: हम रोजगार सृजन करने का काम हमारी पंचायत में कैसे कर सकते हैं, हमारे उस क्षेत्र में कैसे कर सकते हैं? हमारा देश कृषि प्रधान देश है, हम नई तकनीकी से कैसे कैसे कर सकते हैं, कम पानी में कैसे अच्छी खेती कर सकते हैं, कौन सी खेती लाभदायक है जिसको हम कर सकते हैं, उसके लिए प्रोसेसिंग यूनिट लगाने की कहाँ आवश्यकता है जिसको हमारी खेती होती है, उसको कोल्ड चेन से कैसे जोड़ा जाए, सुगमता से किसान का माल मंडी में कैसे आए, पशुपालन को जोड़ते हुए डेयरी का लाभ कैसे हमारे किसानों को मिले, उसका उत्पादन कैसे बढ़े, किसान और हमारे माता बहने हमारे मजदूर आर्थिक रूप से संबल कैसे हो, और ये जब संभव है जब हम गांव की छोटी छोटी बातों को, गांव के लोगों को मोटिवेशन करते हुए उस गांव को हम मजबूत बनाए।
2: सवाईमाधोपुर जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को खरीफ 2025 में बड़ी राहत मिली है। जिला कलेक्टर कानाराम ने जिले के किसानों को अतिवृष्टि से प्रभावित फसलों के लिए करीब 47 करोड़ 33 लाख रुपए की दावा राशि मंजूर की है। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक लखपत लाल मीणा ने बताया कि जिले में बेमौसम की तेज बरसात से बाजरा, तिल और उड़द की फसलों को काफी नुकसान हुआ था। इसके बाद कृषि विभाग और बीमा कंपनियों ने संयुक्त रूप से सर्वे कर किसानों के नुकसान का आकलन किया। किसानों ने बताया कि आपदा की स्थिति में ये योजना उनके लिए बड़ी राहत लेकर आई है।
5: किसान भाइयों, राम राम सा। मेरा नाम मदन लाल जाट, ग्राम कुश्तला का रहने वाला हूँ, और मैंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मेरी 4 हेक्टर जमीन का बीमा कराया। उसमें मैंने 2810 रुपए प्रीमियम दिया और 1,12,260 रुपए मुझे बीमा राशि के मिले हैं। मैं सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर निवेदन है कि सभी अपना बीमा कराएं, समय पर गिरदावरी करें और जो फसल है जिसकी का बीमा कराएं। धन्यवाद।
6: किसान भाइयों, राम राम। मेरा नाम मेहरबान सिंह है, मैं कुश्तला का रहने वाला हूं और मैं 2023 से फसल बीमा करा रहा हूं, प्रधानमंत्री फसल बीमा। तो मेरे इस साल में 5,315 मेरे बीमा के जमा हुए हैं और मेरे को इस साल 1,81,556 रुपये मेरे को बीमा के पास हुए हैं। तो सभी किसान भाइयों से मैं निवेदन करता हूं कि प्रधानमंत्री फसल बीमा कराए, जिससे अपन को फसल खराब हो तो उसका अच्छा मुनाफा मिले, अपने को लाभ हो। इसके बाद
0: हाड़ौती अंचल के बुनकरों की हस्तकला कोटा डोरिया की वैश्विक पहचान मजबूत करने के प्रयास तेज किए जा रहे हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और जिला प्रशासन के साझा प्रयासों से कैथुन कस्बे के बुनकरों के हुनर को संवारने की कवायद शुरू की गई है। हाल ही में केंद्रीय सचिव संजय जाजू के दौरे ने इस मुहिम को नई गति दी। हमारे कोटा संवाददाता आशीष मेहता ने बताया कि इस विरासत को सहेजने और इसके आधुनिकीकरण के लिए स्थानीय कॉमन फैसिलिटी सेंटर को सशक्त किया जा रहा है।
7: इस मुहिम का सबसे खूबसूरत पहलू है एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक। पूर्वोत्तर का प्रसिद्ध एरी सिल्क अब कैथुन के पीटलुम पर कोटा डोरिया के धागों के साथ बुना जाएगा। इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में शुद्धता की गारंटी के लिए यहाँ पंच गौरव अभियान के तहत जरी टेस्टिंग मशीन भी लगाई जा रही है। इससे बिचौलियों का खेल खत्म होगा और स्थानीय बुनकरों को

0: उनके हुनर का सही वैश्विक मूल्य मिलेगा। यकीनन पूर्वोत्तर के सिल्क और हाड़ौती के हुनर का यह मेल कोटा डोरिया को सात समंदर पार लेकर जाएगा।
1: राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से पहली बार गोडावण दिवस मनाया गया। जैसलमेर में आयोजित कार्यक्रम में वन और पर्यावरण मंत्री संजय शर्मा ने शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वन विभाग और स्थानीय निवासियों की कोशिश से इस विलुप्त प्राय पक्षी गोडावण के संरक्षण के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं।
2: और जो मुझे जानकारी दी गई है, इस अपने नेचुरल सोर्स में लगभग 130 गोडावण पक्षी हमारे पास हैं और 87 गोडावण पक्षियों को हमने चूजे पैदा करके कृत्रिम तरीके से तैयार किए हैं। आने वाले समय में जो हमारा राजकीय पक्षी है गोडावण, उसके संरक्षण में वन विभाग मुस्तैदी से काम करेगा। गोडावण की संख्या में वृद्धि होगी और पर्यावरण के संरक्षण में एक महत्वपूर्ण भूमिका वन विभाग और हमारा गोडावण पक्षी और वन विभाग देने का काम करेगा।
1: वन मंत्री ने गोडावण की प्रतिमाओं का अनावरण भी किया, साथ ही पर्यावरण संरक्षण पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेता विद्यार्थियों को सम्मानित किया।
3: समाचार तरंग में बस इतना ही, एक अन्य अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। जाने से पहले आपको बता दें, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता रामनाथ मीना।

0: अभी आप सुन रहे थे समाचार तरंग, आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। आकाशवाणी जयपुर अजमेर का ये आमेर चैनल है। कृपया हमारी अगली उद्घोषणा की प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। कुछ ही देर में आप हमारे केंद्र से हिंदी में प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर आएंगे। वे आमेर महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बीकानेर के दो दिन के दौरे पर, कल सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश की तीन हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा जाएगा। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर दौरे पर रहेंगे। उनका आमेर महल और सिटी पैलेस सहित कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण का कार्यक्रम है। इस हाई प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की हैं। जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दो दिन का बीकानेर दौरा आज से शुरू होगा। उनका आज रात बीकानेर नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री कल सांचू सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे। वे सैनिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे, साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। वहीं गृहमंत्री ने कल नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता UCC के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
1: उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने एक्सप्रेस वे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण के लिए 4938 करोड़ रुपए के ऋण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। उन्होंने कोटपूतली किशनगढ़ ब्यावर भरतपुर एक्सप्रेस वे परियोजनाओं के निर्माण को गति देने के लिए ये ऋण स्वीकृति दी है। उप मुख्यमंत्री ने कल राजस्थान राज्य सड़क विकास और निर्माण कॉरपोरेशन RSRDC की बैठक ली। उन्होंने नसीराबाद सरवाड़ केकड़ी देवली सड़क के अपग्रेडेशन और केकड़ी बाईपास निर्माण के ऋण प्रस्ताव भी मंजूर किए। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 2 सप्ताह में चौथी बार बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर हो गया है। जयपुर में पेट्रोल करीब 112 रुपए और डीजल लगभग 105 रुपए प्रति लीटर की दर से मिलेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की आखिरी तारीख आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये फैसला किया गया है। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा सीयूईटी यूजी 2026 की तारीख आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्दी ही दी जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_Jaipur, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। इसके साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज बीसलपुर बांध से अभियान का शुभारंभ करेंगे। ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इस दौरान नदियों नहरों का पूजन, प्रभात फेरी, कलश यात्रा और नुक्कड़ नाटक, पौधरोपण और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम होंगे। विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जल संरक्षण को जन आंदोलन बनाने के प्रयास किए जाएंगे। इसके तहत आज जिला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर जल स्रोतों, तालाबों और नदियों पर स्वच्छता अभियान चलाकर श्रमदान किया जाएगा। चूरू, सवाईमाधोपुर, अलवर, हनुमानगढ़, बारा, अजमेर, बाड़मेर, पाली, करौली और भरतपुर सहित अन्य जिलों में जल पूजन, आरती और दीपदान के कार्यक्रम होंगे। प्रदेश में पेयजल व्यवस्थाओं को सुचारू बनाने के लिए कल राज्य स्तरीय विशेष अभियान आयोजित किया गया। इस दौरान 519 टीमों ने गांव-गांव पहुंचकर पेयजल स्रोतों और पानी की आपूर्ति व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया और 3,427 शिकायतों का त्वरित निस्तारण किया गया। इस दौरान करीब 750 हैंडपंप और 400 पाइपलाइन लीकेज दुरुस्त किए गए। वहीं 1100 से ज्यादा अवैध जल कनेक्शन हटाए गए। अभियान का उद्देश्य गर्मी के मौसम में हर्षण और अवैध जल कनेक्शन के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में विभिन्न क्षेत्र की 66 प्रतिभाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये समारोह दो चरण में होगा। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। हीटवेव से बचाव और आपदा प्रबंधन विषय पर आज से जयपुर में 2 दिन की राष्ट्रीय कार्यशाला शुरू हो रही है। इसका उद्देश्य हीटवेव के प्रति जागरूकता बढ़ाने और प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कार्यशाला में आपदा प्रबंधन और जलवायु

0: अनुकूलन रणनीतियों पर भी चर्चा की जाएगी।
1: इस कार्यशाला में विभिन्न संस्थाओं विशेषकर आपदा प्रबंधन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, इसके अलावा कई रिसर्च संस्थान आदि से विशेषज्ञ भाग लेंगे। इसमें हीट वेव से होने वाले स्वास्थ्य पर प्रभाव और उनके बचाव उपाय पर गहनता से चर्चा की जाएगी और हीट एक्शन प्लान और हीट से भविष्य में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए इस पर मंथन किया जाएगा।
0: प्रदेश के 10 शहरों में कल दिन का पारा 44 डिग्री से ऊपर रहा। वहीं 9 शहरों में रात का तापमान 30 डिग्री से अधिक रहा। 46 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ श्रीगंगानगर सबसे गर्म रहा। वहीं कोटा और फलौदी 32 डिग्री से अधिक तापमान के साथ रातें सबसे गर्म रही। राजधानी जयपुर में भी दिन और रात काफी गर्म बने हुए हैं। अधिकतम तापमान 43 डिग्री के पार और न्यूनतम तापमान 31 डिग्री से ऊपर मापा गया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। कई हिस्सों में दिन का पारा 45 से 46 डिग्री के बीच रह सकता है। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी चलने की भी आशंका है। राज्य स्तरीय सब जूनियर बालक बालिका बॉक्सिंग प्रतियोगिता का समापन कल अलवर में हुआ। इसमें वन राज्य मंत्री संजय शर्मा ने विजेता खिलाड़ियों को मेडल प्रदान किए। इस प्रतियोगिता में अलवर की बालिका टीम विजेता रही। वहीं बालक वर्ग में भरतपुर की टीम अव्वल रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर आएंगे। वे आमेर महल सहित अन्य ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से बीकानेर के 2 दिन के दौरे पर, कल सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू हो रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रदेश की 3 हस्तियों को पद्मश्री अलंकरण से नवाजा जाएगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है देशभक्ति गीत।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीत और अब समय है कार्यक्रम महफिल का। सुनवाते हैं आपको इस कार्यक्रम के अंतर्गत कव्वाली।

अभी आप सुन रहे थे महफिल FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 9:30 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम जिसमें हम आपको किसी एक कलाकार के जीवन पर केंद्रित फिल्म संगीत सुनवाएंगे और ये कार्यक्रम है चित्रलोक। तो शुरू करते हैं आज का ये कार्यक्रम चित्रलोक। और आज हमने अपना कार्यक्रम जिस गीतकार पर केंद्रित किया है वो कलाकार वो गीतकार हैं संतोष आनंद। तो आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गीतकार संतोष आनंद की और आपको सुनवाएंगे उनसे ही जुड़े उनके ही लिखे कुछ बेहतरीन गीत।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और इसमें आज हम बात कर रहे हैं गीतकार संतोष आनंद की। संतोष आनंद हिंदी सिनेमा के एक प्रतिष्ठित और भावुक गीतकार 5 मार्च 1939 को उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में जन्मे संतोष कुमार मिश्र यानी संतोष आनंद। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई की और मनोज कुमार की फिल्म पूरब और पश्चिम से अपनी करियर की शुरुआत की। और जो गीत आप सुन रहे हैं, इस जैसे बेहतरीन गीत इन्होंने अपने समय में दिए और एक कालजयी समय इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से

अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली के मिंटो ब्रिजेस स्कूल में एक लाइब्रेरियन का निर्माण किया और दिल्ली में रहते हुए अपना ज्यादातर समय साहित्य और कविताओं में बिताया। स्थानीय कवि सम्मेलन ऐसे में कवि

संतोष आनंद ने अपने करियर में लगभग 26 फिल्मों में 100 से अधिक गीत लिखे। उनके गीतों में जीवन की सच्चाई, गहरा दर्द और देशभक्ति की भावना साफ झलकती है। उनके कुछ लोकप्रिय और सदाबहार गीत जो हैं, उनमें जीवन की सच्चाई पर बस दिख पड़ती है। हिंदी सिनेमा में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए उन्हें 2 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा साहित्य में उनके योगदान के लिए 2016 में प्रतिष्ठित यश भारती पुरस्कार

संतोष आनंद का जीवन केवल सफलता की कहानी नहीं बल्कि गहरे संघर्षों से भरा जीवन रहा। उनके बेटे संकल्प आनंद और बहू की दुखद मृत्यु ने उन्हें अंदर से गहराई तक तोड़ा। बाद के वर्षों में उन्हें आर्थिक कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ा और अपनी बेटी के पास रहे। 2021 में वे टीवी शो में भी दिखाई दिए जहां उनकी भावुक कहानी सुनकर लोग भावुक भी हो गए। आज भी वो अपने इन नगमों के साथ जीवित हैं और याद करते हैं उन पलों को जिनमें एक सरल और दिल को छू लेने वाली भाषा में उन्होंने वो गीत लिखे। जिस समय वो समय चल रहा था जब उर्दू के बड़े बड़े शब्दों को इस्तेमाल करके गाने लिखना एक विशेषता माना जाता था गीतकार के लिए। उस समय एक सरल और दिल को छू लेने वाली भाषा में गीत लिखकर उन्होंने अपने गीतों में साहित्यिक सुंदरता के साथ आम इंसान की भावनाएं इस तरीके से पिरो दी कि यही कारण है कि उनके गीत आज भी उतने ही लोकप्रिय।

0: Ben polis tanesi bulurum.
1: Kirsin?
2: Ağab, dijital arrest mein ho. Dusre kamre mein jaiye. Akele. Aapke parcel mein drugs mile hain. Lambe jayenge. 10 lakh dijiye, bach jayenge.
3: Sir, itne kahan se?
2: Ek link bheja hai. Abhi processing ke liye 2 lakh bhejiye. Baki baad mein.
4: क्या हुआ पापा?
3: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
3: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
3: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
3: तो पैसे गवाओगे।
5: आरबीआई कहता है।
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। हमारा अगला प्रसारण आप सुन पाएंगे आकाशवाणी मुंबई से, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे विविध भारती के कार्यक्रम।

0: अरबे आज
1: उजाले उनकी यादों की उजाले

उजाले उनकी यादों के। इस कार्यक्रम में आज हमारे साथ हैं जाने माने फिल्म निर्देशक रमेश तलवार। एक लंबी यात्रा रही है रमेश तलवार की। एक फिल्म निर्देशक, रंगमंच की दुनिया के निर्देशक और साथ में प्रोड्यूसर भी। सन 1977

0: 1984 दुनिया।
1: तू चांद नगर की शहजादी, मैं इस धरती का बंजा।
0: 1985 समाना।
2: एक बात है हमसे कहीं नहीं जाए।
3: क्या?
0: 1993

बतौर प्रोड्यूसर उन्होंने बनाई फिल्म रंगमंच पर भी रमेश तलवार का लंबा काम रहा है। हम रमेश तलवार जी के घर गए और उनसे की लंबी बातचीत। रमेश तलवार से बातचीत की है आपके इस दोस्त यूनुस खान ने। आज आप सुनेंगे इस बातचीत का पांचवा भाग। बीते चार हफ्तों में रमेश तलवार ने एक से बढ़कर एक घटनाएं सुनवाई हैं। जाहिर है कई श्रोता भूल गए होंगे या कई नए श्रोता शामिल हुए होंगे जिन्हें नहीं पता होगा कि पहले एपिसोड में रमेश तलवार ने कौन सी रोचक घटना सुनाई थी। तो चलिए बीते चारों एपिसोड्स में से कुछ दिलचस्प वाक्य दोहराते हैं और उसके बाद सुनते हैं आगे की बातचीत। यह है रीकैप एपिसोड 1।

0: जब पार्टीशन हुआ तो हम आए श्रीनगर में। उसके बाद जो है कुछ दिन सेट होने के बाद कुछ रिश्तेदार बम्बई आ गए थे ऑलरेडी, तो उन्होंने मेरे ग्रैंडफादर को फोन किया कि आपके लिए भी एक ट्रक खरीद लिया है। यहाँ कोलीवाड़ा में जाम थे
1: जी,
0: तो वहाँ पे ये मिलिट्री के क्वार्टर्स थे कुछ
1: साइन में,
0: साइन कोलीवाड़ा। तो हमारा जो कमरा था उसका नाम था T157
1: जी।
0: तो टी मतलब होता है टट्टी,
1: अरे
0: ओरिजिनल टट्टी थी वो।
1: ओ गॉड।
0: तो उसको लेवल करके सीमेंट करके घर बनाया गया। और कुलदीप जी शुरू से ही म्यूजिक के माहिर थे, गाते बहुत अच्छा थे, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रॉफी जीत के आ जाते थे। कोलीवाड़ा में भी कोई प्रोग्राम होता था, दिवाली आई, होली आई, कुछ आया, ये गाते थे और खूब रंग जमाते थे। मैं जब नाटक वाटक करने लग गया, छोटे छोटे रोल मिलने, तो मैं अपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा करता था
1: जी
0: कि फलाना नाटक, किसी नाटक का नाम लिखता था, डायरेक्टर बाई रमेश तलवार, म्यूजिक बाई कुलदीप सिंह, ऐसा लिखता था।
1: जब ऐसा कुछ हो नहीं रहा है,
0: ना ना वो कुछ करते नहीं थे वो, लेकिन ब्लैक बोर्ड पे लिखा होता था। उन्होंने भी कई बार नाम पढ़ा और वो कहते हैं कि ऐसा था उनके दिल में, उनके दिल में ये आ गया कि यार ये मैं मुझे म्यूजिक डायरेक्टर बनाना चाहता है। और इसी दौर में एक फिल्म की है, पता चला कि एक फिल्म बन रही है डेविड कॉपरफील्ड के ऊपर, वो है उसका नाम है सौतेला। तो मुझे उसके रोल के लिए ले जाया गया, कुछ छोटा मोटा टेस्ट लिया और मैं सेलेक्ट हो गया। और मद्रास AVM में जो है उसकी शूटिंग थी।
2: Episode 2 में रमेश तलवार ने ये दिलचस्प घटना बताई थी।
0: तो मैंने पढ़ा कुछ दिनों के बाद कि इत्तफाक एक फिल्म बनेगी, 1 महीने में कंप्लीट हो जाएगी और राजेश खन्ना उसका हीरो होगा। राजेश खन्ना तो मेरा स्टेज का दोस्त,
1: बिल्कुल।
0: तो मैं मनमोहन जी से फिर कहा, मनमोहन कृषि साहब से, कि वहाँ चलते हैं, ये पिक्चर है और मुझे असिस्टेंट रख लेंगे। 1 महीने में सारी एक पिक्चर सामने से गुजरेगी आँख से, तो मैं काफ़ी
1: आगे
0: चाहूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। गए तो बीआर चोपड़ा सर ने कहा हाँ भाई आ जाओ रमेश बैठो। मनमोहन जी यश को बुलाओ भाई, यश जी आए भाई, उन्होंने कहा इसको असिस्टेंट रखो यश अपनी पिक्चर में। भाई साहब मेरे पास ऑलरेडी 4 असिस्टेंट हैं, अगली बार बुलाइए जब अगली पिक्चर शुरू करेंगे। तो फिर बीआर चोपड़ा ने कहा 5वां असिस्टेंट बना लीजिए, बैठा रहेगा कोने में, देखेगा सब
1: जी।
0: तो यश जी मान गए बड़े भाई की बात, मैं ड्रामे का डायरेक्टर हूँ।
1: Yes.
0: मैं सिनेमा, मैंने हर फिल्म, अच्छी फिल्म देखी हुई है 5 आने में। फ्रंट रो में बैठ के आकाश कुर्ला पे जाके, कोलीवाड़ा से आकाश कुर्ला 1 आने का टिकट, वहां जाता 5 आने की पिक्चर, 1 आने का खाना और 1 आना वापस आना, ठन्नी में
1: काम बन जाता
0: था, काम बन जाता।
1: कौन कौन सी फिल्में देखी
0: सब होगी? कोई भी आप अच्छी पिक्चर का नाम लो मैंने देखी है। बिमल राय की सारी फिल्में, सत्यजीत रे की सारी फिल्में, गुरुदत्त की सारी फिल्में। अब था वो चलते हुए एक आध बार ऐसी चीज आई, रुक गई शूटिंग, सब राइटर डिस्कस कर रहे थे, कुछ पॉइंट पूछा गया और मैंने कहा ये क्यों ना कर लें। तो सब राइटर ने बोला हाँ ये तो बिल्कुल सिंपल है, ये तो बिल्कुल आसान है, ये जाएगा इफ्तिखार करेगा, करेक्ट है। अब साहब वो चीज की गई, अब मेरी थोड़ी सी इम्पोर्टेंस जगह पे यश चोपड़ा में नोट किया, उन्होंने प्ले भी देखा था शतरंज मोरे, यहाँ ये नोट कर लिया कि इसको जबरदस्ती 5 बार से जोड़ कर कोने में बैठा। साहब आगे चले तो इन्होंने मुझे कहा कि आप आइए हमसे मिलिए। मैं गया मिलने,
1: जावेद साहब ने,
0: जावेद साहब और सलीम साहब दोनों बैठे थे। तो मैं गया, बोलने लगे भाई एक प्रोजेक्ट है करेंगे आप? मैंने कहा जी आप कमाल कर रहे हैं, आप प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो मैं क्यों नहीं करूँगा। देखिए कमर्शियल सब्जेक्ट है, आप सुन लीजिए
1: हाँ
0: फिर बोलिए। और हम आपको कास्टिंग भी बताते हैं, आपका दोस्त ऋषि कपूर इसमें होगा, मैं ऋषि कपूर के साथ उन दिनों बहुत फिल्में कर रहा था।
1: हाँ बिल्कुल,
0: ऋषि कपूर इसमें होगा और साथ में होंगे राजेश खन्ना,
1: वो भी आपके दोस्त।
0: तो अब उसी टाइम पे एक्चुअली डिम्पल की शादी राजेश खन्ना के साथ हो गई थी
1: जी जी,
0: और कंट्रोवर्सी चल रही थी कि वो हीरोइन थी बॉबी में
1: हाँ।
0: तो पिक्चर को बिल्टअप मिलता है ये उनके जहन में था, और रमेश तलवार के दोनों हीरो दोस्त हैं। तो साहब वो फिल्म मैंने कहानी सुनी, मेरा बसेरा करने के बाद और दूसरा आदमी करने के बाद दिमाग जो है खराब हो चुका था, खराब मतलब सीरियस हो गया था। ये पिक्चर बिल्कुल कमर्शियल पिक्चर थी। मैंने कहा यार वही स्मगलिंग, वही पुलिस और सिपाही, और तो देखिए मुझे मेरे लायक नहीं है, कोई और करे तो बेटर है आपके लिए।
2: तीसरे एपिसोड में रमेश तलवार ने सुनाई थी ये घटना।
0: करते करते एक साल लगा वो पिक्चर रिलीज करवाने में। वो पिक्चर जिस दिन रिलीज हुई उस दिन संजय दत्त अरेस्ट हो गया।
1: बाप रे,
0: उनके पोस्टर फाड़ दिए गए लालबाग में, और उनका बहुत जबरदस्त रोल था मेरी पिक्चर में। और ऋषि कपूर ने संजय दत्त को ये कहा था, साले इसमें तेरे को अवार्ड मिलेगा तू ये रोल कर। और मैं जब संजय दत्त से मेरी कोई दोस्ती नहीं थी तो थ्रू ऋषि कपूर में गया था साइन करने के। तो उसके बाद संजय दत्त के साथ मेरी बहुत दोस्ती हो गई। अब ये सोचो कब सोचा था कि साहिबा जैसी फिल्म एक डेढ़ साल लेट भी हो गई
1: और सलमान खान ड्रॉप हो गए।
0: जब वो ड्रॉप हो गए और वो पिक्चर जो है चली नहीं, लगाई मतलब लोगों ने पोस्टर फाड़ दिए ना।
1: लेकिन आज उस फिल्म को लोग बहुत
0: याद देखते हैं। नहीं करते भी हैं, देखते भी हैं, याद भी करते हैं, सब है, गाने भी इतने हैं, सब कुछ है। लेकिन देखिए जब हमने बनाई थी ये सोच के बनाई थी कि ये फिल्म अभी जो फिल्में इस वक्त आ रही हैं ये सबसे हटके होगी।
1: बिल्कुल, और थी भी वो
0: उस तरह की है। तो एनीवेज माधुरी दीक्षित संजय दत्त ऋषि कपूर के साथ
1: बड़ी स्टार कास्ट,
0: अच्छा मुहूर्त हुआ, अच्छी तरह से बनाई, बड़े प्यार से बनाई।

0: तो चलिए अब सुनते हैं आगे की बातचीत, जिसमें हमने रमेश जी से रंगमंच की उनकी गतिविधियों के बारे में पूछा है।
1: अच्छा, अभी आखिर में कुछ ऐसे नाटकों की बातें करना चाहता हूँ जो आपने सेलिब्रिटीज के साथ किए हैं, जैसे शबाना आज़मी के साथ नाटक किया है, जया भादुड़ी के साथ।

0: जया बच्चन के साथ नाटक है, शत्रुघ्न सिन्हा के साथ है, जीनत अमान के साथ है
1: जी। सबसे पहले मैंने पूजा भट्ट के साथ किया नाटक,
0: खूबसूरत
1: खूबसूरत। पूजा भट्ट के साथ क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि भाई प्ले कर रही है वो, और कोई और डायरेक्टर डर कर रहा था, मैं नहीं कर रहा था, कोई कर रहे थे। तो वो डायरेक्टर गुरु टाइप के थे, तो उन्होंने डांटा वांटा ये किया, तो ये कुछ आपस में अनबन हो गई उनकी। तो मेरे ख्याल में बोनी कपूर ने कहा रमेश जी को पूछ लो, तो मेरे पास कोई आया जो भी ऐसा है करोगे, बाहर अमेरिका में टूर है ऐसा। तो मैंने कहा कौन सा प्ले है, उन्होंने प्ले बताया, प्ले स्क्रिप्ट बताई और मैंने वो सुनी, और मुझे लगा कि प्ले बहुत अच्छा है, अच्छा है प्ले था, बहुत अच्छा था। और उसमें कोई और आर्टिस्ट कर रहा था रोल पहले, जो मुझे लगा मेरे कंट्रोल में नहीं रहेगा, पूजा भट्ट के संग बाप का रोल कोई और कर रहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस एक्टर
0: जी जी।
1: मैंने कहा ये जो इधर टेंटरम दिखा रहे हैं हमको, जो कुछ बातें वो करते थे ऐसी, ये नहीं हो रही होगा, ये नहीं होगा, मैंने नाटक में नहीं होता
0: जी जी जी,
1: मैं आपके सिनेमा में बात सुन सकता हूँ
0: जी,
1: नाटक में अमेरिका में बैठे तो मैं क्या करूँगा। तो वो मैंने कहा भरत कपूर को ले लेते, मेरे नाटकों में सब में काम करता है वो, और तुम्हारा फादर बिल्कुल लगेगा और मेरे कंट्रोल में। तो उस आर्टिस्ट को मैंने कह दिया भाई तुम्हारे ऐसी प्रॉब्लम है, शूटिंग डेट्स होती हैं, फलां होता है, ये होता है, वो होता है, नाटक में ऐसा नहीं होता, तो तुम अगर ना करना चाहो तो। उन्होंने कहा हाँ मैं नहीं करूँगा, मेरे पास टाइम जितना है मैं वही दूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। वो भरत कपूर को मैंने सुनाया सब्जेक्ट, उन्होंने कहा मैं कर लेता हूँ। फिर पूजा भट्ट के साथ हम वहाँ गए, वहाँ उसके 5-6 शो हुए अमेरिका में, यहाँ आके 4-5, फिर 5-6 शो यहाँ पे किए, मतलब मेरे ख्याल में मुश्किल से 10-12 शो किए थे हमने उसके।

0: शबन आजमी वाला प्ले
1: नहीं, इसके बाद हमने पहले ये, इनके बाद जिया जी के पास गए हम।
0: जी जी,
1: मेरे पास मेरा दोस्त संजय गोराडिया आया।
0: जी,
1: संजय गोराडिया गुजराती का बहुत फेमस प्रोड्यूसर डायरेक्टर है और एक्टर भी है, और वो मेरे साथ शुरू में मेरी फिल्मों में प्रोडक्शन भी करता रहा। सागर साहब के साथ बाजार में प्रोडक्शन असिस्टेंट था सागर साहब का। और फिर वो मैंने एक बनाई थी NFDC के लिए पिक्चर, तेरा नाम मेरा नाम, न्यू कमर्स को लेके, उसमें भी प्रोडक्शन कर रहा था और एक आध रोल भी किया था। तो आया, उसने कहा मैं तुम जैसे पूजा भट्ट के साथ प्ले करके आए हो वैसा अगर मेरे लिए प्ले करो तो मुझे अमेरिका का टूर मिल रहा है। तो मैंने कहा अच्छा, तो कौन सा प्ले करना चाहते हो? उसने प्ले का नाम बताया, ये वाला, ये स्क्रिप्ट। मैंने कहा ये स्क्रिप्ट किसको सूट करती है, किसको करती है? जिया जी को करती है। और कौन है
0: जी
1: जो इसमें ठीक रहेगा? मैंने जिया जी के पास पूछते हैं, अगर वो करने के लिए हाँ कर दें। और जिया जी के साथ मैं सीरियल कर चुका था उन दिनों, उनकी कंपनी का ABCL के लिए मैंने आरजू एक सीरियल किया था, 50 एपिसोड किए थे उसके। तो बड़े अच्छा रिलेशनशिप थी, बहुत इज्जत करती थी, मैं भी बहुत इज्जत उनकी करता था। मैंने उनको बताया कि ऐसा मैं कर रहा, अगर आप फ्री हैं और आप करना चाहती हैं अमित जी से भी बात कर लीजिए, महीने का टूर होगा कहीं अमेरिका का अलग अलग सिटी है। बोले सब्जेक्ट सुनाओ, मैंने सब्जेक्ट सुना, सब्जेक्ट उनको बहुत पसंद आ गया और उन्होंने मुझसे कहा ऑलमोस्ट हाँ है, फिर भी मैं एक बार अमित जी से बात कर। फिर उन्होंने एक शर्त रखी कि हम रिहर्सल कितने दिन करेंगे। मैंने कहा ऐसे 6 हफ्ते होती है या 45 दिन होती है। बोले उसके बाद आप मेरी फैमिली को दिखाएंगे प्ले, ओपिनियन लीजिए आप। मैंने कहा बिल्कुल, अमित जी को बुलाऊंगा, बच्चों को बुलाऊंगा, सब जो भी देखना चाहें, और भी ऑडियंस में जिसको आप बुलाना चाहती हैं, मैं भी अपने लोगों को भी बुलाऊंगा, हम देख लेंगे। कमिट करने से पहले मैंने कहा डेटें कमिट नहीं हो तब तक मैं बेचूंगा नहीं, फिर वेट थोड़ा सा करना पड़ेगा डेटों का, टूर का। बोले ठीक है। रेसलिंग हुई, हमने शो रखा भाईदास में, प्राइवेट शो, जिसमें अमित जी भी आए और भी बच्चे भी आए, सब सब ने, हमारे भी दोस्त फैमिलीज आई, सब ने देखा, लोगों को प्ले बहुत पसंद आया। जब प्ले होने लगा था तो मेरे ख्याल में था कि इनके सामने हस्बैंड जो है अनुपम खेर टाइप का कोई आदमी हो, या अनुपम हो या कोई और इस तरह का आदमी होना चाहिए। उन्होंने कहा रमेश जी आप ही करिए।
0: अरे वाह।
1: उन्होंने मुझे थिएटर करते हुए देखा होता, मेरे प्लेस देखे हुए जब दिन में मैं एक्टर था। मुझे आप ही करिए, कोई बात नहीं। तो मुझे थोड़ा सा वो झटका लगा कि जिया जी के सामने मैं नहीं करेंगे, बहुत अच्छा करेंगे, आप करिए, आपने जैसा सुनाया ना वैसा ही करिए। तो जब पढ़ा था मैंने उनके सामने प्ले, तो मेरे रसने करनी शुरू हो गया और फिर हमने अमेरिका टूर किया और बहुत अच्छा हुआ। और इधर जो ट्रायल हुआ उसमें भी लोगों ने मुझे अप्रूव किया।
0: वाह वाह वाह।
1: उन्होंने कहा रोल मेन जया जी का, लेकिन आपका रोल भी बहुत अच्छा है, आप एकदम रिलीफ है प्ले में, आप जब जब आप आते हैं आपके एंट्री का इंतजार होता है, क्योंकि वो जया जी थ्रू आउट प्ले में है और मेरा कभी कभी बीच में आता था मैं 3-4। तो सबने अप्रिशिएट किया और मैंने वो रोल कर डाला।

और फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर जब हुआ, अब जिया जी को भी पसंद आ गया थिएटर करना, वो प्ले सुपर डुपर हिट हुआ और इन लोगों को फीस जो उन्होंने मांगी वो मिली थी। उसके बाद दूसरा प्ले आया, वो मैंने इनको डॉक्टर मुक्ता प्ले सुनाया, उसमें भी वो मेन रोल था लेकिन सीरियस प्ले था। तो उसमें उन्होंने कहा कि आप ये रोल करिए जो हस्बैंड का रोल है। अगेन मेरा रोल बीच में ही है लेकिन लाफ्टर लाफ्टर आते हैं मेरे आने पर, ऑल्दो मैं कॉमेडियन नहीं हूँ लेकिन वो रोल ऐसा होता है कि मुझे लाफ्टर तो मिलते हैं। वो रोल भी, वो प्ले, फिर हम दोनों प्ले साथ लेके फिर अमेरिका टूर पे गए। अमेरिका से फिर गल्फ कंट्रीज भी गए, पहले लंदन गए, लंदन से गल्फ कंट्रीज भी गए। इस तरह हमारा 40 दिन का टूर हुआ, बहुत अच्छा रहा और सबको फीस अच्छी मिली क्योंकि बाहर प्ले में आपको मुँह का दाम, जब आप स्टार प्ले करते हैं तो जो प्राइस स्टार बोलेगा उस हिसाब से पैसे मिल जाते हैं, फिर डायरेक्टर को भी उस तरह मिल जाते हैं। इस तरह से हमको, जब ये प्ले चल रहे थे तो एक दिन शत्रु जी से मुलाकात हुई, तो उन दिनों कुछ दिल्ली जाते थे और ये सब, तो उन्होंने कहा यार मैं तो तेरा प्ले देखा बहुत अच्छा था। मैंने कहा आप करेंगे प्ले? नहीं करूँगा, जरूर करूँगा। कब करना चाहोगे? कौन सी है स्क्रिप्ट सुनाओ। और उनको स्क्रिप्ट सुनाई और वो मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड प्ले था जो उन्होंने सुना और वो प्ले अच्छा आज तक चल रहा है वो भी। और उसमें राकेश बेदी और ये और लड़की एक है और संजय गोरडिया एज प्रोड्यूसर, वो एंट्री भी मारता है कुछ शुरू में। तो चार ही कैरेक्टर है, मैं उसमें रोल नहीं करता हूँ। वो प्ले भी हिट हुआ, आज तक चल रहा है। उसके बाद जीनत जी किसी शो पे आई थी, अमित जी के ना इनके शत्रु जी के, उन्होंने दो तीन बार अटेंड किया था प्ले। उन्होंने कहा आपका मेरे लिए स्क्रिप्ट है? मैंने कहा हाँ है। मैंने कहा वो देखिए बात यह है कि संजय गोरडिया से आप कमर्शियल बातें कर लीजिए, मैं आपको स्क्रिप्ट बाद में सुनाऊंगा। क्योंकि होता है ना कि बात कर लें फिर स्क्रिप्ट भी आप तक पहुंच गई, फिर उसके बाद मैं किसी और को सुनाऊंगा, आपको लगेगा आपका सब्जेक्ट किसी और को सुना दिया। उन्होंने कहा हाँ मैं कर लेती हूँ। उन्होंने बात जो भी मिशन प्रोड्यूसर और हो गया, उन्होंने हाँ कर दी। अब जब आया तो उन्होंने कहा आप रोल करेंगे, मैंने जया जी के साथ आपको रोल करते दोनों प्लेस में देखा है। मैंने कहा जी वहाँ जया जी की हाइट कम है, आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है। बोले आप 6 इंच के जूते पहन लो। और मैंने वैसे जूते बनाए, उनके ऑपोजिट रोल किया, वो हो गया। इतने में एक प्ले था शीशों का मसीहा, फैज अहमद फैज की पोइट्री के ऊपर उनकी कहानी, लाइफ कहानी थी, तो उसको जोड़ा हुआ था और वो हमने प्ले खेला। शबाना जी ने हाँ कर दिया। मैंने पूछा जावेद साहब करेंगे? बोले तुम पूछो भाई, मैं नहीं बोलूँगी। मैंने उनको सुनाया, उन्होंने कहा हाँ मैं करूँगा, पढ़ना है खाली ना, याद तो नहीं करने डाले, मैं पढ़ूँगा और पोइट लगूँगा मैं। तो उन्होंने भी ओके कर दिया। तो वो लेके हमने 5-6 शो इधर ही किए, लेकिन जो फिर वो उनके राइटर्स उस प्ले के, वो चाहते थे कि वो रोल करें खुद।

तो मैंने कहा भाई अब ये तो प्ले चल गया है, अब तो वो करते हैं, मैं उनको थोड़ा बोलूँगा तो आप छोड़ दीजिए प्ले। शबाना जी को ये थोड़ा करूँगा कि अब आपके साथ ये करेंगे। तो कहा फिर मैं आपको स्क्रिप्ट नहीं दे सकता, समथिंग राइटर ने। ठीक है, शौकत भाभी ने अपना अपनी आप बीती लिखी, तो टाटा एक्सपेरिमेंटल थिएटर में उन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उसका स्टेज पे, पढ़ा तालियां बज रही हैं, ये और बहुत अच्छा लिखा हुआ है, आप वो किताब पढ़िएगा। तो जैसे ही खत्म हुआ चैप्टर, मैंने शबाना इस पे हम प्ले करेंगे, क्या बात करते हो? मैंने कहा आप उसमें रोल करेंगे यही वाला जो शौकत भाभी ने किया है, और अगर जावेद साहब करना चाहे कैफी साहब का रोल तो जावेद साहब को दे दे, आप दोनों का पेयर भी हो जाएगा सेम, आप लोगों ने दोनों साथ में किया हुआ है, तो कैसे तुमको लगता है कि ये सब्जेक्ट हो जाएगा, अच्छा बनेगा? मैंने कहा उसमें बीज सारे हैं, मैंने आपका तुम्हारी अमृता भी देखा है, उसमें भी आप बैठ के दोनों पढ़ते थे फारूक और आप, शीशों का मसीहा भी किया है हमने, और ये भी है, बहुत अच्छा बनेगा। तो फिर एक काम करिए, जावेद साहब से कहिए लिखें। मैंने कहा जावेद साहब को आप कहिए। बोले मैं नहीं कहूँगी, मुझसे ना करेंगे तो फिर मैं क्या करूँगी? आप अपने ढंग से आपने काम किया हुआ है ना उनके साथ, तो आप उनके उनकी स्क्रिप्टों फिल्में बना चुके हो, कहिए। तो फिर मैंने जावेद साहब से कहा कि आप ये स्क्रिप्ट लिखिए। तो जावेद साहब ने स्क्रिप्ट लिखी और रोल किया, और प्ले तब से लेकर आज तक चलता है। अभी जावेद साहब ने खुद बिजी हो गए, तो उन्होंने कहा रमेश जी अभी आप ना मुझे रोल के लिए मत बोलिए, क्या होता है मुझे आप लोगों के साथ डेटें मैच करनी पड़ती है शबाना की और वो, तो आप किसी और भी, तो आप कमलजीत सिंह करते हैं रोल, वो सेम रोल, और अभी हम टूर करते रहते हैं, अभी भी ऑफर ऑफर आई हुई है, जाएंगे बाहर।

0: रमेश जी, बहुत बरस तक फिल्में डायरेक्शन किया आपने, टेलीविजन पर काम किया, और उसके बाद फिर एक बहुत लंबा अरसा है जहां आप वापस थिएटर की तरफ लौट रहे हैं, और मैं आपके प्लेस देखता रहा हूं। आप थिएटर को जीते हैं, उसको एंजॉय करते हैं, वो एक जुनून है आपका। अपने सबसे लंबे समय से चले आ रहे प्लेज और इन दिनों जो कुछ नाटक आप कर रहे हैं उनके बारे में बताइए।
1: देखिए साहब, पहली बात तो यह है कि मैंने फिल्में करना बंद नहीं किया। मैंने लास्ट फिल्म बनाई है शत्रुघ्न सिन्हा जी के लिए, जिसमें रेखा जी और शत्रुघ्न सिन्हा है, उन्होंने प्रोड्यूस किया है, उनकी मिसेज और एक उनकी पार्टनर है कोई, दोनों ने मिल के, और फिल्म बहुत अच्छी बनी हुई है। अब वो कैसे रिलीज करेंगे वो अब देखते हैं, OTT पे करते हैं या क्या करना चाहते हैं। और उनके साथ नाटक भी मेरा चल रहा है, उसके भी शोज करते रहते हैं। तो इप्टा में जो नाटक मेरे हैं जो बहुत देर से चल रहे हैं, एक तो शतरंज के मोहरे
0: सबसे पुराना है।
1: पुराना है मतलब ये था कि मैं जब पहली बार शतरंज के मोहरे करने लगा था, उसमें मैं बच्चा था और चेहरे से लगता था कि 14-15 साल का है, और मुझे लव सीन करना होता था। 20 साल का रोल है शाम का, उसमें कैरेक्टर का नाम शाम है, तो मैं मुंह चुगाता था रोल करने के लिए कि मैं बड़ा लगूं, और मेरे सामने जो एक्ट्रेस होती थी वो अपना सुलवार या हिंदी में या कहीं और दूसरी जगह कोई नॉन एक्ट्रेस ऐसा रोल करती थी, तो मैं बड़ा लगना चाहिए। और उस वक्त जब मैंने पंजाबी में पहले प्ले किया, उस वक्त मनमोहन कृष्ण जी एक मेन काका जी का बुजुर्ग का रोल कर रहे थे, चाचा का, और हंगल साहब करते थे रोल आचार्य का उसमें, और मैं शाम जो लड़का है उसका करता था, और बाकी साथ में नितिन सेठी उस वक्त के हीरो थे, वो करते थे डॉक्टर सतीश का रोल, अचला सिद्धे उनकी मतलब मेरी बड़ी बहन का रोल करती थी। ये टाइप यहाँ से शुरू किया था। अब जो साहब मैंने वो प्ले का हमको शो मिल गया हैदराबाद में, ऐसा हुआ कि एक प्ले कर रहे थे आदर का ख्वाब, जिसमें बलराज सहनी साहब थे और गीता सिद्धार्थ, तो पिग्मिलियन पे था प्ले। तो उन्होंने कहा हमको दो प्ले चाहिए, तो हमारे पास दूसरा प्ले कुछ था नहीं, तो हमने कहा ये जो पंजाबी में प्ले किया है इसको सब हिंदी में बोलना शुरू करो, तो देखते हैं कि कितना तक क्या चाहिए। वो बोलने लग गए, सब लोग हिंदी में सेम लाइन है, पंजाबी और हिंदी नजदीक नजदीक की है, सिंपल वैसे ही वर्ड रखे, क्लिश हिंदी नहीं होगी, सिंपल हिंदी होगी, वो बन गया। जब एंड तक पहुंच गए फिर मैंने उसको फाइनल थोड़ा सा छोटा मोटा जो करेक्शन करनी थी

0: कर ली। वो करके हम लोग जाके हैदराबाद में हमने शो खेला और तब से लेकर अब आज तक ये नाटक हिंदी में चल रहा है। अब मैं वो रोल मेरे मैंने बंद किया तो रमन कुमार करता था वो रोल, मैं कोई और रोल करने लग गया। रमन कुमार के बाद राकेश बेदी वो रोल करने लग गया, फिर राकेश बेदी बड़ा हो गया, वो 20 साल का नहीं लगता, बड़ा लगने लग गया, तो अब कोई और बच्चा नया लड़का करता है। और मैं अब वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता हूँ कभी कभी, और मैं जब राकेश बेदी अवेलेबल होता है तो वो मनमोहन कृष्ण का रोल करता है, अगर वो नहीं अवेलेबल तो मैं करता हूँ।
1: वाह वाह,
0: तो वो प्ले आज तक चलता आ रहा है। दूसरा प्ले जो मैंने आपको पहले कहा कि ये प्ले जो आखिरी क्षमा जो कैफी साहब का लिखा हुआ है और जिसमें बलराज सहनी काम करते रहे, उसके बाद उस गालिब का रोल भरत कपूर करते रहे, अभी वो कमलजीत भरत कपूर का रोल करते हैं गालिब का रोल, और अभी हमने 56 साल की ट्रॉफियां बांटी हैं उसकी।
1: जी जी जी, काबुली वाला भी चल रहा है।
0: काबुली वाला अलग है, काबुली वाला का ऐसा था कि यही जब मैं शबाना के संग प्ले कर रहा था तो रिंकी भट्टाचार्य जी विमलराज की बेटी वो आई, परीक्षित सानी के संग आई थी, उन्होंने कहा कि रमेश तुम काबली वाला क्यों नहीं स्टेज पे खेलते। मैंने कहा काबली वाला एज इट इज तो नहीं खेला जा सकता, नाटक का वर्षन बनाना पड़ेगा, वो करके मैं फिल्म के ऊपर से ले लेता हूँ, आपके ओरिजिनल डायलॉग ओरिजिनल चीजें लेके एक स्क्रिप्ट बना के आपको सुना दूंगा। और परीक्षित सानी से कहा तुम रोल कर लो काबली वाला का, क्योंकि बलराज सानी ने रोल किया था। उन्होंने नहीं यार, मैं अब हिम्मत नहीं है स्टेज पे काम करनी, वो टाइम अलग था, अब नहीं कर पाऊंगा। तो मैंने आसिफ शेख से कहा कि भाई ये है तो आसिफ शेख करता है वो रोल काबली वाला का, और वो नहीं होता तो विकास रावत कभी प्रभार करता।
1: मैंने देखा है, क्यूट प्ले है।
0: हाँ, बहुत अच्छा। तो लेकिन वो तो ओरिजिनल फिल्म से लिया हुआ है।

0: स्क्रिप्ट जो बनाई है फिल्म से लेके बनाई है और उसका हमने एक वर्सल स्टेज पे क्या हो सकता है उतना करके जमा लिया अपना और चलता है, लेकिन बहुत लंबा नहीं है, 40 मिनट का ही है प्ले। तो उसके साथ मैंने एक बार जाहिदा हिना करके एक पाकिस्तान की राइटर है, उन्होंने काबली वाला लौट आया इन्हीं करेक्टर को लेके लिखा था और वो उन्होंने एक आर्टिकल सा लिखा, प्ले नहीं लिखा बता। तो मैं एज इट इज जब मेरा 40 मिनट का जिसको 2 घंटे पूरा चाहिए, तो मैंने तन्वी आदमी के संग सेकंड पोर्शन पढ़ने का रख लिया। अभी आपने देखा काबली वाला जो एक्टरों के साथ अच्छे, ये सोलो पढ़ती है काबली वाला लौट आया, तो जिसको 2 घंटे का होता है तो तन्वी आदमी करती थी। तन्वी आदमी अवेलेबल नहीं हुई तो राजेश्वरी सचदेव ने एक आध बात कर लिया, फिर लुबना सिद्दीकी ने एक आध बात कर लिया। पढ़ना है भाई, तुम रीडिंग एक दो दिन बार मेरे साथ कर लो और स्टेज पे पढ़ो, वो बहुत अच्छा लिखा हुआ है। और ये उसके सारे बीज जो है काबली वाला के लेके उन्होंने लिखा कि काबली वाला जब उसकी बेटी पैदा, वो बच्ची जो बड़ी हो गई है, वो छोटी बच्ची बड़ी हो गया और वो डॉक्टर बन गई है और अफगानिस्तान में मरीज है आजकल और उनका इलाज करने वहां गई है। ऐसा लिखा, बहुत अच्छा लिखा। तो वो पोर्शन हमने काबली वाला हमारा चलता रहता है।
1: रमेश जी, बहुत ही विस्तार से अब बातें हुई हैं और बहुत दिलचस्प कहानियां आपने सुनाई अपनी जिंदगी की, आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया इस बात के लिए।
0: आपका शुक्रिया भाई, ये अंदर की सारी बातें आपने निकलवा दी मेरे, ये मैं खुद भूल चुका था, अभी कई बातें याद कर रहा हूँ, कुछ नाम याद नहीं आते हैं। अरे भाई उसका वो तो भी ये आपका ही वो था कि आपने आराम से सुना और इतनी देर तक सुना मुझे।
1: बहुत शुक्रिया सर।
0: शुक्रिया जनाब।

0: रंगमंच और फिल्मों के जाने माने निर्देशक रमेश तलवार से आपके इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। आज आपने पांचवा भाग सुना। संपादन यूनुस खान, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
1: तारा में आज उजाले उनकी यादों की।

0: दिनों एक वाक्य ऐसा है जो हम सब बहुत बार बोल रहे हैं और वो वाक्य है उफ ये गर्मी। हीट वेव का प्रकोप पूरे देश में चरम पर है। डॉक्टर सुनीता दुबे बता रही हैं हीट वेव से जुड़ी सावधानियों के बारे में।
1: जो हीट का प्रॉब्लम है वो बहुत मेजर है। अगर डिग्री आपका 40 के ऊपर हो गया सेल्सियस पे, तो उसको आपको सडनली चक्कर आना, डिजी होना, क्रैम्प आना, उल्टी होना, आवाज़ भी टिनिटस भी आना है गर्मी की वजह से, और आपको लैस भी हो जाते हो। अगर आपको लगता है कि हीट वेव के द्वारा अफेक्टेड हो, जैसे कि आप बाहर हो, धूप में खड़े हो, इमिडिएटली आपको छाया में आना चाहिए, बॉडी को ठंडा कोई पानी है या टॉवल से गौस से करना चाहिए, इमिडिएटली हाइड्रेट करना चाहिए। ORS हुआ, नींबू पानी हुआ, शक्कर का पानी हुआ, या लिक्विड जो भी, नारियल पानी हुआ, ये सब छाछ, ये सब चीजें आप पी के इमीडिएटली अपने बॉडी को हाइड्रेट करिए। स्पेशली अगर आपको मेडिकल प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, या प्रेग्नेंट हो या छोटे बच्चे हो, ये लोग ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। जो लिक्विड हो, अप्रोक्सीमेटली 3 लीटर बॉडी में आपको फ्लूइड जाना चाहिए, वो किसी भी फॉर्म में हो। सेकेंडली आपको जो खाने का भी टाइम है वो आपको थोड़ा सा ठीक से करना चाहिए, क्योंकि लाइट खाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको घर का होम कुक फूड खाना चाहिए और सिंपल खाना खाना चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि हीट वेव है, बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहा है, आपका बीपी चेक करना पड़ेगा आपको, तो आपको एक्सपर्टाइज डॉक्टर के पास जाना चाहिए और इमीडिएटली जो प्रिकॉशन, जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट देते हैं उसको करना चाहिए। उस वक्त आपको IV लगाना पड़े या ORS आपको अर्ली टाइमली दिया जाए और मेडिसिन देना पड़े, डिपेंड्स कि अगर कोई मेडिकल इशू है तो आपको मेडिकल इशू को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो इससे बेसिकली हीट वेव है एक कंडीशन है जो पर्टिकुलर मंथ में अभी शुरू हो गया है देश भर में। हमें थोड़ा प्रिकॉशन, केयर एंड अलर्ट रहने की जरूरत है।
2: मिलती हैं धाराएं 3, विचार, स्वर और संगीत।
3: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
2: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
3: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
2: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
3: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
2: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
3: तुम आ गए।
2: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
4: जब जब किसी हमला

0: ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
1: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।

0: ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू।
1: श्रोताओं, स्टूडियो की खड़ी में दिन के 11 बजे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण।

चलता हूँ आपसे कुछ ही देर बाद 11:05 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। दिन में 12:00 NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम होगा उमंग। 12:30 पर आपको सुनवाएंगे लोक संगीत का कार्यक्रम माटिकेश्वर। आज के कलाकार हैं भवनलाल सोलंकी। दिन में 1:05 पर घर आंगन कार्यक्रम होगा, इसमें चर्चा होगी सही खर्च ही सही निवेश, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार, इस विषय पर भी चर्चा होगी। साथ ही आपके लिए लेकर आएंगे एक भेंट वार्ता, थायराइड रोग कारण बचाव और उपचार, इस विषय पर डॉक्टर इद्रीस गोरी से बातचीत की है अयूब खान ने।

श्रोताओं, दिन में 2:30 पर आप सुन पाएंगे फिल्म संगीत का फरमाइश कार्यक्रम मेलबॉक्स। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए श्रोता आज दिन में 1 बजे तक अपने ईमेल्स हमें भेज सकते हैं। हमारा मेल एड्रेस है मनभावनचोरू@gmail.com।

श्रोताओं, हमारी सायंकालीन सभा प्रारंभ होगी शाम 5 बजे। हम आपको सुनवाएंगे आकाशवाणी दिल्ली से प्रसारित राष्ट्रपति भवन में आयोजित पद्म अवार्ड 2026 कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। शाम 7 बजे किसान भाई सुनेंगे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। चर्चा होगी इस सप्ताह के प्रमुख कृषि कार्यों पर। खेती में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग, इस विषय पर भी बातचीत होगी। साथ ही डेयरी व्यवसाय के आधुनिक आयाम, इस विषय पर चर्चा होगी। बाजार भाव, मौसम की जानकारी और अन्य जानकारियां आप तक पहुंचाई जाएगी। रात 8 बजे सुनिएगा फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता। 9:15 पर राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम होगा। 9:30 पर आकाशवाणी दिल्ली से हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम पब्लिक स्पीक। 10:30 पर आप हमारे केंद्र से सुन पाएंगे सुगम संगीत का कार्यक्रम। 10 बजे आकाशवाणी जयपुर से हम प्रसारित करेंगे कार्यक्रम खेल जगत।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण। हम आकाशवाणी के चुरू केंद्र से बोल रहे हैं। निजी प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

आप सुन रहे थे ताल फिल्म का ये गीत अनुराधा पोडवाल और सोनू निगम की आवाज में। आपको सुनवा रही हैं आई मिलन की रात फिल्म का गाना अनुराधा पोडवाल और साथियों की आवाजों में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत कुंज बिहारी के साथ।

0: आप सुन रहे थे अजनबी फिल्म का गाना, लीजिए अब सुनिए कर्ज फिल्म में लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज।
1: तू कितने बरस की?
2: मैं 16 बरस की।
1: तो मैं 17 बरस का।
2: 16
1: 17
2: 17
3: 16

आकाशवाणी के चूरू केंद्र से श्रोता सुन रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत कसम तेरी कसम। लीजिए सुनिए इस फिल्म का ये प्यारा सा गीत अनुराधा पोटवाल और पंकज उधास की आवाज में।

कसूर फिल्म का ये गीत आप सुन रही थी अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज में। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोता सुन रहे हैं आकाशवाणी चूरू से चित्रपट संगीत। खट्टा मीठा ये है फिल्म का नाम जिसके गीत आप सुन रहे हैं के और सुनिधि चौहान की आवाज में।

श्रोता भी सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम चित्रपट संगीत। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। निजी प्रस्तुत है एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग।

0: क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
1: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
0: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
1: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
0: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
1: तो श्रोताओ, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
1: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIT NCERT को जरूर फॉलो करें, इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
1: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है शेर और चूहे की दोस्ती।
2: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था, अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।
3: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना, एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
4: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा, ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
3: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।

0: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
1: महाराज।
2: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोर जी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतन जीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतन जीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेना नायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतन जीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर,
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंका जनाब।
7: अरे अरे, ये क्या हुआ?
8: अरे बचो,
9: फट जाओ,
10: सब निकालो,
2: साथियों। हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
4: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
11: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
12: May I come in, sir?
4: Yes, come in.
12: Sir,
4: जवान,

0: तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो
1: सर।
0: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
1: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
0: हाँ हाँ, कहो।
1: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
0: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
0: गो अहेड यंग मैन।
1: सर,
2: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
3: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
2: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौबिंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
4: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि ना पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
5: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
4: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
6: जी जनाब।
7: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
1: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
5: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
4: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट द गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
5: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
4: फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
4: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
4: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
5: यस सर।
2: उस दिन टैंकों का भीषण युद्ध हुआ जिसमें दुश्मन के 13 टैंक ध्वस्त कर दिए गए, जिसके कारण पाकिस्तानी सेना की आक्रमण करने की क्षमता लगभग समाप्त हो गई। और वो

0: चौबिंडा छोड़कर चली गई।
1: इस तरह चौबिंडा क्षेत्र पर भारत का अधिकार हो गया। अब लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नेतृत्व में सेना बुटूर और डोगरांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बुटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
0: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। ये कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
5: श्रोता भी सुन रही थी NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। इसका प्रसारण आकाशवाणी के चोरू केंद्र से किया गया।

हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 12:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम माटी के स्वर। आज के इस कार्यक्रम में सुनिए भंवरलाल सोलंकी और उनके साथियों की आवाजों में लोक रचनाएं।

0: श्रोता भी सुन रहे थे भंवरलाल सोलंकी और साथियों की आवाजों में लोक रचनाएं। कार्यक्रम माटी के स्वर अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन का 1 बजने वाला है। अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर से प्रसारित हिंदी में प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।

0: मैं रितिका गुप्ता। प्रदेश में वर्षा जल संचयन, भूजल पुनर्भरण और पारंपरिक जल स्रोतों की सफाई के उद्देश्य से आज से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान 2026 शुरू किया गया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीसलपुर बांध से अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में ये महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने प्रदेशवासियों से इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की।
1: मैं राजस्थान की जनता से अपील करना चाहता हूं कि आज गंगा दशहरे के दिन हमने ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है। आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जल ही जीवन है और हमको जल को बचाने का भी काम करें और हम जल को संरक्षण करते हुए स्वच्छता का भी हमने इसमें रखा है कि हमारा जल स्वच्छ रहे। निश्चित रूप से राजस्थान की जनता पूर्ण रूप से इसका समर्थन करते हुए हम इस अभियान को पूर्ण करेंगे।
0: अभियान के शुभारंभ के मौके पर महिलाओं की ओर से कलश यात्रा भी निकाली गई। सवाई माधोपुर में सूरवाल बांध पर आयोजित समारोह का शुभारंभ कृषि मंत्री डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने किया। उन्होंने धरती पर बढ़ते तापमान और जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए सभी से पर्यावरण संरक्षण में भागीदारी निभाने का आह्वान किया। इस मौके पर उन्होंने उपस्थित जनसमूह को जल संरक्षण की भी शपथ दिलाई। उधर सैलूंबर में सरणी नदी का पूजन कर स्वच्छता अभियान आयोजित किया गया। जैसलमेर में सरपाल से प्रभात फेरी और कलश यात्रा की शुरुआत हुई और प्रेरक नारों के माध्यम से जल संरक्षण का संदेश दिया गया। गंगा दशमी से शुरू हुआ ये अभियान 5 जून तक चलेगा। इस दौरान नदियों, नहरों का पूजन, प्रभात फेरी, कलश यात्रा और नुक्कड़ नाटक, पौधरोपण और जल संरक्षण शपथ कार्यक्रम होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। उनका आमेर महल और सिटी पैलेस सहित कुछ ऐतिहासिक स्थानों पर भ्रमण का कार्यक्रम है। इस हाई प्रोफाइल दौरे के मद्देनजर प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियों और यातायात पुलिस ने विशेष व्यवस्थाएं की है। जयपुर में एयरपोर्ट से लेकर आमेर महल तक यातायात की विशेष व्यवस्था रहेगी। वहीं सुरक्षा कारणों को देखते हुए आमेर महल दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे तक पर्यटकों के लिए बंद रखा जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 2 दिन का बीकानेर दौरा आज से शुरू होगा। उनका आज रात बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री कल सांचू सीमा चौकी पर बीएसएफ जवानों से संवाद करेंगे। वे सैनिक सम्मेलन में भी भाग लेंगे, साथ ही उच्च अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले इस समारोह में विभिन्न क्षेत्र की 66 प्रतिभाओं को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। ये समारोह 2 चरण में होगा। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की मंजूरी दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है। प्रदेश से इस बार 3 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। इनमें अलगोजा वादक तगाराम भील, भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती और समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज शामिल है। हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरी दुनिया से मुस्लिम समुदाय के 1,60,000 से अधिक लोग सऊदी अरब के मक्का शहर से 5 दिन के इस सफर की शुरुआत करेंगे और मीना में इकट्ठा होंगे। इसके बाद जायरीन कल तड़के अराफात के मैदान की तरफ जाएंगे। इस साल हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। वहीं राजस्थान से इस बार करीब 4,500 लोग हज के मुकद्दस सफर पर गए हैं। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले 2 सप्ताह में 4थी बार बढ़ाए गए हैं। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए प्रति लीटर और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। जयपुर में पेट्रोल करीब 112 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये चुरू केंद्र है। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम घर आंगन।

कार्यक्रम घर आंगन सुनन हाली सगळी श्रोता भेणारो घणे मानसो स्वागत है बेडो थार आप रे कार्यक्रम घर आंगन माईने। और आज रे ई कार्यक्रम की प्रस्तुति ले हाजिर हूँ मैं थारी बहन विनोद। तो स्वीकार करो मेरे कानी से मोकला मोकला राम राम। बेणो वो महीनो है जो तपती दोपहरी को और गर्मी को महीनो है। इर महीने आपने अपने स्वास्थ्य को विशेष तौर पर ध्यान रखने की जरूरत है। चाहे अपने स्वास्थ्य की बात करा या फिर अपने परिवार के बुजुर्गों की टावरा की और घर के बाकी सदस्यों की, तो सन ही ई तावड़े महीने घनी सावधानी बरतने की जरूरत है। स्वास्थ्य से बात करा तो एक खास मुद्दा वो भी है कि आजकल जो अपने स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है 12 महीने और सुधार है जो को के हो सके है। स्वास्थ्य से जुड़ी जो सेवा अपने उपलब्ध करवाई जा रही है सरकार के द्वारा, तो 12 महीने भी सुधार हो सके है और निजी क्षेत्र रे महीने भी स्वास्थ्य सेवा का महीने के सुधार हो सके है। आज अपनी बातचीत को विषय भी इ पर ही रवे लो। स्वास्थ्य सेवा रे महीने सुधार के लिए बहुत सा तरीका ही भेणो आजकल माध्यम है तकनीकी को, डिजिटल युग को। तो ये तकनीकी के युग रे महीने डिजिटल जकी तरीका ही जकी तकनीकी है बिन अपनार आपा कई प्रकार की स्वास्थ्य सेवा में सुधार है जो को कर सका। हाँ, अपनी स्वास्थ्य की जो बुनियादी सुविधा है बिन मायने बढ़ोतरी होनी बहुत जरूरी है। और बुनियादी सुविधा हमारा मायने एक तो बुनियादी ढांचो ही आवे है जक मायने आधुनिक तौर तरीका अपना के या फिर यूं कहवा कि आधुनिक जका उपकरण है बाकी व्यवस्था स्वास्थ्य केंद्र रे ऊपर अगर बढ़ाई जावे तो कई प्रकार का जो निदान उपकरण है या फिर जो स्वास्थ्य जांच से संबंधित सुविधा है वह दूर दराज और गांव रे क्षेत्र रे मायने होनी जरूरी है। क्योंकि आजकल बीमारियां हैं बारो कोई था कोनी और अन बीमारियां रे सागे ही आपने अपने स्वास्थ्य को भी विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। जय की अपा बात करा अपने स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य में कई प्रकार की चीजें आवे है। अपनो खान पान भी आवे है, बीमारियां से लड़नो भी आवे है, उपचार भी आवे है, उपचार और जो रोग हो जावे भी रोकथाम भी शामिल है। तो अन सब चीजा के लिए अपने के सुविधा है जिकी और बढ़ानी है और हर सुविधा के मायने आप सरकार से के जावा हाँ या भी एक अपनी सुविधा के मायने एक बात है जिकी शामिल है। आधुनिक युग रे मायने स्वास्थ्य सेवा रे ऊपर पुरजोर वृद्धि होना बहुत जरूरी है और हो रही भी है। फिर भी आप आज ई विषय के ऊपर चर्चा ई वास्ते ही कर रहा हाँ क्योंकि कया कर है के पहलो सुख निरोगी काया। स्वास्थ्य रे ऊपर आपा चर्चा फेरू करांगा, पहले सुनाओ लोकगीत।

गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण है वो भी दियो जानो चाहिए, जे है कि चिकित्सा शिक्षा और नर्सिंग जो पाठ्यक्रम है वाने आधुनिक तकनीकी के अनुरूप अपडेट करियो जावे, ताकि हर एक शिक्षणीय के लिए जो आज ई वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो उपकरण चल रहे हैं, जो जांच की व्यवस्था है, जो मशीना है और जो दवाइयां है, बाकी बारे में पूरी जानकारी होवे और बिको जो फायदो है वो इलाज के रूप में मरीजा ने मिल सके है। आजकल अपन देखा है कि हर दूसरे तीसरे दिन कोई नई बीमारी है जिसकी सामने उजागर हो जावे, तो नई बीमारियां के इलाज के लिए भी चिकित्सा अनुसंधान ने बढ़ावो देनो अपनी स्वास्थ्य सुविधा रे मायने सुधार है। एक मायने अपने खुद ने निजी तौर पर सरकार का माध्यम से और हर एक मिनट ने प्रयास करना चाहिए आपके स्वास्थ्य ने उत्तम बनाने के लिए, ताकि आप जो हाँ वह अपनी जी की स्वास्थ्य सुविधा है वहाँ को पूरा लाभ ले सका और आप अपने स्वास्थ्य ने बेहतर बना सका।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अंतराल से पहले अपा सुनो एक सांत्र सो लोकगीत और अब भेणो अपा बातचीत करा हाँ अपने कार्यक्रम में आगे की। तो एक भेंट वार्ता आपने सुनावा, विषय है थायराइड रोग कारण बचाव और उपचार। ये विषय के ऊपर अदृश्य गोरी जो डॉक्टर साहब हैं बासु अयूब खान की बातचीत आपने सुनावा और ये बातचीत के दौरान स्वास्थ्य से संबंधित कई प्रकार की जानकारियां हैं जिका अपा ने मिले ले भेणो। तो सुना अपा थायराइड रोग कारण बचाव और उपचार विषय पर डॉक्टर अदृश्य गोरी की अयूब खान से बातचीत।
2: समय पर हम आपके स्वास्थ्य की पूरी देखभाल करते हैं और आज इसी सिलसिले में हमारे स्टूडियो में बता रहे हैं डॉक्टर अदृश्य खान जो फैमिली फिजिशियन है, भारतीय अस्पताल चूरू में पोस्टेड है। डॉक्टर साहब आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद
2: डॉक्टर साहब। आज 25 मई है और 25 मई को हम वर्ल्ड थायराइड डे मनाते हैं, इस दिन का मनाने का उद्देश्य क्या है?
3: 25 मई को जो वर्ल्ड थायराइड डे मनाया जाता है उसका उद्देश्य ये है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों में जागरूकता फैले कि ये डे क्यों मनाया जाता है। जागरूकता फैलेगी तो लोगों को इसके सिम्टम्स के बारे में, लक्षण के बारे में पता चलेगा कि बीमारी के इस तरीके के लक्षण हैं। लक्षण का अगर लोगों को पता चलेगा तो उससे उनकी जांचें होंगी, जांच होगी तो मरीज को पता चलेगा, पता चलने के बाद उसका इलाज होएगा। तो इस पूरा जो 25

0: मई के दिन जो वर्ल्ड हेरिटेज डे मनाया जाता है, उसका मेन उद्देश्य ये है कि लोगों में जब बहुत से बहुत जागरूकता फैले।
1: साहब, वर्ल्ड थायराइड डे की जब बात चल रही है, तो ये किस तरह की बीमारी है?
0: देखो, ये एक बीमारी है कि जो अपने जो थायराइड की, जो मैं आपको बता दूं मोटी मोटी बात, की एक ग्रंथि होती है जो अपने गले के अंदर होती है, जिसमें ये अगर ज़्यादा काम कर रही है उसकी वजह से भी एक बीमारी का रूप ले लेती है, अगर ये कम काम कर रही है तो उसका भी एक बीमारी का रूप ले लेती है। जिसके अंदर क्या है कि जैसे थायराइड है, तो अगर ये कम काम करने लग गई तो इसको अपन हाइपोथायराइडिज्म बोल देंगे, अगर ये ज़्यादा ओवर एक्टिव हो गई तो इसको अपन हाइपरथायराइडिज्म बोल देंगे। अगर ये कम काम कर रही है तो उसमें किस तरीके के मरीज को लक्षण आएंगे उसका एक अलग करेक्टरिस्टिक है, अगर ये ज्यादा काम कर रही है उसके जो लक्षण आएंगे वो अलग तरीके के हैं।
1: डॉक्टर साहब, एक बात और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि इस बीमारी का पता कैसे चले?
0: पता ये है कि जो मरीज है उसमें, जैसे अपन बात करें कि भाई ये किसी भी एज फैक्टर को इन्वॉल्व कर सकती है, लेकिन उसमें मोस्टली क्या है कि ऑटोइम्यून डिजीज आती है, अपनी बॉडी खुद ही इम्यून सिस्टम के खिलाफ एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है, या फिर कोई मेडिकेशन, जैसे कोई बंदा ले रहा है जिसके अंदर आयोडाइज ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, या कोई लिथियम जैसी कोई ड्रग ली जा रही है, या कोई नेक की सर्जरी हुई है, या कोई नेक गले के अंदर अपने कोई कैंसर की बीमारी हो, तो इसमें अपने लक्षण का ये है कि जैसे मरीज अपने पास आता है कि भाई मेरे बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, कमजोरी हो रही है, मेरे बाल झड़ रहे हैं, मेरे हाथों में सूनापन हो रहा है, या आवाज का भारी हो रहा है, या अब धड़कन उसकी जो है वो कम हो रही है, या उसमें अपन देखें कि उसका वो मरीज कहता है कि मैं कुछ ध्यान लगाने की कोशिश करता हूँ जिसमें क्या है कि मैं ध्यान लगा नहीं पा रहा हूँ।
1: अगर इस तरह के लक्षण नजर आए तो समझो थायराइड की बीमारी उसके टच हो चुकी है, तो उसका इलाज वो कैसे ले?
0: उसका इलाज है कि जैसे ये है जो है हाइपोथायरायडिज्म की तरफ मरीज जा रहा है, वो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाए या अपना हॉस्पिटल जाए, वहाँ से थायराइड के अपने जो फिजिशियन बैठते हैं उनको बताए कि भी मेरे इस तरीके से मेरे लक्षण आ रहे हैं और मेरा जो है वजन भी जो है मैं कुछ खा नहीं रही हूँ, उसके बाद भी मेरा वजन बढ़ रहा
1: बढ़ रहा
0: है,
1: है।
0: तो उसमें हाइपोथायरायडिज्म की तरफ उसके सिम्टम हैं, तो वो जाँच कराएंगे अपने हॉस्पिटल से और उसके बाद उसका ट्रीटमेंट शुरू किया जाएगा।
1: डॉक्टर साहब, एक बात और हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि थायराइड का खतरा सबसे ज्यादा किन लोगों को होता है?
0: थायराइड का जो मोस्टली खतरा है वो अपने फीमेल में ज़्यादा होता है मैन की बजाय, क्योंकि उनमें 5 से 8 टाइम जो है वो हायर रिस्क रहती है, क्योंकि फीमेल में एक हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसकी वजह से क्या है जो इम्यून सिस्टम को मॉड्यूलेट करता है, वो क्या है उसकी वजह से इम्यून सिस्टम पे अटैक हो जाता है, तो इस वजह से थायराइड ओवर एक्टिव या अंडर एक्टिव हो जाती है।
1: डॉक्टर साहब, थायराइड की जब बात चल रही है तो एक बात और हम आपसे जानना चाहते हैं कि किन लोगों को थायराइड का टेस्ट करवाना चाहिए?
0: देखो, जो जिनका वजन गिर रहा है, अचानक से वजन गिरा है या अचानक से वजन बढ़ा है, या जिनको पसीना ज़्यादा आ रहा है, घबराहट हो रही है, बेचैनी हो रही है, हृदय की जो धड़कन है वो बढ़ रही है या घट रही है, हाथों में झंझनाहट या सूनापन आ रहा है, वैसे लोगों को मस्ट जो है कि जाके अपनी जांच करवाएं।
1: जी डॉक्टर साहब, थायराइड के लिए कौन-कौन से टेस्ट आवश्यक होते हैं जो मरीज समय पर थायराइड की जांच करवा के अपने आप को वो स्वस्थ मान सके?
0: थायराइड के लिए जब सिम्टम इस तरीके का अगर पेशेंट प्रेजेंट करता है तो उसमें अपन जो है नॉर्मल सीबीसी हुआ, आरएफटी हुआ, कैल्शियम हुआ, थायराइड हुआ, कोलेस्ट्रॉल हुआ, इस तरीके के जो टेस्ट है वो अपन करवा सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, उम्र की बात चले तो थायराइड की उम्र में कोई महत्व है? किस तरह की उम्र के लोगों की थायराइड हो सकता है?
0: उम्र का इसमें ज़्यादा वो सिनेरियो नहीं है, इसमें जेनेटिक है, या जैसे किसी के माँ बाप को है तो वो भी एक रिस्क जोन में है, या कोई लेडीज है वो खुद थायराइड की उसको है बीमारी और वो प्रेग्नेंट है, तो उस समय उससे मस्ट है कि वो अपने जो डॉक्टर से कंसल्ट करे, क्योंकि प्रेगनेंसी में जो डोज है वो डबल हो जाती है ताकि वो बच्चे से उससे बच्चा जो होने वाला है उससे उसका बचाव हो सके।
1: डॉक्टर साहब, अक्सर देखा जाता है कि गर्भवती महिलाओं के थायराइड की समस्या बहुत ज्यादा होती है, ये क्या कारण हो सकता है?
0: थायराइड का यही है कि वो अब पहले जैसे उनको थायराइड नहीं थी, इसमें क्या होगी, जो प्रेगनेंसी जो है वो एक ऐसी स्टेट है जिसमें शरीर का सारा जो प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है, वही एक पार्ट है इम्यून सिस्टम का, जिससे वो एस्ट्रोजन हार्मोन की वजह से उनमें ये ऑटो इम्यून सिस्टम जो है वो अटैक करने लग जाता है और उधर से थायराइड की जैसी बीमारी उत्पन्न हो सकती है।
1: गर्भवती महिलाएं के थायराइड हो जाए तो वो क्या करें?
0: गर्भवती महिलाओं के अगर थायराइड हो जाता है तो वो अपन टाइम पे दवाई खाएं। अगर कोई लेडीज है वो गर्भवती है और उसको थायराइड हो गई तो वो अपने जरूर इसमें लापरवाही ना बरतें, क्योंकि अगर किसी को थायराइड है, उसको पता है कि मेरी थायराइड हो गई, उसके बावजूद अगर वो दवाई नहीं खा रही है तो उस स्थिति में मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रीएक्लेम्प्सिया होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बच्चा है उसके अंदर जो है बर्थ डिफेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं
1: जी,
0: और बच्चे के डेवलपमेंट पे भी फर्क पड़ता है।
1: डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि गर्भवती महिलाएं थायराइड की जांच अवश्य करवाएं, जांच के बाद वो अपने आप को स्वस्थ पाए। डॉक्टर साहब, एक बात और है कि गर्भवती महिलाओं के थायराइड की समस्या हो जाती है, फिजिशियन से कंसल्ट करके, गायनिक से कंसल्ट करके वो अपने आप को स्वस्थ रख लेती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि जब उसका बच्चा समय पे हो जाता है और वो पूरी तरह से जच्चा और बच्चा सुरक्षित होते हैं, उसके बाद अपने आप ये थायराइड समाप्त हो जाती है, क्या इस ये बात सही है?
0: हाँ, जो इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिवेट हुआ था वो अपनी नॉर्मल धीरे धीरे करके आ जाता है, लेकिन अपने को रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए कि भाई किस तरीके से अपना स्टेटस चल रहा है थायराइड का, उसी तरीके से अपने को डोज में वो है धीरे धीरे इंक्रीज डिक्रीज करनी पड़ती है।
1: डॉक्टर साहब, अब बात करते हैं हम जांच की, थायराइड की जांच कहाँ कहाँ होती है? अपने भारतीय अस्पताल चूरू में क्या थायराइड जांच की व्यवस्था है तो कहाँ है?
0: बिल्कुल जी, हमारे हॉस्पिटल में बहुत पहले से भी है, आज भी है थायराइड की जो जांचें हैं, थायराइड के अलावा बहुत सारी जांचें हैं जो अपने हॉस्पिटल में होती है, जिसमें जो अपने सेंट्रल लैब में है, नीचे अपनी सेंट्रल जो लैब का जो बिल्डिंग है उसमें नीचे होती है।
1: क्या निःशुल्क होती है या उसका पैसा दिया जाता है?
0: नहीं, बिल्कुल निःशुल्क होती है, गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूट है, अब हमारे यहाँ जो भी जांचें होती है, चाहे वो सिटी स्कैन से लेके एमआरआई, ब्लड की इन्वेस्टिगेशन, यूएसजी, किसी प्रकार का किसी भी मरीज से कोई पैसा नहीं लिया जाता।
1: डॉक्टर साहब, चलते चलते हम आपसे एक बात और पूछना चाहते हैं कि आज भागम भाग की जिंदगी में हर इंसान तनाव की जिंदगी जीता है, और तनाव में थायराइड का क्या रोल होता है?
0: स्ट्रेस भी एक रोल है, स्ट्रेस जो है वो थायराइड को बढ़ा सकती है, जिसमें क्राइसिस होने के चांसेस होते हैं, अगर किसी को पता नहीं है और अचानक उसको स्ट्रेसफुल हो गया तो वो पेशेंट इस तरीके का जो है वो अचानक फेंट होके गिर सकता है, क्योंकि स्ट्रेस अचानक हुआ तो थायराइड का मेन, मेरा कहने का ये है कि थायराइड की कॉम्प्लिकेशन है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, कि कार्डियोवैस्कुलर कॉम्प्लिकेशन होती है, जैसे कम जिसको हाइपोथायरायडिज्म है उसको कार्डियोवैस्कुलर की कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस होते हैं, जिसमें हार्ट रेट है वो कम हो जाती है, कम होने से क्या होता है कि अपने पेरिकार्डियल इफ्यूजन, कुछ जो हार्ट के चारों तरफ पानी की चीज़ें ऐसे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, न्यूरोवैस्कुलर जो है वो कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, जिससे क्या होता है कि पेरिफेरल जो इंसान के हाथों की वो नसें हैं वो डैमेज होनी शुरू हो जाती है, जिससे उसमें झंझनाहट ऐसी तरीके की बीमारियां होनी शुरू हो जाती हैं, थायराइड से एनीमिया की जैसी बीमारी उत्पन्न हो जाती है। इसके विपरीत अपन बात करें कि भी हाइपर थायरॉयडिज्म है, उसकी वजह से किस तरीके की, अगर पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म है, वो टाइमली मेडिसिन नहीं ले रहा है या लापरवाही कर रहा है, अगर शुरू नहीं किया उसने, तो उसमें क्या है कि पेशेंट को अचानक से काम थायराइड का क्या था, शरीर के 3-4 मैन काम करने थे थायराइड को, हार्ट रेट को रेगुलेट करना, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, टेम्परेचर को रेगुलेट करना, अगर हाइपरथायरॉयडिज्म जैसी चीज़ हो गई, अचानक पेशेंट को कोई चीज़ सुनेगा या स्ट्रेस का कोई भी फैक्टर आएगा तो उसकी हार्ट बीट तेज बढ़ेगी और उसकी वजह से उसके स्ट्रोक या फिर उसके ब्लड क्लोट होने की संभावना रहती है।
1: डॉक्टर साहब, आज आप हमारे कार्यक्रम में आपने हमारे श्रोताओं को बहुत अच्छी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: मैडम, आप सुन रहे हैं भेंट वार्ता, वार्ता का विषय हो थायराइड रोग। कारण, उपचार, बचाव विषय के ऊपर डॉक्टर अदरीश गोरी से अयूब खान की बातचीत।

बाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे। तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज़।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: बेड़ो अब बात करा आपने गढ़ी कमाई री। कमानो है जो को हर मिनक को धर्म है और फर्ज भी है, क्योंकि जे आपा मिनख जमारो लियो है तो आपनों वो फर्ज बने है कि आपा आपने से जुड़ता भी जुड़ेड़ा सदस्य हैं, बाकी जिम्मेदारी उठावा। और जद आपा कमावा हाँ और अपनी गाड़ी जो कमाई है बिने सही जगह पर खर्च नहीं करा तो आपनों कमानो है जो को व्यर्थ हो जावे है। तो सही खर्च ही सही निवेश है। आज को आपनों वो विषय है, एक ऊपर आपा बातचीत कर सियाँ। तो बेड़ो सही खर्च ही सही निवेश है, अब बात बिल्कुल सही है और अपनी सही सोच ने भी दर्शावे है। पर इन समझना घणो जरूरी है कि निवेश काई होवे है और खर्च काई होवे है। खर्च और निवेश दोनों एक भी हो सके हैं और दोनों अलग अलग भी हो सके हैं। तो किया ए दोनों अलग अलग है और किया ए दोनों एक है, इन वाक्य रो सही अर्थ

समझने की कोशिश करा तो सही खर्च बेणो वो हुआ है जो को खर्च भविष्य रे मायने अपने फायदो दे। मतलब ओ के जो चीज अपने चाहिए यानी जो चीज अपने आगे बढ़ावे बिना अपा खर्च नहीं कह के निवेश का वहां जया कि इसा कई मद है जाके वो ऊपर अपा खर्च करा तो वे अपने आगे बढ़ने में मदद करे है। यानी कि जय की पढ़ाई के ऊपर खर्च है तो जे आपा अपनी खुद की पढ़ाई के ऊपर खर्च करा तो आगे चाल के आपने बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न है जो को देवेगी। इरो मतलब वो है कि जे आपा जो की शिक्षा ग्रहण करी है जो को प्रशिक्षण लियो है जे कि आपा किताबा के ऊपर जो को खर्च करियो है कोचिंग के ऊपर खर्च करा हाँ साथ ही साथ आपा कोई प्रशिक्षण लेने में खर्च करा हाँ तो इस आपा आगे बढ़ने की एक कोशिश करा हाँ पढ़ लिख के आपा बेहतर नौकरी कर पावांगा रोजगार आपा हासिल कर पावांगा और रोजगार के द्वारा आपा अपनी कमाई ने और बढ़ा सकांगा। तो एक टाइम हुए जब आपा ना अपनी पढ़ाई के ऊपर घणो खर्च करना पड़े अपनी ट्यूशन पर अपनी किताबों पर अपनी स्कूल की फीस पर कॉलेज की फीस पर कोचिंग के ऊपर और जितना भी आपने नोट्स बनाने के लिए अपना किताबा चाहिए या फिर आपने आजकल डिजिटल माध्यम है तो जो डिजिटल उपकरण आपने पढ़ने के वास्ते चाहिए आके ऊपर एक बार आपने खर्च करना पड़े है। लेकिन वो एक बार को खर्च करेड़ो आगे कई गुना बढ़ के आपने एक और फल है जो मिलेगो। वे ही जब आप स्वास्थ्य के ऊपर खर्च करा तो यो भी आपनो एक तरह से निवेश है। जब आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर खर्च नहीं करांगा तो एक टाइम के बाद कई प्रकार की बीमारियां हैं जो कि आपने घेर लेवेंगी और अपनी कमाई है जो कि और ज्यादा खर्च होगी साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य को नुकसान होवेगो वो अलग। इस वास्ते स्वास्थ्य के ऊपर जाएगी आप चोखो खाने के ऊपर खर्च करा साथ ही साथ अपनी दवाइयां के ऊपर खर्च करा टाइम सारू आप चिकित्सक के पास जावा जांच करवावा और जो जरूरी उपचार आपने लिए है सुनिश्चित किया गया है वे आप समय पर लेवा तो यो खर्च ना होके एक तरह को निवेश है इन्वेस्टमेंट है आपने आगे आने वाले चौखे भविष्य के लिए। क्योंकि पहलो सुख निरोगी का या आप सब जाना हाँ जब अपनो स्वास्थ्य सही रहेगो उत्तम रहेगो तो ही आप आगे और काम करने की फुर्सत में आवांगा मेहनत कर पाऊंगा और ज्यादा आप है जो को कमा पाऊंगा। तीसरो आप इस चीज ने देखा हाँ कि जे आप अपने हुनर के ऊपर खर्च करा यानी कुछ स्किल सीखने में कुछ कला सीखने का मायने अगर आप खर्चो करा हाँ तो यो भी आपने अपने भविष्य में रिटर्न देने वालों काम है। आप कोई चीज बनानी सीखा जैसे कि आप सिलाई कढ़ाई सीखा या फिर आप कोई और चीज उपकरण बनाना सीखा कुछ और काम सीखा जिसके कमाई ने आप दक्षता हासिल कर लेवा और भी के बाद आप व्यवसाय शुरू करा तो एक बार आप भी के ऊपर खर्चो लगावांगा लेकिन आगे जब आप इन पूरी तरह से अपना लेंगा निपुण हो जावांगा कोई भी काम में दक्ष हो जावांगा तो फिर बिने आप आगे अपने भविष्य के मायने एक कमाई को जरियो बनेगो और आपनो खर्च करेड़ो पीसो कई गुना होके आपने कने लौटेगो। तो इसी चीजें के ऊपर आपने खर्च करना है जो को एक निवेश कहो जावे यानी सही खर्च ही सही निवेश हुआ है। व्यवसाय के ऊपर खर्च करना है कोडिंग सीखने में खर्च करना है तो ये सब है जिसका आपने भविष्य में फायदो देने वाला खर्च है और यो फायदो अपने कई गुना होके मिले तो यो अपने जीवन को एक निवेश है। बहुत सा ऐसा खर्च है बहनो जका खर्च है जका आप करा हाँ लेकिन वह अपने लिए कोई फायदो कौन करे। गलत जका खर्च है जैसे कि आप जरूरत से ज्यादा खर्च करा दिखावे के लिए खरीदारी करा बेवजह कई प्रकार का सब्सक्रिप्शन लेके बैठ जावा तो ऐसे पैसे की बर्बादी है वो खर्च है जो को कोई भी रिटर्न अपन देने वालों को नहीं हुए। तो बेनो बचत का बहुत तरीका ही सही निवेश ही अपने आगे आने वाले भविष्य ने सुनिश्चित करे है। छोटी छोटी बचत अपना के आप एक भविष्य की नई योजना बना सका हाँ और जरूरत पड़ने पर आप भी ने काम में ले सका हाँ। इस वास्ते अपनी जो गाढ़ी कमाई है मेहनत की कमाई है बिने सही जगह निवेश करा सही तरीके से निवेश करा तो ही वो अपनो निवेश है जो को अपनो जो खर्च है वो निवेश कहलाओगो। इस वास्ते आपने अपनी कमाई ने सही जगह के ऊपर लगाना बहुत जरूरी है।

आज के टीम कार्यक्रम को जो बखत है बहनों वो अब पूरा होने में है, तो फेरू मिलन तानी विनोद ने देव सीख राम राम।

0: ग्रामीण महिलाएं अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। इसका प्रसारण आकाशवाणी के चूरू केंद्र से किया गया। श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के 2 बजने वाले हैं। अब से कुछ पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज, और उसके बाद दिन में 2:15 पर आप सुन पाएंगे दोपहर समाचार।
1: Good afternoon. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the midday news. The headlines. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Supreme Court seeks responses from Centre, NTA and CBI in NEET paper leak case, says lessons still not learnt from earlier paper leak cases. Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill. IMD issues yellow alert in Delhi for next 3 days. Heat wave conditions also to persist over Haryana.

0: か。अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
1: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जन सेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि ये खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
2: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का

0: मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाताओं से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान

0: और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। गिनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट UG परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र NTA और CBI से जवाब मांगा। कहा पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी का ये शुरू केंद्र है। शुरू दिन के 2:30 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है आपके अपनी पसंद का कार्यक्रम मेलबॉक्स। कार्यक्रम सुनने वाले तमाम श्रोताओं को कुंज बिहारी का नमस्कार। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं। पहला गीत हमने दिया है, फिल्म का नाम है झुक गया आसमान और इस गीत को सुनने की ख्वाहिशमंद है आप सब। आपने लिखा है जवाहर नगर दुर्ग से RC कांबड़े, करुणा, मीना, अश्वनी और विपुल कांबड़े। ये ईमेल हमें मिला है। हमारे श्रोता हैं हनुमानगढ़ से, लिखते हैं रजाक मोहम्मद, शमीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और इनके परिवार के सदस्य। ये ईमेल शामिल कर रहे हैं गुवाहाटी असम से हरेन पांड्या, नरेन, वीरेन और इनका पूरा परिवार। अगला ईमेल हमने शामिल किया है, हमारे श्रोता हैं वाड़ी खामगांव से अनंता वाढे, रामेश्वर वाढे, शुभम, साक्षी, खुशी और इनका पूरा वाढे परिवार। ये ईमेल हमें मिला है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नहावकर, निर्मला नहावकर, विशाल, मलकापुर से नारायण इंगले, सोपान ताइडे, आशीष मोरेकर और इनका पूरा परिवार। आप सभी श्रोताओं की पसंद को पूरा कर रहे हैं फिल्म झुक गया आसमान के इस गीत के साथ। श्रोताओं आपको पता है हम इस कार्यक्रम में आपके ईमेल शामिल करते हैं दिन में 11 बजे से 1 बजे तक के समय अवधि के दौरान। तमाम श्रोताओं का बहुत बहुत आभार जिन्होंने समय का ध्यान रखते हुए हमें ईमेल भेजे।

श्रोताओं, आप सुन रहे थे मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत फिल्म झुक गया आसमान से। और अगला गीत हमने लिया है गिरफ्तार फिल्म से, और इस प्यारे से गीत को सुनने की ख्वाहिश की है हमारे इन श्रोताओं ने। आप हैं मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला आरती गोरी और ओम कुमार सुरलकर ने हमें ये ईमेल भेजा है। कुछ और नाम हम शामिल करेंगे। खुर्जा यूपी से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा, अंकुश अरोड़ा और इनका पूरा परिवार, ये हमारे श्रोता हमें लिख रहे हैं। गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन। अगला ईमेल हम शामिल कर रहे हैं हमारे श्रोता है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साविर राही, महराज जहां और इनका पूरा परिवार।

श्रोताओं, अगला ईमेल हम ले रहे हैं दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष जोगी और बापू डब्बू का। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत आभार। और ये ईमेल हमें मिल गया है, बहुत सारे ईमेल्स हमारे श्रोता करते रहते हैं और उन श्रोताओं को हम बार बार उनसे अनुरोध भी करते रहते हैं कि आप जब भी हमें ईमेल करें तो एक आपका ईमेल है वो तय समय में पर्याप्त रहता है। कृपया समय का ध्यान रखें। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति यादव, ओजस्वी यादव का भी ईमेल हम शामिल कर रहे हैं। जिला नांदेड़ एताला महाराष्ट्र से शंकरलाल जायसवाल, गणेशताल, शुभम प्रसाद और कुमारी दुर्गेश्वरी जायसवाल का भी ईमेल हमें मिल गया है। आप हैं लोको कॉलोनी लोहारू हरियाणा से बिल्लू सिंह चिंडालिया, लक्ष्मी देवी, सुरेंद्र कुमार, बरखा, निहारिका, योगेंद्र कुमार और इनका पूरा परिवार। और ये ईमेल हमें मिला है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से हमारे श्रोता हमें लिख रहे हैं। और आप हैं बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति वर्मा, प्रहलाद, राजेंद्र वर्मा, सूरज और कुशल वर्मा।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं अपनी पसंद का कार्यक्रम मेलबॉक्स आकाशवाणी के चूरू केंद्र से FM 100.7 MHz पर। मैं हूं आपके साथ कुंज बिहारी। अगला गीत ले लेते हैं, फिल्म का नाम है पड़ोसन। जी हां, पड़ोसन फिल्म का ये गीत सुनने के ख्वाहिशमंद हैं हमारे श्रोता। आप लिख रहे हैं सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और डॉक्टर अमनदीप। कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज और इनके तमाम साथी। नेपानगर एमपी से हमारे श्रोता हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। आप श्रोता हमें लिख रहे हैं दतेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि, नोखेलाल और इनका पूरा परिवार। ये हमारे श्रोता हमें लिख रहे हैं नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दिशा गोस्वामी। आप सभी श्रोताओं की पसंद को पूरा कर रहे हैं। बहुत ही प्यारा और शानदार सा गीत सुना है पड़ोसन फिल्म से।

श्रोताओं, आकाशवाणी चूरू से इस वक्त जारी है कार्यक्रम मेलबॉक्स। और श्रोताओं, जैसा कि आपको पता है, इस कार्यक्रम में हम प्रत्येक सोमवार को दिन में 11 बजे से 1 बजे तक आने वाले ईमेल्स को शामिल करते हैं और श्रोताओं से अनुरोध भी करते हैं कि वो एक बार में एक ईमेल भेजेंगे तो हमें ज्यादा सुविधा रहेगी। तमाम श्रोताओं से हम बार बार अनुरोध करते हैं, फिर भी कुछ श्रोता अपनी इतनी ज्यादा चाहत रखते हैं हमारे साथ कि वो ईमेल पर ईमेल करते रहते हैं। उन श्रोताओं से अनुरोध है कि आप एक ईमेल भेजेंगे तब भी हमारे लिए उतना ही आवश्यक हो जाता है आपके ईमेल को शामिल करना। अगला गीत हम ले रहे हैं हीरा पन्ना फिल्म से और इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब श्रोता। आप लिख रहे हैं चंडीगढ़ सिटी से ही बिमला अनेजा और सतीश अनेजा। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू टॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा का ईमेल भी हम शामिल कर रहे हैं। गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता का ईमेल मिला है। आप श्रोता हमें लिख रहे हैं मालियान सरधना मेरठ से अनिल जैन, संयम जैन, मुस्कान जैन, मास्टर जीव्यम जैन और सरधना मेरठ से आदि जैन, अंश जैन और भव्य जैन। हमारे श्रोता हैं दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, इनका ईमेल भी हमें मिल गया है। आप है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, नंदा बोड़के, हनुमान बोड़के और उत्तम जमदाड़ी। ये ईमेल हम शामिल कर रहे हैं पटेल नगर मालौट से लिखते हैं डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू। आप श्रोता लिख रहे हैं सिद्धार्थ नगर दरियापुर बाबरी से गजानन येले, नवदीप येले, विश्वदीप और सुशील येले। तमाम श्रोताओं की पसंद को हम पूरा कर रहे हैं और आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप समय निकाल कर हमें फोन के साथ साथ हमारे जो ईमेल्स के कार्यक्रम हैं उनमें आप शामिल होते हैं। तमाम श्रोताओं का अभिवादन करते हैं और ये गीत हीरा पन्ना फिल्म से।

श्रोताओं, मेलबॉक्स कार्यक्रम के अंतिम पायदान पर हम पहुंच गए हैं और ये गीत हमने लिया है फिल्म मेरी जंग से। इस गीत को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं आप सब श्रोता। भंवर सिंह मीणा, तन्मय मीणा, हमेरी कला, जिला झुंझुनू से लिखते हैं। महेश जानू बहादुरवास झुंझुनू से, सुखजिंदर बुगालिया छिड़ावा झुंझुनू से, बलजीत कांटीवाल बीदासर झुंझुनू से, नई सड़क चूरू से हमारे श्रोता लिख रहे हैं। राजा नंदवाणी, रजत, रोहित, केशव, मुकुल, मनीष, सुमित, साक्षी और किरण नंदवाणी। आप श्रोता हैं गुदरी बाजार चूरू से। जगदीश मंडल, अभिषेक मंडल, राकेश कुमार लिखते हैं दूधवा मीठा चूरू से। और अरविंद खाड़िया का ये ईमेल हमें मिला है, आप लिख रहे हैं हमें लादड़िया चूरू से। निशांत फुंडे, ओम प्रकाश फुंडे, मानसी, चेतन लिखते हैं गोंदिया महाराष्ट्र से। आप तमाम श्रोताओं की पसंद को पूरा कर रहे हैं मेरी जंग फिल्म के इस गाने के साथ।

अभी श्रोता सुन रहे थे फरमाइशी कार्यक्रम मेलबॉक्स। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के 3 बजे हैं। हमारी आज की ये प्रसारण सभा अब यहीं समाप्त होती है। शाम 5 बजे सायंकालीन सभा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दें।

0: FM 100.7 MHz पर हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में शाम के 5 बजने वाले हैं। अब आज की हमारी सायंकालीन प्रसारण सभा आरंभ होती है। सभा के आरंभ में आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह पद्म अवार्ड 2026 का सीधा प्रसारण कार्यक्रम की।
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चले।
2: नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा टैंक के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
3: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट 1 ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी as we broadcast from the Ganatantra Bhavan at Rashtrapati Bhavan in the august presence of dignitaries and the proud recipients of the prestigious awards and their family members. And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmuji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
2: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप, जहाँ

पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी। ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा, जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतिकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 टू 2009 and he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय Dr. Shrimati N. Rajam भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोश्यारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे, 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश वेयर ही वर्क्स टू इंपार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
2: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर 4 decades एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को चेयरमैन ऑफ इंडो यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
1: कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य, उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीती 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाफ पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
2: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
1: Ramaswamy Palliswamy, चिकित्सा गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी।
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनी स्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
2: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
1: guidelines.
2: श्री
1: पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन, उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
0: पीयूष पांडे, कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती है।
2: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
1: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरण उपरांत।
2: श्री विश्वबंधु वाज़ द फाउंडर ऑफ सुरंगन वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड रिमेन सो ओवर 6 डेकेड्स।
1: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
0: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
2: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबिया तान वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
1: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Badan.
0: Jaisalmer ki Tagaram Bhil Algoza bajate hain, kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
2: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He
1: Sushri
2: got many opportunities.
1: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
0: Kaun nahi janta Harmanpreet Kaur ko, jinhone राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
2: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
1: श्री रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर साहित्य एवं शिक्षा।
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
2: Yes, he has received many awards and honors and after 36 years his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Neelkanth.
1: Shri Kumar Bose Kala Tabla.
0: Kumar Bose Tabla में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
2: Shri Bose's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award along with immense respect within the artistic
1: Janardhan
2: community.
1: Bapu Rao Bothe, Samaj Seva.
0: Mashhoor samajik karyakarta hain Bothe ji, 77 saal ke hain. और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
2: श्री बोधे कंपनी राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा राष्ट्रपति भवन मेजर कुंभ मेलास साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
1: Swami Brahmadev Samaj Seva.
0: Swami Brahmadev 82 साल के हैं आप श्रद्धेय हैं राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
2: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
0: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है। राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए इस संत पद्मश्री से सम्मानित होता है।
1: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी, कला फिल्म अभिनय।
0: प्रोसेनजीत चैटर्जी इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
2: In the digital era, Shri Chatterjee successfully reinvented himself through Hindi streaming projects like Jubilee, Scoop and Khaki.
1: Shrimati Devaki Amma Ji, समाज सेवा।
0: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती हैं। 3000 से ज़्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अल्लपुआ से आती हैं।
2: Shrimati Devaki Amma relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
1: Dr. Ramchand Godbole evam Shrimati Sunita Godbole, Chikitsa.
0: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
1: डॉक्टर सामाजिक
0: कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
2: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Shrimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
1: Shrimati Sunita Godbole.
0: ये भी कितना गौरव का क्षण है, उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ, आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
1: श्री तेची गुबिन, समाज सेवा।
0: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
2: श्री गुबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान। He also led a team of delegations to meet the Vice President to report on the security
1: needs. Dr. H. V. Hande, Chikitsa.
0: 99 साल के हैं आप और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण, जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी के ADC उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
2: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr.
1: Shri
2: B.C. Roy
1: Award. Shri Ghafruddin Mevati Jogi, Kala, Bhapang Vadan.
0: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं, इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं, जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं, और खास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
2: Well, through his sustained artistic practice, Shri Ghafruddin has contributed significantly to the preservation of nearly 20 endangered folk musical instruments and oral narrative traditions. His work has supported academic research including PhD level studies.
1: Meer Hazi Qasim, Kala Dholak.
0: 75 साल के मीर हाजी कासम इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं। आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और खास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
2: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya
1: Puraskar. Shri Raghuveer Khedkar, Kala Theatre.
0: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
2: During the COVID-19 pandemic, when public performances halted and many artists faced hunger and unemployment, Shri Khedkar stood up as a staunch advocate. He led appeals for financial support and leveraged solace and solidarity for folk artists.
1: Shri R. Krishnan Kitna, Marnoprant, Kala Kurumba Tribal Painting, Unki Patni Srimati Sushila Krishnan.
0: आर कृष्ण किटना, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन, उनकी पत्नी, पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
2: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज आल्सो
1: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच, कला म्यूजिकोलॉजी।
0: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और खास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
2: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
1: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार, साहित्य एवं शिक्षा।
0: 66 वर्षीय जगदीश कुमार, आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
2: Well, Professor Mamidala Jagadish Kumar framed and operationalized models under NEP 2020 and the four-year undergraduate program with flexible structure and the academic bank of credits.
1: Shri
2: well.
1: Praveen Kumar, Khel Athletics Divyang.
0: Rabbari is 23-year-old khiladi ki T44 unchi kood mein vishv mein aap number 1 hain और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट हैं प्रवीण कुमार।
2: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रां प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
1: श्री के विजय कुमार, सिविल सेवा।
0: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: As Commissioner of Chennai, श्री के विजय कुमार reformed crime control practices, cracked down on organized gangs and enhanced public safety and reduced road fatalities by 40%. As additional DG law and order, he strengthened public safety
1: strategies. Shri Devba Lal, Dada Lal, Krishi.
0: देवालाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्मे हैं, 79 वर्ष के हैं।
2: श्री रंग देवा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
1: श्री अंके गौड़ा एम, समाज सेवा।
0: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण, संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
2: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 इयर्स यूजिंग हिज एंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पस एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
1: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa, Cardiology.
0: 69 वर्षीय Dr. Mandal, Interventional Cardiologist हैं। आपने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में देश की खूब सेवा की है।
2: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
1: Professor Budh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
0: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar Professor Budh Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
2: While working in the Archaeological Survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 excavations.
1: Shri Nilesh Vinod Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
0: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
2: श्री मांडलेवाला, he has a long term vision that by 2047 no citizen should lose life because of the non availability of organs. For that he has traveled extensively across India.
1: डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र, साहित्य एवं शिक्षा।
0: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
2: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University and Russia's Academy of Sciences.
1: श्रीमती तृप्ति मुखर्जी, कला, कंथा एम्ब्रॉयडरी।
0: कंथा ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है।
2: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल by conferring on her the Bangashri Award.
1: Hari Madhav Mukhopadhyay, Kala Theatre, unke putra Shri Krishnendu Mukhopadhyay.
0: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे। 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया। उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुए कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय।
2: श्री
1: सत्य नारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग।
0: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं। आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से।
2: Under Shri Nawal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition which has
1: Shri
2: been supplied
1: K. Pajanivel, Khel, Silambam.
0: Silambam, 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है। इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजानिवेल।
2: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy, presented by the Honorable President of India in 2023. And he also founded the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
1: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
0: 94 वर्ष के हैं आप धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं। आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आसन पर आकर श्री पंड्या का
2: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
1: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
0: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत, मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है।
2: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtra Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
0: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar kar niche aati hue aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है।
2: His work earned him the विश्व हिंदी सम्मान।
1: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार।
0: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार। गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए, लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए। प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप।
2: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
1: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
0: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है।
2: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर। He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
1: Dr. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa, Gastroenterology.
0: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकट राव एक प्रमुख सर्जरी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
2: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also
1: Shrimati Deepika Reddy, Kala Nritya.
0: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
2: श्रीमती रेड्डी वाज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकादमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकादमी दिल्ली, एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकादमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
1: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
0: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
2: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
1: Shri Haricharan Shaikia Kala Satriya Nitya.
0: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala. Aur हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हील चेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों

0: को क्षत्रिय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हैं।
1: श्री हरिचरण सैकिया परफॉर्म्ड क्षत्रिय डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ऑल्सो ही परफॉर्म्ड द बरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
2: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री,
0: 86 साल के शास्त्री जी,
2: साहित्य एवं शिक्षा
0: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हैं।
1: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री has authored and edited 15 books and more than 50 research papers. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
2: Professor Shafi Shauk, Sahitya evam Shiksha.
0: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं, और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
1: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
2: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
0: Baldev Singh ji ne bahut sare hockey khiladi is rashtra ko diye hain. Ek anubhavi coach hai aur aaj inhe milta hua Padma Shri aur ye taaliyan is baat ka praman ki unka kitna bada contribution raha hai.
1: Shri Baldev Singh ji is widely recognized for developing the Shahbad Markanda Hockey Nursery into one of India's most productive centers for hockey talent.
2: Shri Yumnam Yatra Singh Marnopranth Kala Nat Sankirtan, unke putra Shri Yumnam Bishan Bhor Singh.
0: Aap Manipur ke paramparik Vaishnav nritya aur sangeet ke pratishthit pratibadak the aur बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए युवनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
1: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
2: Dr. Ashok Kumar Singh, विज्ञान एवं इंजीनियरिंग।
0: अशोक जी ने भारत में बासमती चावल की खेती का कायाकल्प करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है, और इस कंट्रीब्यूशन के लिए आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
1: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स, मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
2: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
0: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की, आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया, और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में, और ख़ास तौर पर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएँ, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
1: Shrimati Shiv Shankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the US Library of Congress.
2: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
0: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे, और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
1: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास, ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
2: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kala Azar.
0: Aap Kashi Hindu Vishwavidyalay ke Institute of Medical Sciences mein medicine ke manat professor hain. संक्रामक रोगों खास तौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है.
1: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट. ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM एंड
2: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा समाज सेवा.
0: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है. 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी. 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफ़ेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई.
1: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
2: श्री एन स्वामीनाथन कला भक्ति संगीत.
0: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है.
1: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
2: Dr. Keval Krishna Thakra, Chikitsa Ayurveda.
0: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hain aur Bharat mein Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है.
1: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव्ड टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन. ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो.
2: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी.
0: ज्यादा दिन नहीं हुए 12 मई को ही आपका निधन हो गया था. डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं. पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमन कुमार त्रिवेदी.
1: Dr. Trivedi, since the last 5 years on the principle of Think Global, Act Local, initiated a program to increase the productivity of maize.
2: Shri Arvind Vaidya, Kala Theatre.
0: Varishth kalakar hain aur 6 dashakon se zyada samay se aapne Gujarati rangmanch, Hindi television aur filmon ke kshetra mein kaam kiya hai.
1: Trivedi
0: found... rang ka Jodhpuri suit pehna hua hai.
1: Shri Vaidya founded the Natya Sampada, his own production company, through which he produced, directed and acted in more than 75 full-length plays. Each work carried the quiet weight of dedication, gathering recognition along the way. In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
2: Professor
1: very adaptable.
2: Professor Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
0: Professor Juzar Vasi, IIT बॉम्बे में प्रोफेसर एमेरिटस हैं और आपने माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर और सोलर फोटोवोल्टिक्स के क्षेत्रों में बहुत कार्य किया है.
1: प्रोफेसर वासी थ्रू आउट हिज करियर इन बोथ सेमीकंडक्टर्स एंड सोलर फोटोवोल्टिक्स ही स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेटिव एंड इंक्लूसिव रिसर्च व्हिच ही थॉट वाज नेसेसरी स्पेशली ऑन मेजर नेशनल मिशंस. He has published about 200 papers in leading journals.
2: Dr. Narayan Vyas, पुरातत्व विज्ञान।

0: डॉक्टर नारायण व्यास विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है। खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
1: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
2: 2019. Professor Gambhir Singh Yonzan, Sahitya evam Shiksha.
0: Gambhir Singh ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्री शिक्षाविद पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
1: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a six-year conservation movement that was a huge, huge success.
2: Shri Halley Var, Samaj Seva.
0: अब बारी हैली वार जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम है।
1: Shri Vaur has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Route Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
0: और अब सचिव महोदय आते हुए, चूंकि ये अंतिम सम्मान था आज का और राष्ट्रपति,
2: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद।

0: can see everybody is standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: There is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please pay attention, please. I request all the award winners to move towards your right side. Second part of the ceremony.
1: Akashvani se uska aankhon dekha haal bhi sunna na bhule. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार

ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है एफएम 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में।

अब से थोड़ी देर में यानी शाम 6 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। अंग्रेजी में समाचार होंगे शाम 6:05 पर। ये समाचार आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। शाम 6:10 पर सुनिए देशभक्ति फिल्मी गीत। 6:20 का समय रहेगा आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से रिले संस्कृत में समाचारों का। शाम 6:30 पर आप सुनेंगे हिंदी में प्रादेशिक समाचार। जिले की चिट्ठी का प्रसारण होगा शाम 6:42 पर। 6:48 पर आप सुनेंगे राजस्थानी में प्रादेशिक

रात्रि 9:15 पर सुनिए राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। कार्यक्रम पब्लिक स्पीक श्रोता सुन पाएंगे रात्रि 9:30 पर। यह कार्यक्रम हम दिल्ली केंद्र से प्रसारित करेंगे। रात्रि 10 बजे सुनिए जयपुर केंद्र से रिले कार्यक्रम खेल जगत। दस बजकर 30 मिनट पर आप सुनेंगे सुगम संगीत। सभा के आखिर में 11 बजे होंगे हिंदी में समाचार, अंग्रेजी में समाचार आप सुनेंगे 11:05 पर। ये समाचार आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विवरण में आज की सायंकालीन सभा के शेष रहे कार्यक्रम और उनके प्रसारण समय के बारे में। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं। श्रोताओं शाम के 6 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से पहले हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कार सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉ. एन. राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद घरेलू विकास को सुरक्षित रखने के लिए भारत की नीतिगत प्रतिक्रिया को सावधानी पूर्वक संतुलित किया गया है। सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है। श्री जायसवाल ने कहा कि मंत्रालय खाड़ी क्षेत्र में बड़ी संख्या में मौजूद अपने नाविक समुदायों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को मनोरंजन और हॉस्पिटैलिटी से जुड़े संस्थानों में बाल श्रम और ज्यादा सख्त रोक लगाने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता ने केंद्र सरकार को 18 साल से कम उम्र के बच्चों को ऑर्केस्ट्रा, डांस बार, मसाज पार्लर, स्पा और सैलून में काम करने या परफॉर्म करने पर रोक लगाने के निर्देश दिए जाने की मांग की है। शीर्ष न्यायालय ने इस स्थिति को गंभीर मुद्दा बताते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग को निर्देश दिया कि वह ऐसे संस्थानों में काम करने वाले बच्चों को बचाने और उनके पुनर्वास के लिए

सोनू निगम और हरिहरन की आवाज में श्रोता सुन रहे हैं फिल्म द लीजेंड ऑफ भगत सिंह से ये गीत। गीतकार समीर, संगीतकार ए आर।

0: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः नवदिल्ल्यां राष्ट्रपति भवने पद्म पुरस्कारान् प्रददाति। प्रशासनेन उक्तं यत् सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। सर्वोच्च न्यायालयेन नीट परीक्षा पत्र लीक प्रकरणे केन्द्रस्य एनटीए सीबीआई इत्युभाभ्यां प्रतिक्रिया याचिता। अपि च भारत ऋतु विभागेन आगामिषु त्रिषु दिनेषु दिल्ल्यां उष्णतरङ्गस्य स्थित्यै पीतवर्णीया सञ्चेतना प्रदत्ता अस्ति। अथ वार्ताः विस्तरेण। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः अद्य राष्ट्रपति भवने आयोजिते कार्यक्रमे पद्म पुरस्कारान् प्रदत्तवती। पद्म पुरस्काराः देशस्य सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारेषु अन्यतमाः सन्ति, यस्मिन् पद्मविभूषणः, पद्मभूषणः, पद्मश्रीः च अन्तर्भवन्ति। अद्य 26,000 वर्षे प्रथम नागरिक निवेश समारोहे राष्ट्रपतिना कलाक्षेत्रे अभूतपूर्व योगदानाय मरणोपरान्तं चलचित्र अभिनेतारं धर्मेन्द्र सिंह देओलं, वायलिन वादकं डॉ एन राजम वर्यं च पद्म विभूषण पुरस्कारौ, 6 पद्म भूषण पुरस्काराः, 58 पद्मश्री पुरस्कारैः सह 66 पुरस्काराः प्रदत्ताः। अवशिष्टाः पद्म पुरस्काराः पश्चात् नागरिक निवेश समारोहस्य द्वितीये चरणे प्रदीयन्ते। अस्मिन् वर्षे सर्वकारेण आहत्य 131 पद्म पुरस्काराणां घोषणा कृता अस्ति। सर्वकारः देशे पेट्रोलियम उत्पादानां सुगमतया आपूर्तिं सुनिश्चेतुं प्रयतमानः अस्ति। पश्चिमेशियायाः वर्तमानस्थित्याम् अद्य नवदिल्ल्याम् अन्तर्मन्त्रालयीयसंवादं सम्बोधयन्ति पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसमन्त्रालयस्य संयुक्तसचिवा डॉ. सुजाता शर्मा इत्येषा अवदत् यत् देशे एलपीजी इत्यस्य शोधनागारस्य उत्पादनं प्रतिदिनं 50,000 टन परिमितं यावदस्ति।
1: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले 4 दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले 4 दिनों में लगभग 196,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जायसवालः अवदत् यत् भारतीय दूतावासः, वाणिज्य दूतावासश्च भारतीय प्रवासीनां कल्याणाय निरन्तरं सम्पर्करतौ स्तः। श्रीजायसवालः अवदत् यत् मन्त्रालयः गल्फक्षेत्रे बृहत् संख्यायां स्थितस्य समुद्रीय समुदायस्य सर्वविध साहाय्यं प्रददाति।

मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर, कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और नौतपा शुरू होने के साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ा।

0: समाचारों के साथ मैं जितेंद्र सिंह पूनिया और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज इस साल के पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 हस्तियों को पद्मश्री से नवाजा गया। मशहूर फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। भारतीय वायलिन वादन के दिग्गज उस्ताद डॉ. एन. राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। जिन जानी मानी हस्तियों को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है उनमें प्रदेश के भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती, समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज और अलगोजा वादक तगाराम भील भी शामिल हैं। श्री भील को कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए ये सम्मान दिया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सत्रह अप्रैल 1960 को जैसलमेर जिले के मूल सागर गांव में जन्मे तगाराम भील ने 7 वर्ष की आयु में अपने पिता से अलगोजा वादन सीखना शुरू किया। तगाराम ने उस्ताद अकबर खान के सानिध्य में उच्च स्तरीय प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होंने डेजर्ट फेस्टिवल और जैसलमेर कैमल फेस्टिवल सहित विभिन्न अवसरों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया। तगाराम ने पर्यटन विभाग की ओर से विभिन्न देशों में आयोजित कार्यक्रमों में कला के रंग बिखेरे। उन्हें राजस्थान पर्यटन विभाग सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा नवाजा जा चुका है। सुदर्शन नाहर, आकाशवाणी समाचार, जयपुर।
0: राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई केंद्रीय मंत्री तथा गणमान्य लोग मौजूद रहे। गौरतलब है कि वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कारों को प्रदान करने की मंजूरी दी है, जिनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में सम्मानित किया जाएगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज गंगा दशमी के अवसर पर टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने बीसलपुर बांध पर वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विधिवत जल पूजन किया। इस अवसर पर श्री शर्मा ने कहा कि जल संरक्षण की दिशा में यह महत्वपूर्ण पहल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जल ही जीवन का आधार है। उन्होंने प्रदेश के नागरिकों से सक्रिय भूमिका निभाकर जल संरक्षण अभियान को सफल बनाने की अपील की।
2: जितने भी हमारे तालाब हैं, सरोवर हैं, बांध हैं, एनीकट हैं, उन सभी को संरक्षित करते हुए बारिश के समय में हम उनको कैसे पूरे पानी का उपयोग हम कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी साफ सफाई, उसमें काम, ये सारा पूरे राजस्थान में चलने वाला है। राजस्थान की जनता से भी अपील करना चाहता हूं कि आज गंगा दशहरे के दिन ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है। आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है क्योंकि जल ही जीवन है।
0: मुख्यमंत्री ने ईसरदा बांध का भी हवाई सर्वेक्षण कर जल संरक्षण, जल प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। गौरतलब है कि राम जल सेतु लिंक परियोजना का फीडर चैनल 3 प्रमुख बांधों ईसरदा, गलवा और बंद बारेठा से गुजरता है। अभियान के तहत मुख्यमंत्री ने भरतपुर के बंद बारेठा बांध पर भी जल पूजन किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रदेश में जल संरक्षण, जल संवर्धन और पारंपरिक जल स्रोतों के पुनर्जीवन के प्रति राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। प्रदेश के अन्य जिलों में भी वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने कोटा जिले के सांगोद में, देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने पाली में, विधायक राजेंद्र भांबू ने झुंझुनू में और विधायक शैलेश सिंह ने डीग में इस अभियान की शुरुआत की। हनुमानगढ़ के लखुवाली हेड पर, बारा के मनिहारा तालाब पर, डूंगरपुर में गैप सागर पर, बांसवाड़ा के माही माता मंदिर पर, सिरोही और बालोतरा सहित विभिन्न स्थानों पर भी जल संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस मौके पर जन प्रतिनिधियों ने उपस्थित लोगों को पानी बचाने की शपथ भी दिलाई। गौरतलब है कि अभियान के तहत 5 जून तक प्रदेश भर में जल संरक्षण को लेकर व्यापक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। गांवों में कुओं, बावड़ियों, तालाबों और अन्य जल स्रोतों की साफ सफाई, श्रमदान, जल चौपाल, प्रभात फेरी और पौधारोपण जैसे कार्यक्रम आयोजित होंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो अपनी पत्नी जेनेट डी रूबियो के साथ आज जयपुर पहुंचे। वे सांगानेर एयरपोर्ट से सीधे आमेर महल घूमने गए। महल के जलेब चौक में उनका पारंपरिक राजस्थानी अंदाज में स्वागत किया गया। उनके स्वागत में लोक कलाकारों ने घूमर, कालबेलिया और कच्ची घोड़ी नृत्य पेश किया। इस दौरान उन्हें आमेर के शीश महल, गणेश पोल, दीवाने आम, दीवाने खास, सुख निवास और मावठा झील के बारे में बताया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री करीब आधा घंटे तक आमेर महल में रुके। उनका आज रात जयपुर में रुकने और कल सुबह दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राजस्थान में 10,000 किलोमीटर से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने टिकाऊ और कुशल राजमार्गों के निर्माण के लिए समय पर परियोजना वितरण, कड़े गुणवत्ता मानकों का पालन और उन्नत प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के महत्व पर बल दिया। श्री गडकरी ने परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और गुणवत्ता निगरानी को मजबूत करने की आवश्यकता पर बल दिया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार बुलेटिन में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर रहेंगे। उनका आज रात बीकानेर के नाल हवाई अड्डे पहुंचने का कार्यक्रम है। श्री शाह कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान वे महिला बैरकों का ई उद्घाटन करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री बीएसएफ सेक्टर मुख्यालय में अधिकारियों के साथ सीमा क्षेत्र सुरक्षा और विकास को लेकर बैठक करेंगे। उनका बीएसएफ जवानों से संवाद करने का भी कार्यक्रम है। गृह मंत्री के दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी अब से कुछ देर बाद बीकानेर पहुंचेंगे। इससे पहले मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने बीकानेर पहुंचकर गृह मंत्री के दौरे की तैयारियों का जायजा लिया। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान की ऑन डिमांड परीक्षा प्रणाली के तहत राज्य में परीक्षा केंद्रों का विस्तार किया गया है। संस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर के अनुसार छात्रों की बढ़ती मांग को देखते हुए बूंदी और सीकर में 2 नए ऑन डिमांड एग्जामिनेशन सेंटर शुरू किए गए हैं। संस्थान की ओर से बताया गया है कि इस परीक्षा प्रणाली के माध्यम से विद्यार्थी सुविधा के अनुसार कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा दे सकते हैं। नौतपा शुरू होने के साथ ही आज से प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ गया है। राज्य के अधिकांश हिस्से आज लू और गर्म हवाओं की चपेट में रहे। कुछ जिलों में दिन का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया। वहीं रातें भी काफी गर्म बनी हुई हैं। जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा सहित सरहदी जिलों और पूर्वी जिलों में लू का प्रकोप रहा। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। दोपहर के समय बाजारों और सड़कों पर आवाजाही कम रही। हमारे बाड़मेर संवाददाता ने बताया कि तेज गर्मी के कारण आम लोगों के साथ पशु पक्षी भी बेहाल हैं।
3: जिले में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है। चिलचिलाती धूप के चलते लोग बेहाल हैं। तन झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण सड़कें और बाजार सुनसान हैं। धूप में काम करने वाले लोगों और अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद बीएसएफ के जवानों को भीषण गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है। गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रहे हैं। विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं। इस बीच लू और तापघात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। जसवंत सिंह डूडी, आकाशवाणी समाचार, बाड़मेर।
0: मौसम केंद्र जयपुर की ओर से कहा गया है कि प्रदेश में अगले 4-5 दिन लू और गर्मी के ऐसे ही हालात बने रहेंगे। केंद्र ने कल जैसलमेर और बालोतरा में लू का ऑरेंज अलर्ट जबकि 18 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं कि इस महीने के आखिर में कुछ इलाकों में आंधी के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। इस बीच स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को तेज धूप में नहीं निकलने, ज्यादा से ज्यादा पानी पीने और बच्चों तथा बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखने की सलाह दी है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर के डॉक्टर राकेश नागर ने आकाशवाणी को बताया कि प्रचंड गर्मी के दौरान शरीर में पानी की पूर्ति पर विशेष ध्यान दिया जाए।
4: गर्मी में धूप में कम से कम निकला जाए, जो भी जरूरी काम है सुबह के शाम, सुबह के समय और शाम के समय संपन्न किए जाएं। इस तरह के मौसम में देखेंगे कि आम का पन्ना, कैरी का पन्ना ORS की तरह से डिहाइड्रेशन का काम करता है। इसके अलावा पुदीने का शरबत, धनिया की चटनी जो काम में लिया जाता है, ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस करता है। तो जैसे गुलाब का शरबत है और खस का शरबत है, इसका नियमित रूप से सेवन हम लोग कर सकते हैं जिससे कि डिहाइड्रेशन नहीं हो।
0: रेलवे ने ग्रीष्मावकाश के दौरान यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए भावनगर टर्मिनस और शकूर बस्ती के बीच साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन ने बताया कि ये गाड़ी 29 मई से 27 जून तक साप्ताहिक रूप से चलाई जाएगी। ये रेलगाड़ी आबू रोड, फालना, मारवाड़ जंक्शन, अजमेर, किशनगढ़, फुलेरा, रिंगस, नीमका थाना, नारनौल, रेवाड़ी, गुड़गांव और दिल्ली कैंट सहित विभिन्न स्टेशनों पर करेगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजस्थान की 3 प्रतिभाओं सहित 66 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आज टोंक जिले के बीसलपुर बांध से वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का शुभारंभ किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से 2 दिन के बीकानेर दौरे पर कल सांचू सीमा चौकी पर प्रहरी सम्मेलन में शिरकत करेंगे। और नौतपा शुरू होने के साथ ही प्रदेश में भीषण गर्मी का असर बढ़ा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप ऋतिका गुप्ता से फलौदी जिले की चिट्ठी सुनिए। इसका आलेख प्रतापा राम ने तैयार किया है। फलौदी जिले की चिट्ठी में सबसे पहले बात फिटनेस की। फलौदी जिला पुलिस ने कल संडे ऑन साइकिल अभियान आयोजित किया। इसके तहत पुलिसकर्मी थानों से साइकिलों पर रवाना हुए। उनका काफिला मेजर शैतान सिंह स्टेडियम पर पहुंचा। एएसपी ब्रजराज सिंह चारण ने बताया कि स्टेडियम में योग सत्र रखा गया। पुलिस अधिकारियों और जवानों को विभिन्न तरह के योगासनों का अभ्यास करवाया गया। इस मौके पर सभी से स्वस्थ जीवन शैली अपनाने की अपील की गई। जिले में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान की शुरुआत हुई। इसके तहत पानी बचाने के कामों को जन आंदोलन बनाने की अपील की गई। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने अभियान से पहले तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि 5 जून तक चलने वाले इस अभियान के तहत जल संरक्षण से जुड़े कामों को नियमित रूप से प्रगति पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा। जिले में सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने और यातायात नियमों की पालना सुनिश्चित करवाने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। एसपी सतनाम सिंह ने बताया कि इसके तहत प्रभावी कार्रवाई की गई। 29 वाहनों पर काली फिल्म लगी होने पर चालान किया गया। वहीं वाहन चालकों से हमेशा यातायात नियमों का पालन करने का आह्वान किया गया। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करने और जरूरी कॉल होने पर सुरक्षित जगह रुक कर बात करने की सलाह दी गई। जिले में गैर संचारी रोगों एनसीडी की समय पर पहचान और बेहतर इलाज के लिए नई परियोजना शुरू की गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM की ओर से ये परियोजना शुरू हुई है। CMHO डॉ. प्रताप सिंह राठौड़ ने बताया कि पॉइंट ऑफ केयर ट्रीटमेंट नाम की इस परियोजना में 30 साल से अधिक की आयु के लोगों की 10 तरह की जांचें निशुल्क की जाएंगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए आधुनिक पोर्टेबल उपकरणों का उपयोग किया जाएगा। इस पहल से गैर संचारी रोगों की जल्द पहचान और उपचार में सहायता मिलेगी। जिले में प्री डीएलएड परीक्षा शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। जिला समन्वयक शशांक दवे ने बताया कि इस परीक्षा के लिए जिले में 16 केंद्र बनाए गए थे, जिन पर 8,900 से अधिक पंजीकृत परीक्षार्थी थे। परीक्षा में 84% से अधिक उपस्थिति रही। विभिन्न फ्लाइंग दलों ने भी परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया। फलौदी में पिछले दिनों पुलिस ने नशीले पदार्थ बनाने की फैक्ट्री का पर्दाफाश कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया। इस कार्रवाई में 1 किलो से अधिक MD बरामद की गई। ये कार्रवाई बाप क्षेत्र के मोड़गिया गांव में की गई। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि मौके से बरामद किए गए रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर करीब 30 किलो से अधिक की ड्रग्स बनाई जा सकती थी। उन्होंने बताया कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत सभी थाना अधिकारियों को सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। फलौदी में रोडवेज ने यात्रियों की सुविधा के लिए जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर, बालोतरा और पोकरण मार्ग पर 3 नई बसों का संचालन शुरू किया है। डिपो के मुख्य प्रबंधक चंद्र प्रकाश पालीवाल ने बताया कि क्षेत्र में बढ़ती हुई परिवहन मांग को देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। इससे आसपास के गांवों और प्रमुख शहरों के बीच आवागमन आसान होगा। साथ ही नई बस सेवाओं के शुरू होने से महत्वपूर्ण मार्गों पर कनेक्टिविटी मजबूत होगी। फलौदी रोडवेज बस स्टैंड पर पिछले दिनों जिला प्रशासन की ओर से आपातकालीन मॉक ड्रिल अभ्यास भी किया गया। नागरिक सुरक्षा के लिए हुई इस ड्रिल में एयर स्ट्राइक की सूचना मिलने पर राहत और बचाव कार्यों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की गई। साथ ही विभिन्न विभागों के समन्वय का आकलन किया गया। मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस दल के साथ स्काउट, फायर ब्रिगेड, पुलिस, चिकित्सा और अन्य विभागों की टीमों ने अपने अपने दायित्वों का निर्वहन किया। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने पिछले दिनों राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को परोसे जा रहे भोजन की गुणवत्ता, पोषण स्तर और सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। जिला कलेक्टर ने फलौदी और बाप क्षेत्र का दौरा कर पेयजल आपूर्ति व्यवस्थाओं को भी जांचा। उन्होंने खराब हैंडपंपों और पाइपलाइनों को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही फलौदी जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।
1: नमस्कार, आकाशवाणी जयपुर अजमेर हूँ। पेश है प्रादेशिक समाचार। खास समाचार, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान री 3 प्रतिभावां समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार उन नवाजा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज टोंक जिलारा बीसलपुर बंधाऊं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कीनो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो दो दिन रा बीकानेर दौरा सारू आज पधारण रो कार्यक्रम काल सांचू सीमा चौकी माथे

0: प्रहरी सम्मेलन में शामिल भेला और नौतपा सरू भेवन सागई प्रदेश में गर्मी रो जोर और बढ़ियो। समाचार सागे मैं सुदर्शन नाहर अरब समाचार विगतवार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राजस्थान री तीन प्रतिभावां समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार देर नवाजा। इस साल रा पहला नागरिक अलंकरण समारोह में 2 जना ने पद्म विभूषण, 6 ने पद्म भूषण और 58 हस्तियां ने पद्मश्री मानु नवाजी छा। देवलोक व्या फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल ने कलारा हलका में योगदान सारू पद्म विभूषण नवाजी छा। वायलिन बजावन वाला दिग्गज उस्ताद डॉक्टर एन राजम ने पद्म विभूषण सम्मानित करी छा। पद्मश्री नवाजी जावन वाली हस्तियां में प्रदेश भपंग वादक गफरुद्दीन मेवाती, समाज सेवक स्वामी ब्रह्मदेव महाराज और अलगोजा बजावन वाला तगाराम भीली शामिल है। सत्रह अप्रैल 1960 ने मूल सागर गांव में जन्मिया तगाराम ढंडा चराता था का मारा पिताजी 7 साल री उम्र में अलगोजा बजावन री सीख लेवनो शुरू कीनो। तगाराम उस्ताद अकबर खान आला दर्जा री सिखावन हासिल कीनी। वह डेजर्ट फेस्टिवल और जैसलमेर कैमल फेस्टिवल समेत न्यारा न्यारा मौका माथे कलारो दर्शाव कीनो। तगाराम पर्यटन विभाग री ओर न्यारा न्यारा देशा माए राखी जिया कार्यक्रम माए कलारा रंग बिखेरिया। माने राजस्थान पर्यटन विभाग समेत न्यारी न्यारी संस्थावां कानियों नवाजी जिया। राष्ट्रपति भवन माए राखी जिया जलसा माए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री और मान्योड़ा लोग मौजूद रहा। ध्यान जोग है कि साल 2026 सारू 131 पद्म पुरस्कार दिया जावना है, जमाए 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। मान जलसारा दूजा दौर माए और हस्तियां ने पद्म पुरस्कार नवासी चावेला। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज गंगा दशमी मौके टोंक जिला रा बीसलपुर बंधाऊं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कीनो। मुख्यमंत्री बीसलपुर बंधा माथे रीति रिवाज जल पूजन कीनो। ई मौके वे कहो कि पानी जिंदगी री बुनियाद है और इनने बचावन सारू आ खास पहल है। मुख्यमंत्री जनता हुई ई अभियान माई शामिल भेर पानी बचावन री मुहिम ने सफल बनावन री अपील कीनी।
1: जितने भी हमारे तालाब हैं, सरोवर हैं, बांध हैं, एनीकट हैं, उन सभी को संरक्षित करते हुए बारिश के समय में हम उनको कैसे पूरे पानी का उपयोग हम कर सकते हैं, उसके अलावा उसकी साफ सफाई, उसमें काम, ये सारा पूरे राजस्थान में चलने वाला है। राजस्थान की जनता से भी अपील करना चाहता हूँ कि आज गंगा दशहरे के दिन ये अभियान हमारा प्रारंभ किया है, आप सभी की सहभागिता बहुत आवश्यक है क्योंकि जल ही जीवन है।
0: मुख्यमंत्री ईसरदा बंधारोई हवाई सर्वे कर पानी न बचावन वाणा प्रबंधन और पाणे तू जुड़ी परियोजना रा कामा रो जायजो लीनो। ध्यान जोग है कि रामजल सेतु लिंक परियोजना रो फीडर चैनल 3 खास बंधा ईसरदा गलवा और बंध बरेठा निकला है। मुख्यमंत्री भरतपुर रा बंध बरेठा बंधा माथई जल पूजन कर अभियान री शुरुआत कीनी। ई मौके वे राज्य में पानी बचावन और पारंपरिक जल स्रोता ने और बेहतर बनावन रो राज्य सरकार रो वायदो दोहरायो। प्रदेश रा न्यारा न्यारा जिला में आई वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान रा तहत कई कार्यक्रम राखी चिया। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर कोटा जिला रा सांगोद माए, देवस्थान मंत्री जोरा राम कुमावत पाली माए, विधायक राजेंद्र भांबू झुंझुनू माए और विधायक शैलेश सिंह डीग माए ई अभियान री शुरुआत कीनी। हनुमानगढ़ रा लखुवाली हेड, बारा रा मनिहारा तलाव, डूंगरपुर माए गेप सागर रिपाल, बांसवाड़ा रा माही माता मिंदर, सिरोही और बालोतरा समेत न्यारी न्यारी ठोणा पानी बचावन जुड़िया खास कार्यक्रम राखी चिया। ई मौके जनता ने पानी बचावन री शपथ ही दिराई ची। ध्यान जोग है कई अभियान रा तहत 5 जून ताई आखा राज्य माए पानी बचावन जुड़िया खास कार्यक्रम राख्या जावेला। ਗਾਵਾਂ ਮਾਏ ਕੂੜਾ ਬਾਵੜੀਆਂ ਤਲਾਵਾਂ ਅਰ ਪਾਣੀ ਰਾਤ ਦੂਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਫ਼ਾਈ ਜਲ ਚੌਪਾਲ ਪ੍ਰਭਾਤ ਫੇਰੀ ਅਰ ਪੌਦਾ ਰੋਪਣ ਸਰੀਖਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਲਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕੋ ਰੂਪੀਓ ਵਾਨੀ ਜੋੜਾ ਇਸ ਅੱਗੇ ਅੱਜ ਜੈਪੁਰ ਪਧਾਰਿਆ ਆਮੇਰ ਮਹਿਲ ਰਾਜਲੇਬ ਚੌਕ ਮਾਏ ਵਾਰੋ ਰਾਜਸਥਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਮਾਏ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀ ਚਿਓ ਮਾਰਾ ਸਵਾਗਤ ਮਾਏ ਲੋਕ ਕਲਾਕਾਰ ਘੁਮਰ ਕਾਲਬੇਲੀਆ ਅਰ ਕੱਛੀ ਘੋੜੀ ਰਾ ਨਾਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਨਾ ਮਾਨੇ ਆਮੇਰ ਰਾਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲ ਗਣੇਸ਼ ਪੋਲ ਦੀਵਾਨ ਏ ਆਮ ਦੀਵਾਨ ਏ ਖਾਸ ਸੁਖ ਨਿਵਾਸ ਅਰ ਮਾਵਠਾ ਝੀਲ ਰਬਾਰਾ ਮਾਏ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਰੀ ਚੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕ ਪਰਿਵਹਨ ਅਰ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮਾਏ 10,000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਮਬੱਤਾ ਲੰਬਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਰਾ ਹਾਲਾਤ ਰੋ ਜਾਇਜ਼ੋ ਲੀਨੋ ਵ ਟਿਕਾਊ ਅਰ ਕੁਸ਼ਲ ਹਾਈਵੇ ਬਣਾਵਣ ਸਾਰੂ ਟੇਮ ਸਰ ਪਰਿਯੋਜਨਾ ਬਣਾਵਣ ਕਰੜਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਮਾਨਕਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਅਰ ਉੱਨਤ ਪ੍ਰੌਦਯੋਗਿਕੀ ਰਾ ਏਕਾਰਾ ਮਹੱਤਵ ਮਤ ਹੈ ਜ਼ੋਰ ਦੀਨੋ ਇਹ ਸਮਾਚਾਰ ਆਪ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਜੈਪੁਰ ਅਜਮੇਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੋ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਰੋ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਾ ਦੋ ਦਿਨ ਰਾ ਦੌਰਾ ਸਾਰੂ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨਾਲ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਪੂਗਣ ਰੋ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਕਾਲ ਸਾਚੂ ਸੀਮਾ ਚੌਕੀ ਮਥੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਹਿਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਮਾਏ ਸ਼ਾਮਿਲ ਫੈਲਾ ਇਹ ਦੌਰਾਨ ਵੇ ਮਹਿਲਾ ਬੈਰਕਾਂ ਰੋਏ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰੇਲਾ ਇਹ ਪਾਛੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ BSF ਸੈਕਟਰ ਮੁਖਿਆਲੇ ਮਾਏ ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਸਾਗਰ ਸਰਹੱਦੀ ਹਲਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਅਰ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰਾ ਮਾਏ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰੇਲਾ ਮਾਰੋ BSF ਰਾ ਜਵਾਨਾਂ ਸਾਗੇ ਬਾਤਚੀਤ ਰੋ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਹੈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦੌਰਾ ਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਥਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਜਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ ਇਹ ਅਬੂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਛੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਪੂਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਖ ਸਚਿਵ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਬੀਕਾਨੇਰ ਪੂਗ ਅਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਾ ਦੌਰਾ ਦੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਰੋ ਜਾਇਜ਼ੋ ਲੀਨੋ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਕਤ ਵਿਦਿਆਲਈ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾ ਸੰਸਥਾਨ ਰੀ ਆਨ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾ ਤਹਿਤ ਰਾਜਮਾਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾਈ ਚੀ ਹੈ ਸੰਸਥਾਨ ਰਾ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰਿਆਲਾ ਜੈਪੁਰ ਰਾ ਮੁਜਬ ਬੂੰਦੀ ਅਰ ਸੀਕਰ ਮਾਏ ਦੋ ਨੂਆ ਆਨ ਡਿਮਾਂਡ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲੀ ਚਿਆ ਹੈ ਰਾਜਮਾਏ ਫਿਲਹਾਲ ਜੈਪੁਰ ਕੋਟਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਅਰ ਉਦੈਪੁਰ ਮਾਏ ਆਨ ਡਿਮਾਂਡ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੇਂਦਰ ਹੈ ਰਬ ਮੌਸਮ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾ ਘਣਖਰ ਹਲਕਾ ਮਾਏ ਆਜ ਲੂ ਬਾਜੀ ਨੌ ਤਪਾਰੀ ਸਰਵਾਤ ਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਨੇ ਕੁਛ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਏ ਦਿਨ ਰੀ ਬਗਤ ਪਾਰੋ 45 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਨੇ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਓ ਜੈਸਲਮੇਰ ਬਾੜਮੇਰ ਅਰ ਬਾਲੋਤਰਾ ਸਮੇਤ ਸਰਹੱਦ ਰਾ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਰ ਰੱਜ ਰਾ ਉਗਣੀ ਹਲਕਾ ਮਾਏ ਲੂ ਰੇ ਕਾਰਨ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਰੀ ਬਗਤ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਮਾਏ ਅਰ ਸੜਕਾਂ ਮਾਥੇ ਆਵਾਜਾਹੀ ਕਮ ਰਹੀ ਮਾਣਾ ਬਾੜਮੇਰ ਖਬਰ ਨਵੀਸ ਬਤਾਇਓ ਕਿ ਤੇਜ਼ ਤਾਵੜਾ ਰੇ ਕਾਰਨ ਮਿਨਖਾਂ ਸਾਗੇ ਜਿਨਾਵਰਾਂ ਅਰ ਪਰਿੰਦਾਂ ਨਈ ਘਣੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੈ
2: जिले में प्रचंड गर्मी का दौर जारी है चिलचिलाती धूप के चलते लोग बेहाल हैं तन झुलसाने वाली लू के थपेड़ों के कारण सड़कें और बाजार सुनसान हैं धूप में काम करने वाले लोगों और अंतर्राष्ट्रीय सरहद पर मुस्तैद BSF के जवानों को भीषण गर्मी के कारण भारी परेशानी हो रही है गर्मी से बचाव के लिए लोग ठंडे पेय पदार्थों का सेवन करने समेत कई जतन कर रही हैं विभिन्न सामाजिक संगठनों की ओर से पक्षियों के लिए परिंडे लगाए जा रहे हैं इस बीच लू और तापघात के मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है जसवंत सिंह डूडी आकाशवाणी समाचार बाड़मेर
0: मौसम केंद्र जयपुर के मुजब राज्य में आवता 4-5 दिन लू रा थपेड़ा लागता रहेला काल जैसलमेर और बालोतरा माए लू रो ऑरेंज अलर्ट जारी करी चियो है जबकि 18 जिला सारू येलो अलर्ट जारी करी चियो है मौसम विभाग रे मुजब ई महीना रा आखिर माए कठे कठे आंधी चालन सागे छाटो छिड़को फेवन रा आसार है ई बीच स्वास्थ्य रा जानकार जनताओं तेज तावड़ा माए नी जावन पूरो पानी पीवन अर बच्चा अर बुजुर्गा रो खास ध्यान रखन री राय दीनी है राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर रा डॉक्टर राकेश नागर आकाशवाणी ने बतायो के जोरदार गर्मी रे दौरान शरीर माए पानी री पूर्ति रो खास ध्यान रखनु चाहिए
3: गर्मी में धूप में कम से कम निकला जाए जो भी जरूरी काम है सुबह के समय और शाम के समय संपन्न किए जाएं इस तरह के मौसम में देखेंगे कि आम का पन्ना कैरी का पन्ना ORS की तरह से डिहाइड्रेशन का काम करता है इसके अलावा पुदीने का शरबत धनिया की चटनी जो काम में लिया जाता है ये जो इलेक्ट्रोलाइट है उसको बैलेंस करता है तो जैसे गुलाब का शरबत है और खस का शरबत है इसका नियमित रूप से सेवन हम लोग कर सकते हैं जिससे कि डिहाइड्रेशन नहीं हो
0: रेलवे गर्मी री छुट्टियां माए मुसाफिरा रा सुबिता सारो गुजरात रा भावनगर टर्मिनस और दिल्ली री शकूर बस्ते बीच हर सप्ताह खास गाड़ी चलावन रो फैसलो कीनो है। उत्तर पश्चिम रेलवे रा मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अमित सुदर्शन आ जानकारी दीनी। वे बतायो के आ गाड़ी 29 मई उ 27 जून ताई हर सप्ताह चलाई जावेला। आ रेलगाड़ी अबू रोड फालना मारवाड़ जंक्शन अजमेर किशनगढ़ फुलेरा रिंगस नीम का थाना नारनौल रेवाड़ी गुड़गांव और दिल्ली कैंट वैती जावेला। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना रा तहत ऑनलाइन अर्जी

0: बुजुर्गाना रेल और हवाई जहाज रे जरिए मुफ्त तीर्थ करायो चावेला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आकाशवाणी हर महीना प्रसारित करया जावन वाला खास कार्यक्रम मन की बात माय 31 मई ने विचार बतावेला। हां ई कार्यक्रम री 134वीं कड़ी फैला। ई सारो आप ही मुफ्त नंबर 1800117800 माथे 29 मई ताई राय दे सको हो। आखिर में खास समाचार एकर फेरू सुन ली रहो। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राजस्थान री 3 प्रतिभावां समेत 66 हस्तियां ने पद्म पुरस्कार नवाजा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा आज टोंक जिला रा बीसलपुर बंधाऊं वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान शुरू कीनो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रो 2 दिन रा बीकानेर दौरा सारू आज पधारण रो कार्यक्रम। हर नौतपा सारू वेवणसा गई प्रदेश में गर्मी रो जोर और बढ़ियो। ईसा गई प्रादेशिक समाचार बुलेटिन पूरो फियो। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं इस समय शाम के ठीक 7 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं खेती और

0: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
1: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे? तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चूरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चूरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चूरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
2: कार्यक्रम खेती और गृहस्थी सुनने वाला सगला किसान भाई बहना ने भाई तेजे का निशु
3: और भाई खेता का निशु
2: मोकला मोकला
3: राम
2: राम राम राम खेता भैया राम राम
3: राम राम।
2: तो अबार आन दिना कमाई ने खेती बाड़ी में घर गृहस्थी में के कुछ चाल रही है और के कुछ आगे 5-7 दिन हम करने वाला काम बड़ा जगह होना चीज है।
3: तेजा भाई बैके करे नी लो चाल रही है आंधी चाल रही है
2: हां नोट पो रही है
3: हां और बैके करे जगह बढ़त का दिन है ना वैसा गिड़ाना शुरू हो गया एकदम बनी गए और खेती और आपने जो को तजर्बो तो के ओइशो सो गमचीड 15 दिन और माचा नहीं तो फिर सागीड़ो जमानो है पण आजकल बे कह रहे ने 4-5 दिन चोखो तावड़ो पड़ेर फेर है जो को आफरो जा बादलियो किने आवे 2-4 आंगल छांट कर के रोजो 5-10 दिन की गेर जाए।
2: हां भाई ये है के बुजुर्ग क्या करता ना के भाई अपनी धरती जितनी तपेगी ने बीती आगे में वर्ष धरती की मांग होगी बीती तावड़ो ऊपर तानी आवाज पहुंचेगी के आज जद में वर्ष
3: कहते जे भाई घड़त को है नी
2: हां
3: घड़त को दस्तूरी हो है
2: हां
3: क्या नहीं ले लो चाहिए
2: बिल्कुल
3: लो सोनू मानस क्या नहीं ले लो।

0: जितो ज्यादा तपे को नहीं बीती जोरदार घड़त हो।
1: अब देखो लोग बाग भी यहाँ करने लग जाया के भी आधुनिक साधन हो गया, धरती के साथ छेड़छाड़ ज्यादा होगी है, क्योंकि पहली तो खेता भया आपने जो की गावा की गलियां, गावा का मकान
0: चकड़ा कच्चा
1: भाई, उगाड़ी कच्ची गली कच्ची बाड़, और जे कोई डोली काट तो वहां ले वाली खुडी झूपड़ा भी, पक्को मकान तो कोई वायदे ही हो तो वो ही हो तो चुनने को मोटी दीवार को
0: तपतरा तो आई को नहीं,
1: तपतरा कोई चीज को नहीं। तो आपने प्राकृतिक रूप से जकी ए बाड़ छान छपरा ए आने ए की एक तापमान ने सोच लेता,
0: हां अवशोषित करता था तापमान ने,
1: तो बढ़ते ज्यादा कौन पड़ती, फिर जब जरूरत पड़ती धरती ने मे की तो पूरी धरती एक इन प्रकार की मांग की गैस निकला करती है, अरबा ऊपर ताने पहुंचती भी वातावरण बन तो अरबी बरसात हो तो देखो 20-20-30-30 आंगल हम फिड़ाड़ो में आया कर तो पहली चोट
0: अब तो देखो ही रह गया 20-30 आंगल में
1: जेट लागता है आओ जे दरड़ा पड़ जाता है ऊंट मांगे निकल जाओ यार इतना
0: ताल ताल सुधी खोल हो जाती
1: तो भाई मैं खत्म हो गया। वहां कारण हो रही के बहुत भारी तरीके से आपने वो कह करे ने धरती को ऊपर ढकना काम हो गया, चाहे वह डामर की सड़क आवे चाहे वह आपने गांव गली की सीमेंटेड या कूड़ा निर्माण वगैरह, ऐ के आपने गांव की मूल प्रकृति है ना बी के साथ छेड़छाड़ होगी। साधन तो खैर बन गया भाई, बकाया करे ने के अभी सिक्के का दो ही पहलू हुए हैं, इतर पट रात और दिन सुख दुख के भाई बात धरती जाके
0: सुविधा तो हो गया पण बिल्लो सो दो,
1: हां तो बस जो को कह करे चैन हो ना सुख चैन वो चैन कौन रहे हो सुख तो हो गयो पण चैन कौन मिलियो। अब यू के आपने समस्या सगली होगी के भाई पक्की गलियां पक्की उगाड़ी पक्का सगड़ा मकान तो पानी पहले चोट दस आंगल छाट हो किनन किनन गबीड़ मारे नीची बस्ती के मायने बांधे डबोए, नहीं तो खेता भया 20 आंगल मेघो तो पहले चोट अड़को तो बेरो ही कौन
0: पड़ता
1: क्योंकि सैड सैड धरती पी जाती और कुंड भर जाता
0: घर की बाखड़ू बाहर ने पानी निकल गयो जो छंटा छिटकी 10-15 आंगल
1: और अब दो आंगल को सरड़ को आ जाने जो खाल चाल बीड कर तो अरबा नहीं लागे जाने बड़े 5-7 आंगल तो हो गई दिखे
0: है
1: जबकि विषय बात को नहीं हुआ। अब आपने किए आई बात हो जाए मौसम विभाग की रोर की शहरा के मार सकड़े सड़क पर 5 आंगल छाट होता है
0: कादो,
1: हाँ दूसरे कादो तो हो गयो दूसरे दिन की वो पानी चाले दबा दबे दूसरे दिन अखबार में सगड़ा हुआ चूरू मोही तकड़ी जमा जम है भारी बरखा
0: नीचे की बस्तियां डूबी पानी में
1: बिल्कुल। तो ऐसा की है कि अपनी जो को वातावरण को जो असर होने वो दूसरी दिशा पकड़ी हो, पहले तो हम तो के धरती पानी पीती खुशबू आती
0: बाकी
1: पहले चोटाड़ो में हो तो सौंधी सौंधी खुशबू आती दो तीन दिन तानी बा खत्म होगी क्योंकि बा धरती खुशबू हुई। अब धरती दी ढक गाडा चलिया करता डांगर खेता मु आता बहता आता तो वह तो कच्चे का ही धनिया, अब पक्की चीजा में तो गाड़िया जाए फराटा मारती है
0: तो एक तो खुरे जका
1: खुर बद जाए 12 महीना में 2 साल में खुर काटना
0: कटाऊता
1: आर रोई आंग में जाबो करती पशु
0: क्या
1: घसबो करता वहां कदे खुर को बदता है पशु निरोग रहे तो आज छोमीसो शिव पानी मिलते ने वो पी के और बैठ जाते। तो बात रही अपन करा के भी खेती बाड़ी में रोर आपने काम ही करना है के बोझ डाली आड़ो कर लियो और नहीं कर लियो, कोई खाई दरडो करनो है और करनो है बुरनो है तो वो कर दियो
0: ठीक बात
1: है और खेतां के मायने कोई कीड़ो बागर वगैरह लगाई है तो संभाल बोकरो नहीं तो डंगरिया पड़ागा चटक जाएगा है
0: बिल्कुल।
1: तो एक ऐ काम करने वाला है के छड़ी छिपड़ो है खेत में खड़े कांटो खड़े इन्हें मिन्ने पड़े उडियोड़ो तो बिन डबशी लगा देनो और तरतीब जी तरीके करने के कांटे को जो कोई बीट को छड़ी वालो है ना बिन दाब के रखनो नहीं तो वो एक एक कांटो पूरे खेत में हो जाए दुख पाई हो पहले तो इन साबु रखता के उबाणी खेती कर लो चाहे कांटे को नाम को लाग तो खेत है
0: आओ।
1: और पहले जीता कांटा ही कोनी पहले तो देखो इंगोन कंकेडार तारे झाड़खा बडोड़ा कांटो कांटो मानो खेत में लेकिन बान धरती वो काट लेता
0: ओ बरूंटी कोटे से जब पुगतो हां
1: बरूंट वगैरह सगड़ी अब के है कि आपने खेता बाड़ी में ए तो ही काम करना वाला है आ रहा घर गृहस्थी के मां काम है तो कोई भाई लुगाई पताई कोई पापड़ मंगोड़ी यान की चीज कर लियो आदमी है तो कोई सूत कातनो है मूज बांटनी है मूज काटनी है मूज कूटनी है ए काम कर लियो
0: बेल को भगत माई होए
1: हां
0: और खेत में कोई पाड़ पूड करानी है बागेती बागरा लो
1: हम बागरा लो और खेती बाड़ी का औजार उपकरण है बांध तैयार कर लियो कोई डांडो लगानो है कोई पानो करनो है कोई नयो बनवानो है लेना है तो बे के बाद में काम चालू हो जाए लेना कौन पड़े तो वो भी काम ही है कि भाई पहले अपन तैयार करके रखा
0: यहाँ भी 15-20 दिन में बाइन तो करना ही शुरू हो ही जाएगा
1: अब के एक जुगाड़ और हो गयो पहले देखो 20 साल लोग आगे ना होता को नहीं रिप्यो लाद तो को नहीं तो भाई क्या करता गए भाई घर ही नाको काट लिया सूतिया को जेवड़ो काट लिया सूतिया को जेवड़ो वहां जेवड़ी बना के माचो बन दिया गात लिया कोई सूत गंठन खोल खोल के गंठिया सूत का तो माचा बन तो पीढ़ा बन तो है ना अब के पड़े बड़े ने माचो ही मोल ले श्यार लिया श्या तो ओके है कि आपनी मूल की संस्कृति ने आपने हाथ को जो हुनर होने वो खत्म हो गया अब के हो खेता भैया के बड़े बड़े बाजारा के मायने आपने हाथ का बनेड़ा माचार पीढ़ा चोखा रुपया मिले है दिल्ली दिल्ली बांस के मतलब बांस की ई साड़ी और देशी पगड़ी माची जिक्या नींद माची क्या करता पहले भी बस होता ही नींद आ जाती है आधी की अब जमीन चार अंगली बीच में ऊंची रहती
0: है पढ़ने में कतरों को नहीं
1: पढ़ने में कतरों को नहीं तो बे माची बे नींद माची होती बे ही खत्म होगी अब बंद देख खड़ने लोग बाग इंज का विशेष होटलांग मान जाए और आपने घर आगे मायने माचा ने भी अब नाक ढब लगाओ लगे अब नहीं नया बेड बाड रुपया वाला क्या अब माचा की घर में 20 माचा है कि 15 है कि 10 है कमरा है
0: जैसे भाई माचा पर सोने आदमी डबला गया इतने माचा लग गई का फिर
1: हाँ
0: है
1: वो सच्ची बात है
0: नहीं नहीं पीटी आ गई रे बाप फिर बेड पर सोना रही आई
1: हाँ
0: तो फिर बाप माचा सुहावे क्या
1: बताओ ना और अब एक और होगी के ये उन न्याड़े के मायने बार ने सो के उगाड़ी के मायने और वो देशी आप लोग गुदड़ो बे चीज घट रही अब ऐसी ऐसी रखे कमरिया माई पड़ा रहे हैं
0: भी शरीर की तस्वीर
1: हाँ
0: पूरा पूरा बदलाव आ गया नहीं भी बारे खुल लगे माँ भी गुदड़े को ऊपर ठंडे में सोना गो और जो को शरीर को जो को ताकत या रोग प्रतिरोधक क्षमता जो की विकसित होती बा माँ ऐसी माँ कने सोया थोड़ी हुई
1: बिल्कुल
0: है ना शरीर है जो को भी मौसम के अनुसार आप डलतो
1: हाँ
0: और कई अपनी तो दर को दोहरा धरती है दिन में जो तो कोतावड़ो परेड है तो आधी रात के बाद में तो पग बेड़ा करना रसो वातावरण बन जाए ठंड हो जाए एकदम चौकी बली है और बी टीम में बैके रहनी और ऐसे चला के कामड़ी ओडियो सुनू अब बता
1: कोई तो कल बात
0: कर तो है कोनी
1: भाई आ कही जाए के आपनी जो की सिद्धि मिलन और सोन वाली जी की बात है ने बात दुनिया के बहुत ही कम देशों में उपलब्ध है
0: ठीक बात है
1: हैं के जको तारा की छांग तले सो इन का सोन ता के दिन के जी रात ने आंधी उंदी आ जी झड़की भाई आंधी उंदी नींद को नहीं उठती दिन की आंख
0: कड़ी आंधी तो गुदड़ो ऊपर आ जान तो की
1: आंख नाक सो क्यों रे तुम बरेड़ा लाता और जके आंखें मा रेत रात रे पड़बो करती ने बिंगे को मोतिया बिंदो तो उनको आंखें ऑपरेशन कराना पड़तो है अपना आप साफ हो जाती कटकटा गया डूंगो अब होयो के एक तो अपना सूती गाबा
0: गायब हो गया
1: तो गर्मी प्लास्टिक वाला गाबा
0: कपड़ो लपेट के फिर शिमियो दर्जी इशा तो पैरा आपा
1: हाँ बे खदराड़ा होता तो बे के अपना आप दो दिन नहीं ना होए तो इशी बन जाता वालो तीन चार बार पसीनो आके वो पहले तो कपड़ो बीज तो और बीज के फिर वो करड़पन पकड़ तो और फिर वो माँ के इशी इंतजार कर तो तो बारह ताती लू लागती ने तो बारह तो आती ताती और माँ ने चामड़ी गड़ तो लागत ठंडो है ना ठंडो लागत शरीर ने सुकून मिलतो फिर भी कपड़े सूखे होंगे के आदमी के रेत जाल पड़ जाती और पड़ जाती जब हवा नहीं लगती ना बारे की कपड़े की ठंड महसूस होती जब होती अड़ाई। अब अड़ाई होती जब भी उनके होंगे के आदमी की त्वचा की जगह एलर्जी है खत्म हो जाती है ना, त्वचा की एलर्जी बा खत्म हो जाती है क्योंकि ऊपरी ऊपरी चामड़ी को जो को जहर होने वो अड़ाया नाश्ता टाबर होता जगह अड़ाई बटका भरती है ना, मतलब झनाट लागत हो तो कोई खमी के रगड़ तो कोई माछे के रगड़ तो बाज गए। अब जगह हाथ मगरा में नहीं पहुंचता भी गदगाई होती तकड़ी बलची लागती कभी शांत हो जाए कोई खाज कर दे। तो सुती घाबे को आपने गर्मी के मायने ज्यादा से ज्यादा उपयोग करना चाहिए। आपने देसी खान पान खिचड़ी दलिया राबड़ी खटाली है राबड़ी और राबड़ी जी खटाली है प्याजी और राबड़ी इनकी तो होड़ी को नहीं हुआ वो तो आधुनिक पे है। और जितना ज्यादा आप आधुनिक साधना बनागा कि पहले पंखा शुरू हुआ फिर कूलर चलिया अब कूलर देखो फेल हो गया अब एसी चल गया अब जो को आदमी एसी के वहां रहने बिन कूलर सुहा होगा नहीं
0: मिला गया भी फिर
1: हाँ और कूलर पंखों को नहीं सुहा। तो कोशिश आ करनी चाहिए कि आ सगड़ी चीजा में बचा जो को आ दो तीन साल में आ चीजा में बच जाने बिन गर्मी की छेदना को नहीं हुए
0: प्राकृतिक जो को हाँ। दोस्तानो है नी
1: हाँ।
0: बिंगो देखो मुकाबला तो ना कही है
1: हाँ।
0: तेजा भाई एक और भी है तारा छाई रात तो है पने बाखड़ कौन रही
1: बाखड़ कौन रही
0: है ना गुआड़ी कौन रही ते बाखड़ गुआड़ी की बात करी तो बा बिशी हुई इंटरी रे खड़ंजा जडेड थी रेत कौन रही कोरी
1: रेत कौन रही सही बात
0: है अब घर है जका अपना बंट बंट के बाड़ा हो गया खुली बाखड़ी जकी गमगी नी और बा जितनी सी जगह बची बिना अपना चौक ने पक्को करा लियो क्योंकि रोज को भी ना दौड़ो पड़े कौन बारे
1: रोज की कौन बारी काट है नहीं तो गोबर को लिपेड़ी आंगना भी तो बारे जाता
0: नहीं बारे जाता नहीं है? तो वो वातावरण आप बना लियो जब फिर बारिश होना और बीन तो गयो नहीं तारे मारे पर को जी कर है बैठे बात करा
1: हा?
0: तो फिर बा जगह को नहीं बची जगह नहीं बची जो फिर कोई न कोई पंखा गो के कूलर गो के शी गो की इनकी आसरो तो लेना पड़ेगा
1: बिल्कुल
0: आसरो ली होते जा भाई फिर कह रहे आदत होगी तो फिर वो जो की अपनी बात है नी जो की ज्ञान की
1: हाँ।
0: बात बात ही रह जाए
1: बात ही रह जाए सही बात है ये बात तो घनी चौकी चौकी रमन जीवन में उतरी को
0: धरातल पे उतरे को नहीं
1: हाँ।
0: पर जक्का भाई का सुबित तो है
1: हाँ। जक्का उतार रख के आज भी निरोग है
0: रख निरोग है और जक्का अपने सुननिया गिननिया के भी आप कहा के खेत में बाड़े में घर की बाकड़ में कि बंदोबस्त है भाई ज्यादा तो संकट हो मान लो गलिया में पक्की करने में पानी बोलो चलने चक्कर में मच्छर ज्यादा हो गया
1: हाँ,
0: पहले मच्छर को नहीं होता दो दिन चाल जाए माछर तो काम है जो को बन जाए नहीं फिर वो आदमी जो को वो खुला में सोने की चेष्टा जो को कर सके
1: बिल्कुल।
0: और पहले एक और भी हो तो एक को नहीं गुवाड़ी का पांच चार भाइयों का घर आगे जो मिलान एक जगह हो तो गुआड हो तो आग गए और एक घर का चार माचा पांच माचा यहाँ करके बाखड़ में बीस तीस माचा हो जानता तो मेड़ो सो मंड जान तो फिर जकी लोक जकी साहित्य की जकी बात करा बे टालता ट्रका है रिश्तेदार की बात होती तो पूरे कड़ुम्बे ने मेरे पर जानता हो फलाना रिश्तेदार का वो सुख है फलाना वो दुख है खेती बाड़ी की बात होती जदि तो अब कह तो मैं बा बीजूंगा बीजूंगा
1: अपनी पुरानी संस्कृति ने बड़े बुजुर्ग टावरा ताने भी मारपति पहुंच
0: मारपति
1: छोटे टावरा
0: बिल्कुल बड़े बड़ा बात करता हाँ। टावर सुते सुते सुनता
1: सुते सुते सुनते सुनता नहीं दादी जी जानवा जीती आ चीज
0: हाँ भाई दादो यहाँ के हो ताऊ यहाँ के हो बाबा यहाँ के हो काके यहाँ के हो दिमाग में तो भी मिट जाते नहीं
1: हाँ तो आदान प्रदान की पुरानी नई संस्कृति आके मारपति
0: मारपति आ तो
1: और भी चीज की बाद में नींद आती चौकी नींद ही असली बाई होती जकी ने लोमारे कने लोमारे ने तो भी जागे
0: कने बैठिया बात कर वो खड़ खड़ सो वो
1: बिल्कुल बिल्कुल तो बाता चीता तो कहता भाई आप और भी करांगा अब एक लोक रचना सुन लिया मोहन राम चौधरी की गाड़ी

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक
2: बेहतर जीवन शैली अपनाएं, स्वस्थ जीवन पाएं। आजकल हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज और श्वास की गंभीर बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। इन घातक बीमारियों से अकाल मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर और समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच करवाकर सावधानी अपनाएं। राजकीय चिकित्सालयों एवं स्वास्थ्य केंद्रों में हार्ट अटैक, कैंसर, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर इत्यादि की जांच, उपचार एवं परामर्श की सेवाएं निशुल्क उपलब्ध है। स्वास्थ्य सेवाओं का निरंतर उत्थान आयुष्मान भारत, आयुष्मान राजस्थान, NHM IEC राजस्थान द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो संदेशों पहले आपा जिको लोक भजन सुनियो मोहन राम चौधरी पार्टी रो गाइडो, तो आपा आगली बातड़ी करा के भाई खेती है भी कमा सूचना प्रौद्योगिकी को प्रयोग आपा कई कर रहे हैं, कई करना चाहिए
4: भाई। जमानो बदलो है नी, थे बातड़ी ने शुरू करी जदे अपने परंपरागत स्वरूप की बात करी।
3: हाँ।
4: और कह रहे ने जमाना तो बदला है, बदलता ही रहेगा, आज जो आगे को नहीं रहनू।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: तो जी टेक्नोलॉजी आई, टेक्नोलॉजी के साथ स्वाभाविक है कि हर एक क्षेत्र के मां बदलाव है, खेती में भी बदलाव है।
3: बिल्कुल।
4: अब एक मशीन आना या मान लिया एक ट्रैक्टर आना, पूरो खेती को जो स्वरूप हो ढांचो जो बदल गयो।
3: बिल्कुल।
4: उनटाऊ बलदाऊ खेती करता और फिर आपा बे खेती करता करता अरे जट तानी आपा ट्रैक्टर तानी आया।
3: हाँ।
4: पूरी चीज है जो की बदली जगी है ने। तो स्थितियां हुई के देखता देखता जका हल पीननी जका बैग बैग अपने गायब हो गया। तो जिया सूचना प्रौद्योगिकी आई है बिंगो फायदो हो के जो की सूचना है और तकनीक है जो की घर घर तानी आपने पूग की। मोटे रूप आपा माना के मौसम की बात करी, आज आंधी आवेगी मैं आओगो के है कि तो तापमान रहे हो के रहे हो। हरेक आदमी ने किसान के कहना आज आत गए मां मोबाइल आ गया और मोबाइल में मौसम का जो ऐप है वे आप बतावे के 5 दिन के बाद में मैं आ सके है।
3: बिल्कुल।
4: आंधी आ सके। तो अगर जो को सावचेती को जो को वो मौसम की जानकारियां किसान के ने पूग गई तो पूगते ही हुआ जो को आपकी सावचेती की बात करी देखा है नहीं कि कंटा रहा जगह पे भींट का उपले उपले पास करना खेत में नहीं खिंड जा। तो वो खेत में खिंडाने के लिए पहलू जाबतो करने के लिए वो जागरूक हो गयो और दूसरे को यो के खेत में नहीं गिंडे या आपने के करना चाहिए ईशो सो मौसम रहेगो के रहेगो। तो पूरी डिजिटल कृषि परामर्श हो गयो भाई, टोल फ्री नंबर हो गया कृषि महकमा का और थे हरेक कृषि विशेषज्ञ जो जुड़ सको है।
3: और एक और हो गया ना भाई आपने जहाँ प्रिंट मीडिया हो गयो अखबार वगैरह एज की कई पुस्तिकाएं अंक हो गयो और भी के अलावा टेलीविजन है रेडियो है अंक मार्फत अलग अलग सूचना लागी अन देखो देख। एक किसान है जो को कोई चीज देखी बठे वो आगलन देख के आयो मिल के आयो फिर बन भी चीज
4: आपका प्रयोग कर। बिल्कुल पूरा पूरा हाँ। मतलब आपा भाई सागी चीज जो की आपा कदी छोरी साफरी ने लाड़ने या बहु बीन ने पुकारने रिश्तेदार में गया।
3: बिल्कुल।
4: रिश्तेदार के खेत दिखाने ले गयो खेत का आउडी मिया लग गया चीना थारा तो जोर का है वो बीज किनू ले
3: है।
4: तो अब के बीज माने दियो और ने तो खेत में आपा मतीरिया खा गया तो मतीरिया बहुत जोरदार
3: है
4: मतीरिया में बीज दियो तो फिर की आप बीज भी लिया। तो पहले आदान प्रदान वो जरियो वो
3: बिल्कुल
4: है। अब जो वो दूसरा स्वरूप आ गयो और एक और भी हुई आप भी मान लो के विकसित इतनी होगी संचार के और तकनीक के कारण ड्रोन तनी आप हो क्या
3: हाँ
4: है जो ड्रोन हो जो पूरी फसल की निगरानी करे, कीटनाशकों को छिड़काव करे, खेतों की मैपिंग करे, और आतानी को नहीं नमी और जो पोषक तत्व है नी मंगी तानी जांच है जी ड्रोन पद्धति के मार्फत होने लग गया। बात बताओ थे कोनी के छिड़काव की बात करो तो जगह पून को फटकारो आप ढोल क्या छिड़काव करता पून को जो फटकारो बिने बेन तो वो ड्रोन है जो पूरे एक पत्ती के बराबर बराबर को जो छिड़काव एक नाप के मां करने लग रहे हैं कोनी के।
3: बिल्कुल।
4: और आप भी क्यों बाजार की भी स्थितियां होगी एक जनो जान तो बाजार बूझ गया तो आज के भाव है सरसों आज के भाव है चिणांगो।
3: बिल्कुल।
4: और वो गांव में बताऊं तो फिर है जो तय करता
3: हाँ।
4: आज है जो को बाजार है जो को ई नाम है जिस डिजिटल व्यवस्था है बाजार है को पूरो पूरो भाव कीमत सगले की चीज है बिचौलिया हिसाब है जो एकदम खत्म होगा।
3: बिल्कुल।
4: और दूसरी स्मार्ट सिंचाई प्रणाली आ गई बूंद बूंद सिंचाई की जिसकी बात करा ड्रिप सिंचाई की बात करा ऑटोमेटिक सिंचाई की बात करा पूरी पूरी प्रणाली विकसित होगी।
3: बिल्कुल
4: है ना। तो सूचना और प्रौद्योगिकी का अंतंग अंतंग सगे सगे हो के खेती को जो स्वरूप है वो बहुत एडवांस हो गया।
3: बिल्कुल बिल्कुल।
4: और भी एडवांस स्वरूप के माँ फायदे में कौन रहे हो फायदे में वो रहे हो जिसके किसान या तो खुद पढ़े लिखे हो या बिना टाबर पढ़ा लिखा।
3: बिल्कुल।
4: तो आज एक ग्रंथि मणि यानी कि टाबर ने पढ़ावा तो नौकरी न लगे जो केयर थो वह ग्रंथि दूर करने की जरूरी है कि खेती भी करनी है नी तो पढ़ो लिखो किसान है जो को बहुत उन्नत तरीकों खेती करेगा वो बीज की किस्म ने जानेगो बीज की अनुकूल अपनी जमीन है कोनी है वो आज जानेगो समझेगो कित पानी को के हिसाब होगो दवाई अगर छिड़काव के लिए ले रहे हो तो कौन सी दवाई है बेंग ऊपर बे डब्बे पर या थैली के ऊपर सगड़ा नाम पट के वो सगड़ी चीज जान जाएगो ठगी को शिकार कोनी है कि नहीं है ना। तो बाजार में फिर विपणन की बात करी बी चीज ने समझो सरकार की जिसकी कल्याणकारी योजनाओं है भाई योजनाओं पर एक क्लिक पर बिरो पड़ रही है कि भैया सरकार की राजस्थान सरकार क्या योजना है भारत सरकार क्या योजना है कौन किसान पात्र है कि तो क्या फार्मिंग जमा करे जो कौन करे जमा फार्म में जिसका पूरा डाटा बिरो पड़ रहेगा आप अपना स्टेटस कटे से।
3: बिल्कुल। फिर एक चीज और देखो कहता भैया एक प्रौद्योगिकी आई देश देश विदेश के आ पोली आउ सड़ी अब इन कमाई ने कि मौसम ने नियंत्रित करके बेमौसम की चीजा आप तैयार करें
4: 50 डिग्री तापमान है तो वो माँ है जो 25 डिग्री रहेगा
3: हाँ, 25
4: जीरो डिग्री तापमान है तो भी माँ 25-30 डिग्री हाँ, रहेगा।
3: अब भी कमा करके भी अलग अलग तरीके की करके समझदारी और कई लोग करोड़ों की नौकरी छोड़ के कृषि व्यवसाय में आ रहे हैं और कई करोड़ रुपए कमा रहे हैं और कई लोगों का तो आ कहना है कि अगर समझदारी में खेती की जाए तो आने वाले 15-20 साल में जगह किसान के जमीन रहेगी वो एक प्रकार को बहुत बड़ा उद्योगपति होगा।
4: स्वाभाविक बात है स्वाभाविक बात है।
3: अब आप धीरे धीरे पहले देखता हो 40-50 बीघा 100 बीघा जमीन लेकता दाना होता 70 मन भाई जमाने में है रेज वो करता और करता भाई यहाँ कह देता भी टाइम खर्चो को लागत होगा खुद को एक पशु आहार
4: दाना हो गया पशु
3: वो जीवन को एक सर्वाइव हो
4: निरतुड़ हो गया बहुत
3: है ना कभी पशुओं का काम चल जाए तो और इस तरीको घर पैदा के चीज की होती कह तो जमाने में ढंगू कोई चनो
4: बुहार
3: हो जाए तो वो तो हर के बकरी हो बछड़ी हो तो लागत को नहीं ए पैदा ही अब एक माम देखो बदलाव आयो
4: लागत आई अभी अनुकूल में हाँ, तो बदलना पड़ेगा नहीं
3: हाँ, अब 10 बीघा में 150-200 मन काट लिया कई वहां की खेती होगी कोई सब्जी बा रहे है कोई फल फ्रूट लगा रहे है क्योंकि क्षेत्र में मांग अधिक रहेगी बढ़ती जाएगी घटे को नहीं भाई टेक्सटाइल और अपनी खेती इनकी मांग है इनकी पूर्ति करनी मुश्किल ही रहेगी हमेशा।
4: देखो तेज भाई दो दो स्थिति है मौसम को जो नहीं कभी बहुत आवड़ा पड़े बहुत पाड़ा पड़े बातों बात आई गई हो मैं तो पुणे पानी
3: बिल्कुल
4: पानी जमीन है जमीन एक लिखी को नहीं करे जमीन अगर पानी की उपलब्धता है
3: क्या करें पानी पाच
4: है ने तो फिर खेती ने कोई नावड़ बन सके है ने भलाई वो सरकार के योजना के माध्यम सिंचाई के माध्यम नहर पाइपों आयोडो पानी हो या फिर भलाई आपने भूमिगत जल हो सिंचाई के लायक खेत में देने लायक अपने के पानी है तो खेती आज के टेमो सगलो मोटर रोजगार।
3: बिल्कुल
4: है ने।
3: अच्छा एक चीज और देखी के जक्के रकबे मा ज्यादा उन ज्यादा दरकत है बिम एक तो तल शेर को पानी ऊंचो और अगर वो रकबो बड़ो है कई सौ या कई हजार हेक्टर को है तो बट्ठे तापमान में बड़ो परिवर्तन
4: मेगा सड़का भी कई कई पर आप कहने उतरा तीसरा मैं सही कह मैं जोर को है कई कई काम है निकल ना रखे दिखना मैं सही कोई पीड़ो रह गए
3: बिल्कुल
4: कोनी हुआ है अथ उनके बरसे ही है तो वो कारण क्यों है वो मौसम जो को के करें प्रेशर यू तो मने बटे पेरा जो को बादल जो को आप ये आकर्षित हो
3: बिल्कुल बिल्कुल
4: है ना
3: तो हरी भरी धरती है ने बा सोक्यान चोखी लागे बा बादलान भी चोखी लागे बा सूरजीन भी चोखी लागे और बा चांदने भी चोखी लागे
4: बेबे वैज्ञानिक कारण सगला बिंगे सागे जुड़ार बटे बादल जो को बरसा
3: हां तो बादली उठे जी ओके राज्य क्यों ठीक है या मोटी मोटी छांटा सरकावे तो खेतीबाड़ी और सूचना सगला काम तो अपा चालू राख्या अब चंपा मेथी गायड़ी लोक रचना ही सुन लिया मलरियो मलरियो मगरियो
4: हाँ सुनाओ सुनाओ

0: पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: तो अभी अपन चंपा मिथि और पार्टी की आवाज में आ लोक रचना सुनी। अब खेता भैया बात रही तो भाई है आके व्यवसाय बिजनेस से संबंधित मान लियो और चाहे आपने खेती बाड़ी से संबंधित मान लियो
2: भाई जी लागत हो ये हाँ। भी देखो आ तो मारना पड़ेगा चारों मेरे
1: तो नहीं हाँ आजकल
2: खेती में भी पशुधन में भी प्रयोग तो करना पड़ेगा।
1: आजकल के एक चीज का प्रयास बहुत ज्यादा चल रहे हैं डेयरी व्यवसाय का। कोई भैंस पाल ले कोई गाय पाल ले तो डेयरी उत्पाद है जगह की व्यवसायिक रूप में पूर्ति करने वास्ते व्यवसायिक रूप से आग की स्थापना हो रही है लोग बात करें तो इनका आधुनिक आयाम के
2: भाई एक चीज तो अपन माननी पड़ेगी पशुधन तो अपन सदा में रखता पशुधन में एक बदलाव आया है कि पशु अपने कने घरे 10 गाय होती लगे टगे पांच सात गाय तो हरे घर में ही होती पण बे गाय होती है अपने देसी गाय कोई 2 किलो धार देती है कोई 2.5 किलो ये जाता तो ही को नहीं
1: बिल्कुल
2: मानो नहीं और बने खेत में टोर के ले जाता या टोड़ो गांव में कोई चराना हो तो भी सागे दे गाल देता आप 12 महीने की सर देखे अपने कंडवाली को हिसाब कर देता एक तो वो सिस्टम हो फिर यू के ना के आगे तो कम है भैंस को प्रचलन हो भैंस है जकी 7 किलो 8 किलो 10 किलो तनी दूध देने लग गई
1: बिल्कुल
2: जदे 10 गायेंगे जरूरी को नहीं 2 भैंस ही पूर्ति करने लग गई कोनी के फिर बदलाव आयो के छोटा परिवार है होने लग गया संयुक्त परिवार है 10 गाय अभी मैं 3 दूध काटना रही है 4 जकाले निर्णा रहे सगलो सौदा चाल रहे बढ़िया अब छोटा तो परिवार हो गया दो कह रहे मे दो और मारे दो माए था तो बफर में कोनी के तो बटे फिर किए के एक एक पशु आयो
1: फिर मैं दो और मारा दो भी वहां फिर नाके दो रटे दो
2: हाथ में केतली दो तारी केतली हाथ में बीती हुए पर फिर भी जगह शाना जगह एक पशु तो राखियो पर भी पशु को स्वरूप बदलो वो पशु हो उन्नत नस्ल को है ना वो पहले जगह 4 पशु दूध देता विश्व वो एक पशु दूध देने लगा वो स्वरूप आयो और स्वरूप आने के बाद में हुई के मांग बढ़ गई पशुओं की जाके कमी हुई शहर में और ये और सगड़ा बाद में डोलची आने लग गई जब फिर मांग तोड़ लग गई नहीं भाई आपने देखने में तेजा भाई शो कोई घर को नहीं हो जो को किंगे घरे हो दूध लिया तो
1: बिल्कुल
2: है ना चाय भी या और भी या जोर मार के कोई 5-10 दिन कभी कोई दिनों टलक्यो नहीं तू नके भलाई बैके करे नहीं आ तू दारेर सी बात ही मोल मोल भी कोनी
1: बेटे बकड़ी बकड़ी वे काम कर देती
2: काट देती इशू कोनी हो के जिक्के के घरे दीनो नहीं हो और आज आप अपने गांव में नजर पे सारा नहीं तो आधा घर इशू हो गया जिक्के घरे दीनो कोनी हां है तो वो फिर दूध तो किनन किनन लेगो नहीं तो फिर दूध के लिए फिर बैठ डेरियां खुली गाड़ी आन लाग गई बैठ दूध ले जान लाग गई बाद दूध है जिको थैलिया में पैक होने लागे जगह जगह दुकाना में बिकन लाग गए और गांव में भी है जगह दूध लेन लग गया मोल हो गया शहर में जहाँ दूध लेनता नहीं ब्यांग ब्यांग काम तो डेयरी उद्योग विकसित हो
1: अच्छा पहले और... रबाल में एक खेता भाई फर्क हो गयो पहले तो क्या करता गया दूध धार जे इन में हो गया पाट गयो तो बगान पड़तो अब पाट गयो तो पनीर बन गया
2: भी आई तो इनी के डेयरी सिर्फ दूध तनी कोन रही डेयरी का इतना स्वरूप हो गया डेयरी को गो के मक्खन हो गयो डेयरी की जकी थे पनीर हो गयो डेयरी की जकी आइसक्रीम होगी है ना
1: बिल्कुल
2: तो अच्छा मल्टीपर्पज तो यूज हो गयो के थे सामान्य करांगे थे बात करो नहीं दूध पाड़ना रहा पनीर बनाने के लिए जकी महिला है जकी दक्ष होगी तो वो स्वरूप बदले मांग मांग भी कहानी चारों मेर बड़ी है और जगह जागरूक किसान वह किसान ये चीज ने समझी और लगे टगे जी आप बात करें नहीं कस गए संचार तकनीक के माध्यम में खेती में नवाचारी करें बस आगे की सागी पशु धन का नहीं बढ़िया भी उन्नत नस्ल का 4 पशु थे लागे घरे बांध लिया तो एक फसल ने नाके बैठावे बे
1: बिल्कुल
2: है भी बंगो जो ढंग टंडवाड़ी हो जा तो बा पूरी पूरी है जिकी आमदनी आधार कन है और जे खेती साग गए डेयरी उद्योग के सागे थारी खुद की खेती है तो बंगो अदो खाजो बाजो तो थारे खेतों निकल रहे
1: बिल्कुल निकल रहे और एक और है के जका 10-15 पशु रखे डेयरी का तो मांगो जहाँ गूंत है गोबर है अब गोबरों अब देखो 2-4-5 दिन पहले ही अटैची एक बार एक गौशाला में गया तो बटो सीएनजी बना रहे जबकि गोबर गैस बन रही है ना भी बाद में एक कारखाना भी गैस जोड़ के भी सीएनजी लगा के भरे जा रहे अपने सिलेंडर बटोड़िया है ना और बाद की गाड़िया मांगे ले बस सीएनजी भी बना रहे अच्छा फिर गोबर गैस प्लांट जबकि सैलरी निकले ने सैलरी बीज ने एक मशीन कमा की तो बीज को पानी अलग कर दियो और वो गोबर मटेरियल वो अलग कर दियो वो एकदम यहाँ शक्कर चुपर करो ऊपर करो और बीज को पानी काट लियो वे पानी ले जा रहे किसान 2 रुपया लीटर बी गोबर सलरी वाला पानी और वो कट्टो जो को है उनको वो 5 रुपया किलो के हिसाब से निकल रही है तो देखो एक गोबर गोबर का 3 काम हो गया के एक तो महंगा भाव की सीएनजी गैस बन रही और फिर भी गोबर की सलरी है भी लिक्विड को अलग कर दियो और बिन के आम का आम और गुठली का दाम है तो डेयरी को है ही है बिन अलावा गंदगी को नहीं फैले और बा एक उत्पाद के रूप में सारी चीजें अलग अलग चली जा
2: पशु को है नहीं पशु को जो को अब चलो चलो

0: बदले कुछ है ना। बाकी पशु की तो आज स्थिति के पशु आपकी बेके करने हो लागत ही नहीं जबकि तो कायम दे देता हूँ। अभी आप माना नहीं जो को हाथ जो को जतने चरम उद्योग विकसित हो है ना, जूतियां मनाने ओ आठ तने आप का तांगड़ पटियांगे लिए भी है रस्सी के संगे सगड़ांगे लिए जो को हो तो आदि तो कह गए नहीं दो पशु तो कुएं की लाव मना देता
1: है। बिल्कुल, बिल्कुल।
0: तो वो जो को स्वरूप वो तो सदांग ही हो बिक्र काप का पूरा पूरा काया कटताने के अड्डा खोड़ी तानी भी जातो नहीं पशु तो भी वो आपके धड़े ने किन की तो देगे जानता हो।
1: बिल्कुल
0: है ना। तो वो स्वरूप हो भी स्वरूप के सगे नई तकनीक भी जुड़ी है और नई तकनीक को लाभ अपन ने भी लेना है कि भाई डेयरी उत्पादन युद्ध करने की थे बात करी भाई मक्खन की पनीर की आइसक्रीम की दही की नहीं तो आ स्वरूप हो गयो के एक बराबर उद्योग विकसित हो गयो मशीना थारे घरे ला के आ रहे हो वहां मशीना में थे दूध ले जानिया जरूरी को नहीं दही जमावे घरे लाशी करे बाने जमे जमे दही मिल रही है बाने लाशी मिल रही है बाने घी मिल रही है बाने कह रहे चूंटियों मक्खन मिल मक्खन मिल रही है टाबरा ने जबकि आइसक्रीम मिल रही है कोनी के
1: बिल्कुल
0: फ्लेवर जो को मिल्क को नया नया फ्लेवर में जो को माने जो को दूध दूध मिल रही है तो वो स्वरूप हो भी हो और आ को नहीं वो गांव में को नहीं डिजिटल रो ऑनलाइन तकनीक इतनी विकसित होगी कि अगर भी वो जुड़े डो जो को किसान है पशुपालक भाई है तो वो पूरे पूरे बाजार बिकने चाल गया रहे ऑनलाइन ऑर्डर भी हो रहे है कभी तेजा भाई की जगह जकी पनीर की है जकी नारी क्वालिटी है तो तेजा भाई को पनीर ही लाओ आप तो फिर भी कोई मुकाबला को नहीं। और एक और भी महत्वपूर्ण है कि सरकार भी डेयरी उद्योग में अनुदान देने लगी महिला सशक्तिकरण का नहीं सरकार बड्डी और डेयरी उद्योग का नहीं विकसित हुए तो बठे भी लाभ होने लगे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो खेता भाई बात रही आप और करांगा एक लोक रचना चिम्मी खां और पार्टी आवाज में गायडी है जिकी सुना दें आपा।

0: तो खत्म आया, अब वक्त है वो अठाईतानी है, आप रोटी टुकड़े सारे हुआ और सगड़ा शुकरा
1: राम राम।

अभी श्रोता सुन रहे थे कार्यक्रम खेती और गृहस्थी। ये आकाशवाणी चूरू का प्रसारण है FM 100.7 MHz पर। श्रोताओं, रात्रि के 8 बज चुके हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम।

कार्यक्रम का पहला गीत फिल्म ये दिल आशिकाना से। कुमार सानू, अलका याग्निक की है आवाजें, समीर ने गीत लिखा है और संगीत दिया है नदीम श्रवण ने।

श्रोता अभी सुन रहे थे राज फिल्म में अलका याग्निक को। आइए अब आपको सुनवाते हैं आंदोलन फिल्म का गीत। आवाजें हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की। गीतकार समीर, संगीतकार नदीम श्रवण।

हम तुम्हारे हैं सनम। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने अनुराधा पोडवाल और उदित नारायण की आवाज में सुना। गीत लिखा था समीर ने, संगीतकार थे निखिल विजय। इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के चूरू केंद्र से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गुलदस्ता ओनली ऑन 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। आइए अब आपको सुनवाते हैं कुमार सानू की आवाज में, साथ में है अलका याग्निक के। फिल्म का नाम है अकेले हम अकेले तुम। गीत लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीतकार

मुझसे शादी करोगी। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना, आवाज़ें थी उदित नारायण और अलका याग्निक की, गीतकार थे समीर, संगीतकार अनु मलिक। आइए अब आपको सुनवाते हैं एक बार फिर समीर का लिखा है गीत, संगीतकार हैं संजीव दर्शन, फिल्म का नाम है कर्ज, आवाजें कुमार सानू, अलका याग्निक और उदित नारायण की।

श्रोता कार्यक्रम के आखिर में सुन रहे थे फिल्म लज्जा का ये गीत, आवाज़ें थी अलका याग्निक, सोनू निगम और ऋचा शर्मा की। गीत लिखा था समीर ने, संगीतकार अनु मलिक। इस गीत के साथ कार्यक्रम गुलदस्ता अब यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी चूरू का प्रसारण है FM बैंड के 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी केंद्र दिल्ली से पहले हिंदी में और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी में समाचार।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धेरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
1: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
1: पद्म विभूषण डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
0: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
2: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भिल, रतिलाल मोहनलाल बोरी सागर, स्वामी ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुँच गई है।
3: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
4: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
3: फ्यूल, फर्टिलाइजर एंड फॉरेन एक्सचेंज।
0: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
5: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन एलपीजी का इंक्रीज किया गया है एंड इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
0: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
6: Several key agreements were signed.
7: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से एलपीजी की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
6: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
0: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
8: Against the assessment of
4: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
8: Like metric tons of imports have reached our shores.
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों

और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों की समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग में अक्षय ने येलामन अमान गिल्डी को 4-2 से हराया। वहीं 97 किलोग्राम वर्ग में विक्की ने शेजोत पोयोनोव को 7-5 से हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की संभावना है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढाकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादिका डॉक्टर एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया,

जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे और एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: अंतराल के बाद श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोता सुन रहे हैं राजस्थानी लोक संगीत के कार्यक्रम में लोक कलाकार डूंगराम भाट और साथियों को।

अभी श्रोता सुन रहे थे राजस्थानी लोक संगीत का कार्यक्रम। आज आप सुन रहे थे डूंगर राम भाट और साथियों को। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 9:30 होने वाले हैं। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से रिले कार्यक्रम पब्लिक स्पीक कार्यक्रम की प्रतीक्षा।

0: नमस्कार श्रोताओं, पब्लिक स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका अरोड़ा आपके साथ। आज का ये दौर जहां हर इंसान अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में इतना व्यस्त हो चुका है कि अपनों खासकर अपने माता पिता के साथ बैठकर दो पल बात करने का समय भी मुश्किल से निकल पाता है। नौकरी की मजबूरियां, घर की जिम्मेदारियां और बेहतर भविष्य की तलाश में पलायन, इन सबके बीच सबसे ज्यादा अकेलेपन का सामना करते हैं हमारे बुजुर्ग। वो बुजुर्ग जिन्होंने पूरी जिंदगी अपने परिवार के लिए समर्पित कर दी, लेकिन बदलते समय के साथ उनकी जरूरतों को समझना और उन्हें सही सहारा देना आज समाज की सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनता जा रहा है। 2011 में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या 10 करोड़ थी, जो 2036 तक दोगुना होकर 23 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। तो श्रोताओं, ऐसे में बुजुर्गों की सुरक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और मानसिक सहारे को लेकर नई सोच और नई पहल की जरूरत महसूस की जा रही है। इसी सोच के साथ सरकार ने शुरू किए हैं जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड। आज पब्लिक स्पीक में वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू हुए इन प्रयासों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे। आपका स्वागत है मोनाली जी।
1: धन्यवाद मैम।
0: और श्रोताओं, हमारी स्टूडियो की फोन लाइंस खुली हैं। आप हमारे नंबर 011 जो दिल्ली का कोड है वो डायल करें और उसके बाद ये नंबर डायल कर सकते हैं 2331-0481 या 2371-1711-7, 2371-7106 और 2331-4444। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है 9289904044। और श्रोताओं, आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsAlerts पर #AskAIR के जरिए भी अपने सवाल पोस्ट कर सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और दूरदर्शन की DTH सेवा पर भी उपलब्ध है। तो आगाज करते हैं आज के कार्यक्रम का। मोनाली जी, सबसे पहले ये बताएं कि जीवन ऐप और शतायु डैशबोर्ड क्या है और क्या उद्देश्य है इनका।
1: जीवन ऐप जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क है उसका फुल फॉर्म, और शतायु सीनियर्स होलिस्टिक केयर असिस्टेंस एंड ट्रेनिंग फॉर योर यूटिलिटी। जीवन ऐप, जैसे कि आपको ज्ञात होगा कि 2025 मई में माननीय राष्ट्रपति जी ने सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल को लोकार्पित किया था, उसी की सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमने यह मोबाइल ऐप बनाया जिसका नाम है जीवन जॉइंट एल्डरली एम्पावरमेंट एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क। अभी आपने कहा कि जैसे हमारे वरिष्ठ जनों की पॉपुलेशन 2011 में टोटल जो 8.4% थी, अभी 2036 तक 15% की ओर बढ़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इसके अलावा हमारी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, 1947 में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी सीनियर इंडियन की, वो 30 से 32 सालों के बीच से आज बढ़ के हो गई है 70.3। इसको सबको नजर रखते हुए, जैसे शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, भावनात्मक और सामाजिक जुड़ाव, आपातकालीन सहायता, इन सब चीजों पे विचार करते हुए हमारे मंत्रालय जो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है, इन्होंने जब सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल लॉन्च किया, इसी के सीरीज में यह ऐप एक वन टाइम स्टॉप सॉल्यूशन जो हमारे वरिष्ठ नागरिकों के लिए फायदेमंद होगा, इसी को लॉन्च किया गया है। दूसरा है शतायु। शतायु एक डैशबोर्ड है जहाँ पे ट्रेंड, प्रोफेशनली ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर, अभी तक हमारे मंत्रालय ने जितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स किए हैं, उन सब के बारे में वहाँ पे जानकारी है कि हमारे वरिष्ठ नागरिक अगर किसी को उनकी सेवा चाहिए तो वो वहाँ पे अपना ढूंढ सकते हैं।
0: जेरियाट्रिक केयरगिवर्स की बात की, यानी जो बुजुर्ग देखभाल कर्मियों की जानकारी जो उपलब्ध है, तो इसी से जुड़ा एक हमारे व्हाट्सएप पे सवाल आया और सीनियर सिटीजन्स के बहुत सवाल आए आज मोनाली जी हमारे पास व्हाट्सएप पे। और पहला सवाल ये है कि हाउ कैन आई गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट जेरियाट्रिक केयर प्रोवाइडर्स अवेलेबल इन माई लोकल एरिया, डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस फॉर सर्चिंग द केयर वर्कर्स। ये है नैना का सवाल मुंबई से।
1: जी थैंक यू नैना जी। जेरियाट्रिक केयर गिवर का जो अगर आप डैशबोर्ड खोलेंगे तो उसमें आपके लोकेलिटी पे जो आप रहते हैं वहाँ पे मुंबई में या महाराष्ट्र में, जैसे आपने मुझसे कहा जी, तो वहाँ पे कितने ट्रेंड जेरियाट्रिक केयर गिवर्स हैं

0: के बारे में आपको तहत जानकारी मिलेगी। उसमें एक नंबर होगा जहाँ पे आपको अपना नाम और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, जस्ट टू वेरीफाई कि आप एक जेन्युइन पर्सन है। एक ओटीपी आते ही आपका जेन्युइन चेक करके वहाँ के जितने प्रोफेशनल केयर गिवर्स है वहाँ पे एक मैसेज चला जाएगा उनको कि आप ये सेवा चाहती है। उसके हिसाब से जो भी फ्री होंगे या अभी कहीं काम नहीं कर रहे होंगे वो आपको कॉल बैक करेंगे आपके नंबर पे और फिर आप उनकी सुविधाएं यूज कर।
1: तो ये नंबर्स रजिस्टर्ड होंगे, जैसे अगर हमें ओटीपी आएगा और अगर कोई बुजुर्ग है वो चाहता है कि है, तो ये इसको अगर हम वेरीफाई करने के लिए तो उनके पास कुछ रिकॉर्ड होगा या मेडिकल हिस्ट्री भी ऐसी कुछ भी देनी होगी उस समय?
0: नहीं, एक सीनियर सिटीजन या उसके घर के परिवार वाले अगर फोन करते हैं तो उनको वेरिफिकेशन के लिए उन्हीं के मोबाइल पे ओटीपी आएगा
1: जी,
0: कि हमारे जेरेटिक केयर गिवर का वहाँ पे सिर्फ नाम होगा, वो किस जेंडर का है वो होगा और प्रोफेशनली क्वालिफाइड है ये होगा
1: जी।
0: इसके अलावा वहाँ पे कोई जानकारी नहीं होगी।
1: और एक और सवाल आया है हमारा,
0: इसका पार्ट टू
1: भी, ये डू आई नीड टू पे एनी चार्जेस के लिए, क्या पेड है, भुगतान देना पड़ेगा?
0: जी नहीं, किसी भी नागरिक को इस सेवा के लिए कोई भी भुगतान नहीं देना पड़ेगा, सिर्फ एक ओटीपी से अपना जेन्युइनिटी वेरीफाई करना होगा। इसके साथ मैं ये भी कहना चाहूंगी, जब आप इनकी सर्विसेज लोगे, आपने किसी की सर्विसेज हायर की है उस पे, तो इस हिसाब से आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वहाँ के अवेलेबल चार्जेस पे आपको देना पड़ेगा। पर इसका पुलिस वेरिफिकेशन हो, कैरेक्टर वेरिफिकेशन हो, वो आप ही को करना पड़ेगा। हम सिर्फ प्रोफेशनली ट्रेंड केयर गिवर्स दे रहे हैं
1: जी, हम सब जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं और बाकी की जो प्रोसेस होगा वो अकॉर्डिंगली होगा
0: जी।
1: सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़े हैं दिल्ली से, धर्मवीर जी। हेलो,
2: नमस्कार मैडम, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपको आपको भी मालूम है कि सीनियर सिटीजन जब अपनी एज पे आ जाते हैं तो धीरे धीरे उनकी कान सुनने की क्षमता खत्म हो जाती है
0: जी।
2: वो फोन चलाने लायक नहीं रह जाते और कोई स्मार्टफोन नहीं चलाना जानता हो। कई लोग ऐसे हैं जो मोबाइल ही चलाना नहीं जानते, बुजुर्ग सीनियर सिटीजन है, तो ऐसे लोगों की क्या एक अलग ही प्रॉब्लम होती है? कोई बर्थ दिव्यांग है, किसी के दोनों पैर खराब हैं, वो अपने घर से तो निकल भी नहीं सकते, उनको तो लेटरिन बाथरूम बिठाने के लिए भी।
1: जी जी जी, मतलब आप ये जानना चाह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन से या तकनीक से बहुत परिचित ना और जो ये एक्सेस ना कर सके तो उन्हें किस तरह से सहायता मिलेगी? जी धर्मवीर जी, और संजय सूरी जी का भी हमारे पास इसी से जुड़ा सवाल है व्हाट्सएप पे कि जैसे जो कई बार सीनियर सिटीजन्स हैं जो वो बहुत सेवी नहीं है, जो मतलब टेक्निक्स और जो आजकल की जो नई सेवाएं आ रही हैं वो मोबाइल पे वो नहीं चाहते, तो उनके लिए ये कैसे हेल्प करेगी और कौन हेल्प कर सकता है इसको लेकर?
0: जी, इसमें एक हमारा एल्डर लाइन है 14567, ये नंबर हमारा एल्डर लाइन का है जो हमेशा इस ऐप से जुड़ा हुआ है। कोई भी वरिष्ठ नागरिक 14567 पे डायल करके जो भी सेवाएं हैं वो उसके बारे में तहत जानकारी ले सकते हैं। उसके लिए उस मोबाइल जानकारी होना या मोबाइल पे टेक सेवी होना ज़रूरत नहीं है
1: जी। थैंक यू मोनाली जी, क्योंकि बहुत बड़ा प्रश्न था जो हमारे एल्डरी के लिए। और एक और हमारा व्हाट्सएप पे प्रश्न है, ये है कमल कांत जी का हैदराबाद से कि हाउ कैन सीनियर सिटीजन्स गेट हेल्प इन केस ऑफ इमरजेंसीज, अगर आपातकालीन कई बार होता है और बहुत इमरजेंसी कोई होता नहीं क्योंकि अकेलेपन में रहते अकेले रहते हैं, तो उस समय बुजुर्ग को जो बुजुर्ग है वरिष्ठ नागरिकों को किस तरह से सहायता सुलभ हो सकती है?
0: जी थैंक यू कमल कांत सर आपके क्वेश्चन के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमारे जो जीवन ऐप में भी और सीनियर सिटीजन वेलफेयर पोर्टल पे भी आपको पता होगा राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है 14567, तो यही सुविधा इमरजेंसी में हमारे वरिष्ठ नागरिक यूज़ कर सकते हैं। जब आप जीवन ऐप करते हैं तो इसका हमने 112 और 108 के साथ भी उसी पे एक सुविधा प्रदान की हुई है जिसके माध्यम से आप तीनों नंबर्स पे कहीं भी अपना हेल्प या इमरजेंसी पे आप कॉल कर सकते हैं।
1: और एक बहुत ही विशेष अनुरोध आया है हमारे पास व्हाट्सएप से कि आप प्लीज जो क्वेश्चन का जो आंसर है वो मराठी में चाहते हैं, और उनका प्रश्न ये है, अरुण पवार जी हैं, उनका प्रश्न ये है कि हाउ कैन आई फाइंड नियर बाय वॉक इन सेंटर फॉर सपोर्टिंग एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस फ्रॉम जीवन मोबाइल ऐप। अनुरोध किया है उन्होंने बहुत ही।
0: थैंक यू अरुण पवार जी, मी तुम्हाला मराठीमध्येच उत्तर देईल। आमच्या याच्यात राष्ट्रीय वयोश्री योजनेच्या तहत पुष्कळशे सेंटर्स ऑनलाईन अवेलेबल आहेत।

0: तुम्ही तिथे नाव टाका आणि तुमच्या जागेत तुम्हाला मिळेल. अभी मैं इसको हिंदी में कन्वर्ट करके बोलना चाहूंगी कि राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत हम लोग जैसे कैंप्स लगाते हैं वो ऑनलाइन सेंटर्स के पूरी जानकारी 100 के करीब हमारे दिव्य वयोश्री केंद्र है, वहाँ पे बुजुर्ग जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस की जरूरतें जो होंगी वो आधार कार्ड का देके परिचय पत्र देके ले सकते हैं. तो ये जानकारी ऑलरेडी हमारे जीवन ऐप पे भी अवेलेबल है
1: जी. और सवाल है गोपाल सोनी जी का राजस्थान के सीकर से और संजय सूरी जी का, जो कई उनके जो प्रश्न हैं दोनों के वो समान हैं. उनका कहना है कि ये जानना चाहते हैं कि जो ऐप लॉन्च किए गए हैं उसमें जो वरिष्ठ नागरिकों को किस प्रकार से लाभ मिलेगा.
0: जी संजय सूरी जी और गोपाल सोनी जी, आपके सवालों के लिए तो पहले मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी, क्योंकि जीवन ऐप के बारे में मैं अभी थोड़ा सा विस्तार से आपको जानकारी देना चाहूँगी. जीवन ऐप में वरिष्ठ नागरिकों के लिए आसपास के सीनियर सिटीजन होम, जिसको हम वयो आश्रम बोलते हैं, उसकी पूरी जानकारी जो हमारे मंत्रालय से ग्रांट्स पाते हैं उनकी पूरी जानकारी आपको मिलेगी, ज्योग्राफिकल लोकेशन, नाम पता. दूसरा है एल्डर लाइन, जैसे मैंने कहा 14567, उसका 112 और 108 के साथ. तीसरी है हमारे राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत जितने कैंप्स लगने वाले हैं और जितने वॉक इन सेंटर्स हैं उसके बारे में. चौथी जानकारी आपको मिल सकती है जहाँ पे हमारे बहुत से सीनियर सिटीजन जो है अपने पेंशन योजना के बारे में जानना चाहते हैं कि क्या स्कीम है, कहाँ से लिया जाए, या फिर आयुष्मान भारत कार्ड जो है जहाँ कहाँ से मिल सकता है, क्या क्या सुविधाएं हैं, कहाँ अप्लाई करना हो, इन सब के बारे में इस प्रोग्राम पे हम लोगों ने एक इंटीग्रेशन शुरू किया हुआ है. इसके अलावा हमारे जितने भी समझौता ज्ञापन हुए हैं, MOU हुए हैं, वो आयुष डिपार्टमेंट ऑफ आयुष हो, ब्रह्म कुमारीज हो, वेव विकास हो, या जिस भी संस्थाओं के साथ हमारा काम चल रहा है, हमारे जितने भी स्कीम्स के बारे में जो हमारा ब्यौरा है, हम लोग इंटरजनरेशनल बॉन्डिंग के प्रोग्राम कर रहे हैं, हमारे जो भी नए पहल हैं, इसकी गैलरी है, मैसेजेस है, अनुभव बोलता है जहाँ पे सीनियर सिटीजन्स आके भी बोलते हैं, तो ये सब जानकारी आपको उस जीवन ऐप में भी उपलब्ध होगी.
1: और संजय सूरी जी का एक और दूसरा प्रश्न ये है, क्योंकि जैसे आपने अभी मराठी में जवाब दिया, तो ऐसे कई श्रोता जानना चाहते हैं कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी जो सुविधा दी जा रही है तो उपलब्ध होगी.
0: जी इसका प्रयास चल रहा है और तुरंत ये उपलब्ध हो जाएगी
1: ताकि लोगों को आसानी हो.
0: जी, और जो संजीवनी
1: संजय सूरी जी और सासाराम बिहार से हमारे साथ जुड़े हैं अमित उपाध्याय जी.
2: जी नमस्कार, मैं सासाराम बिहार से बोल रहा हूँ. इसमें मैडम ने अभी बताया बहुत अच्छा कि दूर दराज तक कैसे हम लोग इसको पहुँच बना सकते हैं. मेरा इसमें और ऐड करना था कि क्या जैसे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो दूर दराज तक जो उसमें कुछ ऐसा रेशियो भी है कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सुरक्षित नहीं सकते हैं, तो उन तक हम लोग कैसे पहुंच सकते हैं. तो इसमें ये हो सकता है कि जैसे सेवा केंद्र के माध्यम से या कुछ ऐसा अपॉइंटमेंट हो, जैसे अभी ग्रामीण क्षेत्र में ग्रामीण बैंक की जो सेवाएं हैं वो लगातार पहुंच पर नहीं है, उसके हिसाब से कुछ ऐसा प्रोग्राम करके ताकि वहां तक दूर बैठे लोगों तक भी वो पहुंच सके. जो मैडम ने बताया था बहुत अच्छा अच्छा है. ये भी हो सकता है कि कुछ 10% 20% जो भी थोड़ा बहुत छूट दी जाए तो वहां तक हम लोग पहुंच बना सकते हैं. जी
1: सुझाव दे रहे हैं अमित जी कि दूर दराज क्षेत्रों तक अगर पहुंच बढ़ानी हो तो.
0: जी अमित उपाध्याय जी, सासाराम से थैंक यू आपके प्रश्न के लिए. हमारे बिहाफ पे हमारे स्टेट गवर्नमेंट जितने भी है वो भी हमारे तहत हमारा बहुत सा कार्यक्रम इस पे सुचारू रूप से चलाते हैं. तो यही नहीं है कि केंद्र में ही हम चला रहे हैं, पर आप अपने डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर या सामाजिक न्याय मंत्रालय जो आपके स्टेट के हैं बिहार के जैसे, तो आप वहाँ भी जाके उनसे ये मांग सकते हैं. वहाँ भी वो हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक वेलफेयर ऑफिसर होता है. तो हमारी पहल ऑलरेडी स्टेट्स गवर्नमेंट के साथ पहल शुरू हो चुकी है कि आप तक हम पहुँचे.
1: जी हाँ, तो सिर्फ ये शहरों तक सीमित नहीं है, तो पूरे देश में हर कोने तक इस सुविधा को पहुंचाने का लक्ष्य है सरकार का. मुनाली जी, अगर देखूं जैसे हमने शुरुआत में अकेलेपन की भी बात की, तो जो वरिष्ठ नागरिकों के जो मानसिक स्वास्थ्य के लिए अगर हम बात करें तो ये कितनी उपयोगी हो सकती है.
0: मैं इसमें एक आपको उदाहरण पेश करना चाहूँगी. हमारा जो 14567 है, इस पे बहुत से हमारे सीनियर सिटीजन है.

0: 40 45 मिनट से बोलते हैं क्योंकि अकेले रहते हैं तो उन्हें कोई बोलने वाला चाहिए। तो ऐसे हमारे पास बहुत से एग्जांपल्स हैं जहाँ पे बुजुर्ग हमसे बातें करते रहते हैं। तो इसके साथ साथ अभी हमारे मंत्रालय ने माननीय मंत्री जी ने भी इंटर जनरेशन बॉन्डिंग पे काफी जोर दिया है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, हायर एजुकेशन, स्कूल एजुकेशन के साथ भी हमने ऐसे बहुत से प्रोग्राम साझा करने चाहे हैं, वॉकथॉन्स करते हैं, इंटर जनरेशन बॉन्डिंग के नाम पे बहुत से हमने सीरीज भी शुरू की है। तो हर तरह से प्रयास स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट का रहता है कि हम ये जो सामाजिक इंक्लूसिव सोसाइटी हमारे बुजुर्गों के साथ एकजुट होके चले का प्रयास करते हैं कि वो अकेलापन महसूस ना करें।
1: जी हाँ, तो मतलब इसमें जो है कई समाजसेवी संस्थाएं भी इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकती हैं।
0: जी
1: ठीक है, मतलब ताकि जो ज्यादा लोगों तक अगर हम हो तो पहुंच बना सके। तो अगर मैं एक संक्षेप में जाना चाहूँ, आपने जैसे कुछ कुछ योजनाएं बताई और जैसे आयुष्मान योजना है, तो क्या ये भी हमें उपलब्ध होगी? और जो बेसिक योजनाएं हैं वयोवृद्ध जो हमारे जन हैं उनके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की, तो एक बेसिक जानना चाहती हूँ कि मुख्य तौर पर क्या क्या योजनाएं हैं, आप संक्षेप में बताएं।
0: अभी तो हमने जो जीवन पोर्टल जो लॉन्च किया है उसमें हमने आयुष्मान भारत जो हमारे सीनियर सिटीजन या सीनियर नागरिकों के लिए हैं आभा कार्ड, उसकी उसके लिए हमने प्रयास किया है। ओल्ड एज पेंशन जो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट देता है उसके लिए प्रयास किया है। जीवन प्रमाण जो पोस्टल और बाकी मिनिस्ट्रीज देती है उसका भी इंटीग्रेशन चल रहा है। तो ऐसे बहुत से प्रोग्राम्स हैं जो हमने अपने वरिष्ठ नागरिकों के लिए चलाते हैं भारत सरकार, उसका बैक एंड से इंटीग्रेशन हमने अभी धीरे धीरे शुरू किया हुआ है इस पोर्टल के माध्यम से कि हमारे बुजुर्ग वन स्टॉप सॉल्यूशन या वन प्लेटफॉर्म पे ही उन सबको ये मिल जाए।
1: अच्छा, मतलब एक ही जगह पे, क्योंकि कई योजनाएं हैं, कई जो उसके एप्स भी उपलब्ध हैं, लेकिन एक ही जगह पे सारी योजनाएं उपलब्ध है, तो उससे बहुत सहूलियत होगी जो हमारे वृद्ध जन है। पुणे से जुड़े हैं श्रीपद झाकड़े जी।
2: हेलो
1: हेलो, नमस्कार श्रीपद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में।
2: धन्यवाद, मैं श्रीपाद झाकड़े बोल रहा हूँ पुणे से। तो मेरा सवाल ये है कि मैं दृष्टिहीन हूँ, वृद्धाश्रम में रहते हैं, मतलब हम तो मतलब हम लोगों को किस प्रकार इन सेवाओं का लाभ मिल सकता है? कारण हमारे पास कोई स्मार्टफोन भी नहीं है और कोई हम ऑपरेट नहीं कर सकते, तो हमको कैसे मतलब इसका उपयोग हो सकता है मतलब हम लोगों को?
1: जी हाँ, दृष्टिहीन है और वृद्धाश्रम में रहते हैं, स्मार्टफोन नहीं है, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए क्या उपाय है?
0: श्रीपाद जी, आप पुणे से बोल रहे हैं सीनियर सिटीजन होम से?
1: जी अब डिस्कनेक्ट हो गया है, पर हाँ जी हाँ, उन्होंने बताया वृद्धाश्रम
0: से रहे। तो हमने जो जीवन ऐप लॉन्च किया है इसमें तो हर जानकारी है। इसके अलावा जितने एनजीओ जो सीनियर सिटीजन होम्स को कार्यान्वित कर रहे हैं, जो मेंटेन कर रहे हैं, वो भी इस ऐप को देख के जो जो कार्यक्रम आसपास हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उस पे है। आप अपने मैनेजमेंट स्टाफ को भी पूछ के ये जानकारी वहाँ से ले सकते हैं।
1: जी हाँ, तो बहुत इजी करने की कोशिश की गई है और आप तक पहुंच बढ़ाने की सरकार की कोशिश की गई है। अगर मैं विशेषता जानना चाहूँ इस ऐप की और इस डैशबोर्ड की, तो क्या है जो बुजुर्गों के लिए हो, क्योंकि जो टेक्निकल जो इतने सेवी नहीं है और स्मार्टफोन्स जिनको चलाने इतने खास नहीं आते, तो ऐसे में उनके लिए क्या विशेषता है?
0: पहले बात करते हैं शतायु की। शतायु नाम ही इसलिए हमने दिया है कि आप 100 साल जिए, तो हम आपके शारीरिक या मानसिक स्वास्थ्य या भावनात्मक सामाजिक जुड़ाव के लिए हमने शतायु ऐप नाम उसका किया है, जहाँ पे आपकी सुविधा के लिए जेरियाट्रिक केयर गिवर्स की मदद मिले कि आपको डेली कंपेनियनशिप हो, आपके वेलबीन के लिए हो, योगा हो, इन सब के लिए आपको मदद मिले। आपको कहीं जाने की जरूरत भी नहीं है, ऐप पे जाके आप सीधा आपके आसपास के जितने प्रोफेशनली ट्रेंड है उसके बारे में जानकारी करके उनकी सर्विसेज ले सकते हैं। अब आते हैं हम जीवन ऐप पे, जो दूसरा हमने पोर्टल लॉन्च किया है जीवन, उसके तहत ना ही जैसे मैंने कहा कि सीनियर सिटीजन होम्स, राष्ट्रीय वयोश्री कैंप और बाकी भी है, इसके अलावा बहुत से ऐसे भी हमारे पास कार्यक्रम होते हैं जिसपे आप डायरेक्टली लॉन्च करके आप इसके ऑनलाइन जुड़ के भी आप ले सकते हैं जानकारियाँ।
1: जी जी, तो मतलब आप जानकारी लेना भी आपके लिए आसान है, और सबसे आसान तो ये है कि जो आपने एल्डरली जो हेल्पलाइन नंबर बताया हुआ है, तो 1-4-5-6-7-1-4-5-6-7, इस पर अगर आपको कोई भी शंका, कोई भी दुविधा है, तो आप इस नंबर पर डायल करके अपने सवाल के जवाब पा सकते हैं। मध्य प्रदेश के छतरपुर से जुड़े हैं रशीद अहमद खान जी।

0: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
0: आप सभी लोगों को आगामी पर्व ईद उल जुहा की हार्दिक बधाई शुभकामनाएं।
1: जी धन्यवाद
0: जी। और हाजी मतलब सवाल मेरा ये है कि क्या जितने वरिष्ठ नागरिक लोग रहते हैं या अकेले रहते हैं या किसी परिवार में भी है मान लें, तो क्या उनको कोई वैधानिक समस्या आ रही है, उनके परिवार के लोग उनको इग्नोर कर रहे हैं या मतलब टॉर्चर कर रहे हैं, कुछ कानूनी हेल्प मिलती है उनको?
2: जी रशीद जी आपके सवाल के लिए धन्यवाद। और जैसे मैंने कहा कि 14567 ये जो हेल्पलाइन है इसके तहत आपको ये सब जानकारी और मदद तो मिलेगी। इसके अलावा 112 जो आपका ERSS नंबर है इस पे भी आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, जिस पे आपको बाकी मदद भी वहाँ के वहाँ पहुँचाई जाएगी।
1: जी हाँ, तो दो नंबर्स मैम ने बताए हैं 14567 और जो कनेक्टेड हैं 112 के साथ भी, तो कोई भी आपात स्थिति हो, इमरजेंसी हो, तो आप इन नंबर्स पे डायल करके आप सेवा ले सकते हैं। अगर जैसे वरिष्ठ लोगों को जो इतने अगर नहीं सुन रहे हैं कार्यक्रम या उन तक ये पहुंच नहीं हो पा रही है कि ये जो सुविधा सरकार ने शुरू की है, तो उन तक इस बारे में जागरूकता लाने के लिए, इन सेवाओं के बारे में उन्हें शिक्षित करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?
2: एक तो मुझे आकाशवाणी का थैंक यू बोलना चाहिए कि पब्लिक लाइव हुए हैं तो सब पब्लिक जहां भी है वो सुन रहे हैं, तो एक तो ये पब्लिक डिसेमिनेशन है ही
1: जी
2: प्रेस के तहत, और स्टेट गवर्नमेंट जैसे मैंने कहा कि हमारे बिहाफ पे वो भी बहुत से प्रोग्राम चलाते हैं, तो उनके तहत भी हम ये जीवन ऐप जो है वो भी इसके बारे में वहाँ पे इंफॉर्मेशन देंगे, तो हर वरिष्ठ नागरिक तक पहुँचने की हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं।
1: जी हाँ, जैसे हमने जेरेट्रिक केयर गिवर्स की बात की और जैसे हमें तो खैर उस बारे में जानकारी उपलब्ध होगी, पर अगर हम हर क्षेत्र की बात करें तो वहाँ जब भुगतान करना है तो अगर हम जाएं दूर दराज के क्षेत्रों में और जो भुगतान सेवा है तो उधर भी उपलब्ध होगी, जो ये प्रोवाइडर्स होंगे, केयर गिवर्स जो होंगे, जो स्वास्थ्य देखभाल जो कर्मी होंगे, कि वहाँ पर भी उपलब्ध होंगे ये इतनी दूर दराज के क्षेत्रों में भी?
2: जी, अगर वहाँ पे जैसे दूर से कोई ट्रेंड है उस जगह से, जैसे बिहार से सासाराम से, अगर वहाँ पे कोई प्रोफेशनली ट्रेंड जेरेट्रिक केयर गिवर है तो उसके आसपास के लोकेलिटी में जितने लोग हैं उस डिस्ट्रिक्ट में वो उसकी पूरी जानकारी वहाँ मिल जाएगी।
1: जी दिल्ली से जुड़े हैं राजकुमारी जी।
3: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते।
3: मैं राजकुमारी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ और दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी आयु 82 वर्ष है मैडम
1: जी।
3: आपके मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया जीवन ऐप क्या है और सीनियर सिटीजन्स को इससे क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी मैडम?
1: जी राजकुमारी जी, एक बार आपसे गुजारिश है, फिर से बता दें ऐप के बारे में और क्या इससे लोगों को फायदा होगा।
2: नमस्कार मैम। जीवन जॉइंट एंडली एम्पावर एंड वर्चुअल असिस्टेंट नेटवर्क ऐप है जो एक मोबाइल सॉल्यूशन है। जीवन ऐप में आपको आपके आसपास होने वाले सीनियर सिटीजन होम्स हो, राष्ट्रीय वयोशी कैंप्स हो जो डिस्ट्रीब्यूशन या वॉक इन सेंटर जहाँ पे आप जाके अपने एड्स एंड असिस्टिव डिवाइसेस ले सकते हैं, इसके अलावा एल्डर लाइन जो हेल्पलाइन है और 112 इसके बारे में आप जानकारी, आपको किसी भी चीज़ की अगर कोई ज़रूरत हो तो इस वाले में 112 और 14567 पे डायल करके आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जितने भी सीनियर सिटीजन्स हैं उनकी जो जैसे आभा कार्ड है या वयोश्री पेंशन योजना है या जितने भी सीनियर सिटीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के ऐप्स है उसका इंटीग्रेशन के बारे में जो प्रयास चल रहा है, तो इसकी सब जानकारी जो हमारे वयोश्रेष्ठ नागरिक है उनको मिलने के लिए हमारा मंत्रालय का एक छोटा सा प्रयास है।
1: जी, तो इसमें जैसे अपने स्टेट गवर्नमेंट की भी बात की तो राज्य सरकारों की क्या भूमिका रहेगी?
2: राज्य सरकार की भूमिका ये होती है, जैसे हम बड़े मेजर इस पे काम करते हैं वो माइक्रो लेवल पे काम करते हैं जहाँ पे वो हर व्यक्ति के आसपास के या उस स्टेट्स के रिलेटेड की ज्यादा जानकारी उन्हें होती है। एक माइक्रो लेवल पॉलिसी हम बना लेते हैं पर वो उसको इम्प्लीमेंट करने का काम मोस्टली राज्य सरकारों का होता है, क्योंकि वो एक आम नागरिक से जुड़ते हैं, हम लोग डायरेक्टली नहीं जुड़ पाते, तो हमारा माध्यम होता है थ्रू स्टेट गवर्नमेंट। तो वहाँ पे जितने मेडिकल कैंप्स लगने हैं, ऑपरेशंस कैटरेक्ट के होने हैं या जो ट्रेनिंग करवानी है या डिमेंशिया स्क्रीनिंग हो रही है, तो वो सब जानकारी जो भी कैंप्स करवाने या जो भी IEC मटेरियल की जानकारी होती है वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है।
1: जी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से जुड़े हैं रमा शंकर जी।
4: जी नमस्ते।

0: नमस्कार,
1: आपका सवाल।
0: हाँ जी,
1: मैं ये पूछना चाहता था कि जैसा बहुत लोगों ने प्रश्न किया है कि जो वयोवृद्ध हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं, जो स्मार्टफोन नहीं चलाते हैं, दूर दराज गाँवों में रहते हैं, उनके लिए ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था हो सकती है, यह व्यवस्था क्या की गई है, कृपया बताएं।
0: ऐप के अलावा और क्या व्यवस्था है कि उन तक ये जो फायदे हैं और ये जो योजनाएं हैं, ये प्रयास है पहुंचे।
2: रामाशंकर जी, आपको मोबाइल टेक सेवी होने की ज़रूरत नहीं है। आप 14567 डायल करते ही आपको पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी कि इस ऐप में क्या है, या फिर सीनियर सिटीजन्स के लिए मंत्रालय का क्या दायित्व है और मंत्रालय के क्या क्या प्रोग्राम चल रहे हैं।
0: अगर उन्होंने का स्मार्टफोन भी नहीं है तो क्या करें।
2: 14567 में आपको स्मार्टफोन की भी जरूरत नहीं है, नॉर्मल इससे भी आपका वो टोल फ्री नंबर है, आप डायल कर सकते हैं।
0: जी हाँ, तो अब आपकी जो समस्या था उसका निजात कर दिया मोनाली जी ने, मध्य प्रदेश
2: मंत्रालय ने।
0: जी राजेश नेमा जी।
3: जी
0: राजेश जी, आपका सवाल क्या है?
3: जी मैं सिंहपुर बड़ा से राजेश नेमा बोल रहा हूँ।
0: जी
3: तो मेरा सवाल ये है कि वर्तमान की जो आपाधापी है उसमें घर में जो बुजुर्ग रहते हैं वो परिवार से तालमेल नहीं बैठा पाते, तो इस स्थिति में वह ऐप क्या मदद कर सकता है?
0: जी राजेश जी, अब अक्सर आप देखिए कि सवाल ये है कि आपस में अगर घर में थोड़ा सा मनमुटाव रहता है तो उस स्थिति में ऐप का, हालांकि मैम ने बताया कि नंबर ही है 14567, और इसके अलावा क्या उन तक सहायता हो सकती है? मोनाली जी,
2: राजेश जी, जैसे हमने कहा कि परिवार के अंदर तो हम नहीं जाएंगे, परिवार का आपसी मनमुटाव तो अपना पारिवारिक जीवन ही होता है, पर इसके अलावा अगर एब्यूज हो रहा है, मारपीट हो रही है, उनके साथ कोई दुर्व्यवहार हो रहा है, तो आप 112 और 14567 पे जरूर आप इस पे रेस करिएगा, हम आपके लिए जस्ट वन कॉल अवे हैं।
0: जी तो अगर हम युवा पीढ़ी की बात करूं इसमें, तो युवा पीढ़ी किस तरह से सहायता दे सकती है?
2: जी थैंक यू इस सवाल के लिए। हमारे आदरणीय मंत्री जी भी, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जी, इसके लिए काफी प्रयास करते रहते हैं कि हम इंटर जनरेशनल बॉन्डिंग और युवाओं को कैसे शामिल किया जाए, कि हम बुजुर्गों के प्रति सम्मान बढ़ाए जाए, तो इसके साथ हमने बहुत से ऐसे कुछ कार्यक्रम चलाने की कोशिश की है, जैसे ग्रैंड पेरेंट टीचर मीट स्कूलों में हो जाए, वॉकथॉन्स हो जाए, प्लेज ऑनलाइन प्लेजेस लेने चाहिए, तो इवन जेरेट्रिक केयर गिवर जो है वो युवाओं के लिए ही है, कि आज का युवा कल जाके जो बुजुर्ग हो तो उसके लिए वो अपने घर वालों की कैसे सेवा कर सकता है, तो इससे हम युवाओं को भी जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं।
0: तो अगर मैं भविष्य में देखूं, अगर आपने जैसे योजनाएं बताई, जो स्कीम्स बताई इसमें है, तो और आगे भविष्य में किस तरह की चीजें इसमें एड ऑन करने की आपकी वो है योजना है?
2: जैसे मैंने कहा कि ऑलरेडी वरिष्ठ नागरिकों के प्रति हमारा जो दायित्व है और दो पिलर्स है, एजिंग विद डिग्निटी और एजिंग एट प्लेस, हम ये चाहते हैं कि भाई हमारा बुजुर्ग जो है अपने घर में ही रहे और पूरे सम्मान के साथ अपना जीवन व्यापन करे। तो इसके, जैसे मैंने कहा कि पहले भी हमने बहुत से ऐप्स को जोड़ने की कोशिश की है, हमसे यही रहेगी उम्मीद कि हम और इस पर जोड़ते जाएं।
0: जी धन्यवाद मोनाली जी इस बारे में जानकारी देने के लिए। अगर देखें तो ये जो दोनों चीजें हैं, जीवन ऐप और डैशबोर्ड, ये शतायु डैशबोर्ड है, तो तकनीक और संवेदनशीलता का ये बहुत ही अनोखा संगम है जो बुजुर्गों को स्वास्थ्य सेवाओं, सहायता, देखभाल और सरकारी सुविधाओं से जोड़ने का महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ये पहल हमारे बुजुर्गों के जीवन में उम्मीद, सुरक्षा और सम्मान को नई रोशनी देगी, यही उम्मीद करते हैं। आप स्टूडियो में आई और विस्तार से चर्चा की इस बारे में धन्यवाद, और अपने श्रोताओं का भी धन्यवाद करते हैं जिनके व्हाट्सएप पे हमें प्रश्न मिले और जिनके हमें कॉल्स आए, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह सोमवार को फिर मुलाकात होगी। प्रियंका अरोड़ा को दीजिए अनुमति कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत।
1: ये आकाशवाणी का चूरू केंद्र है FM 100.7 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं रात्रि के 10 बजने वाले हैं। अब आप जयपुर केंद्र से सुनेंगे खेल जगत।

0: खेल जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार। आज के इस अंक में सबसे पहले आप सुनेंगे सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से मोहम्मद सादिक की बातचीत, और इसके बाद हम आपको सुनवाएंगे गोल्फ खिलाड़ी शिक्षा जैन से डॉक्टर गौरव यादव की बातचीत। तो पहले सुनिए सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से मोहम्मद सादिक की बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का अंशदान है।
1: खेल जगत के सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, खेल जगत के इस अंक में आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं वर्तमान में श्रीमती विजय राजे सिंधिया खेल संकुल झालावाड़ में स्थानीय खिलाड़ियों को सॉफ्ट बॉल के गुर सिखाने वाले सॉफ्ट बॉल कोच विशाल चौधरी से। विशाल चौधरी के बारे में आपको बता दें मित्रों कि खेलो इंडिया से लेकर कई बार आप नेशनल सॉफ्ट बॉल प्रतियोगिताओं में भाग ले चुके हैं और झालावाड़ जिले का नाम रोशन कर चुके हैं। साथ ही बेसबॉल में भी आप नेशनल खेले हैं और इसी साल यानी 2026 में भी विशाल ने उज्जैन मध्य प्रदेश में आयोजित वेस्ट जोन सीनियर नेशनल चैंपियनशिप 2026 में पार्टिसिपेट किया और अपने खेल कौशल से सभी को प्रभावित किया है। विशाल नमस्कार, खेल जगत में आपका हार्दिक स्वागत है।
2: नमस्कार सर।
1: विशाल, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि सॉफ्ट बॉल की दुनिया में आपका सफर कैसे शुरू हुआ?
2: सर, मेरा सॉफ्ट बॉल की दुनिया में सफर जब मैं 6th क्लास पढ़ता था तब से शुरू हुआ। जो मेरे सीनियर थे वो इस गेम को बहुत ही आकर्षक रूप से खेल, तो मेरा भी उनको देख के थोड़ा मोटिवेशन बढ़ा और फिर उनके साथ खेलने लगा तो मेरे को अच्छा लगा। एक्चुअली में क्या है, अलग से गेम लगता था, अलग से खेलना, उसे बैट गोल वाला स्लाइगर बड़ा सा बॉल, तो एक अलग सा मजा आता है कि इतने इस बॉल को पकड़ने के बाद बहुत मजे आएंगे।
1: आज के जमाने में क्रिकेट का बोलबाला है
2: जी,
1: और लगभग हर युवक चाहता है कि वो एक अच्छा क्रिकेटर बने, ऑलराउंडर बैट्समैन बने।
2: सर, मेरा भी एक क्रिकेट का एक्चुअली में था, हम भी क्रिकेट बहुत खेलते थे, बट जिस तरीके से अपॉर्चुनिटी देखते हैं लोगों को, देखते हैं क्रिकेट में डिमोटिवेट होते हुए, कुछ ही लोग सक्सेस हो पाए, बट मेरे को अलग से अच्छी फीलिंग आई उसको खेलने के बाद कि नहीं, फिर मेरे को लगा कि नहीं ये भी अच्छा है, तो फिर जब से हम इससे जुड़े हुए हैं। सर,
1: किसी भी युवा को, किसी भी खिलाड़ी को अपने करियर में आगे बढ़ाने के लिए उसके परिवार की, उसके दोस्तों के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है।
2: जी जी जी।
1: तो आपको ये सपोर्ट कैसा मिला?
2: एक्चुअली मेरे पापा को भी शुरू से यही शौक था, हमारे गांव में वॉलीबॉल फुटबॉल जो गेम चलता, मेरे पिताजी भी इसे गेम से जुड़े, पापा को एक्चुअली उनको पता था कि गेम खेलेगा ना कोई ना कुछ करेगा, और मेरे दोस्त भी मेरे साथ जितने भी साथी रहे मेरे वो भी इसी गेम से जुड़े हुए थे, तो मेरे को अच्छा लगता था। सर,
1: पहली बार सॉफ्ट बॉल मैच आपने कहां और कैसे खेला और किस प्रकार से आगे बढ़ते हुए आप नेशनल तक पहुंचे और आज सॉफ्ट बॉल के सफल प्रशिक्षक हैं, इस दौरान आपकी क्या क्या उपलब्धियां रही, क्या क्या अचीवमेंट आपने हासिल किए?
2: सर, मैं पहली बार 2013 में डिस्ट्रिक्ट प्रतियोगिता आयोजित करवाई थी, तो उसमें मैं हमारी टीम ने पार्टिसिपेंट किया था, हमने तो वहां पर हमारी टीम विनर रही थी। उसके बाद मेरा स्टेट में चयन हुआ था, तो मैं पहली बार बीकानेर खेलने गया था, जब वहां गया तो सभी जिलों की टीमें आई और वहाँ पे इतना अच्छा प्रदर्शन, कुछ हमारे यहाँ स्लो पिच थे, वहाँ देखा गया तो कि बॉल स्विंग हो रही है, इधर जा रही है, और अलग सा लेवल देखने को मिला, तो दौड़ी कुछी भी हुई, तो पहला मेरा टूर्नामेंट था। उसके बाद फिर मैं सब जूनियर नेशनल खेला जो झालावाड़ में एमेच्योर द्वारा आयोजित हुआ था, तो उसमें भी झालावाड़ विनर हुआ था। फिर उसके बाद आगे जैसे मैं गया तो 2019 में मैंने नागपुर सीनियर नेशनल पहली बार पार्टिसिपेट किया, जब मेरी एज लगभग सर 19 वर्ष थी, उस टाइम मैंने 9th सीनियर खेला। फिर मैंने उस ऑल इंडिया जो यूनिवर्सिटी गेम चले थे, तो मेरे बीए में एडमिशन हुआ झालावाड़ कॉलेज में, तो पहली बार किशनगंज कॉलेज द्वारा एक आयोजित हुआ था सॉफ्ट बॉल अंतर महाविद्यालय प्रतियोगिता है, राजकीय महाविद्यालय झालावाड़ से हमने भाग लिया, उसमें हमारी टीम विनर रही, फिर यहाँ से सिलेक्शन हुआ हमारा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के लिए। तो पहली बार एक दफा ऐसा हुआ था कि कोटा यूनिवर्सिटी की टीम पहली बार टॉप 8 में गई थी, इसमें झालावाड़ के 5 खिलाड़ी खेल रहे थे और मैं उसमें पिचर की भूमिका मैंने निभाई थी। तो सर, मेरे को बहुत उसी से थोड़ा मोटिवेशन मिला, जब हमारा केरला से मैच था तो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब फिर उसके बाद हमारा 2020-22 में जो पाली में वेस्ट जोन टूर्नामेंट हुआ उसमें हमारे विनर हुए हम
1: जी।
2: उसके बाद फिर सर 23 में फिर विनर हुआ, और फिर अभी जो 2026 में वेस्ट जोन उज्जैन में आयोजित हुआ था, तो उसमें राजस्थान की 4th प्लेस लगी सर। फिर सर जैसे बढ़ता था तो थोड़ा इंटरेस्ट भी बढ़ता गया, तो मजे भी आ रहे हैं सर अब।
1: जी जी जी, देखिए बहुत अच्छे अचीवमेंट आपके हाथ लगे हैं।

0: और इतनी उम्मीद किसी से नहीं की जाती कि इतनी बार कोई नेशनल खेल ले। आपने कई बार ये उपलब्धि हासिल की है। अच्छा विशाल, सॉफ्टबॉल के अलावा आप और कौन सा खेल खेलना पसंद करते हैं?
1: सर सॉफ्टबॉल के अलावा पहले तो क्रिकेट में इंटरेस्ट था, पर एक्चुअली में सॉफ्टबॉल का एक मिला जुला गेम है बेसबॉल।
0: जी जी जी।
1: तो उसको लोग बोलते हैं, इसे पहले बोला जाता था कि मर्दों का गेम है, मर्दों का गेम है। पहले एक्चुअली में क्या है, बेस सॉफ्टबॉल को लड़कियां खेलती थी और बेसबॉल को लड़के खेलते थे अमेरिका में। तो फिर उसके बाद दोनों को मिक्स कर दिया। तो फिर उसके बाद हम बेसबॉल खेला, तो बेसबॉल में मैं नेशनल खेलने गया, पहली बार विशाखापट्टनम में नेशनल गया। उसके बाद हम भिलाई में गए और फिर अभी लेटेस्ट में पंजाब में हुआ था, तो वहां पे मैंने पार्टिसिपेट किया। उसको सेम गेम है, बस बॉल का फर्क है और मेजरमेंट का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है सर।
0: विशाल आप बहुत लकी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि इन दोनों खेलों में आपने क्या अंतर देखे और क्या समानताएं देखी, जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे।
1: समानताएं तो इसमें सर बहुत सी है। एक्चुअली में क्या है, ग्राउंड सेम डायमंड, प्लेयर नाइन खेलते हैं, इक्विपमेंट सेम यूज होते हैं, बैट और बॉल का अलग अलग होता है सर। एक्चुअली में क्या होता है, शॉर्ट बॉल का ग्राउंड 270 फीट की होमर रन होता है, उसमें 350 फीट होता है, जिसे सॉफ्ट बॉल में थोड़ा बड़ा बॉल होता है, उसमें थोड़ा छोटा क्रिकेट के साइज का बॉल होता है। दूसरा इसमें पिचिंग, उसमें थ्रोइंग पिचिंग की जाती है, इसमें अंडर आर्म पिचिंग की जाती है। दूसरा एक बैट का जो साइज होता है वो जो लगभग 34 का होता है, तो उसमें 34 तो होता है बट उसका जो बैरल होता है उसकी लंबाई थोड़ी बड़ी होती है सर। और सब कुछ सेम है सर, तो मजे आए कॉमन गेम। तो थोड़ा हल्का सा जो ग्राउंड 60 फीट का जो होम लाइन होती है उसमें 90 फीट की होती है सर। बाकी दोनों गेम अच्छे हैं सर, दोनों सेम है, बस बॉल का फर्क है सर।
0: जी विशाल, और विशाल किसी भी गेम में प्लेयर के लिए नेशनल खेलना एक सपना होता है, और आपने दो गेम में नेशनल खेला है, तो नेशनल और इंटरनेशनल के बीच आपका क्या फर्क रह गया, आपने इंटरनेशनल से कैसे दूर रह गए?
1: सर एक्चुअली में सॉफ्टबॉल अभी इंडिया में डेवलप गेम है, डेवलप हो रहा है। इसका इंटरनेशनल लेवल पे इंडिया की रैंकिंग 58 पे है। कैंप लगा था उज्जैन में तो हम गए थे, पर उसमें जाना टीम कैंसिल हो गई, तो उसमें हम नहीं जा पाए।
0: तो अब विशाल आपसे जानना चाहेंगे कि आप बहुत अच्छे प्लेयर हैं, दो दो गेम में नेशनल खेले हैं, उसके बाद भी आपने कोच बनने की राह क्यों चुनी?
1: सर अभी जो अपने इंडियन गवर्नमेंट की एक पॉलिसी आई थी खेलो इंडिया,
0: जी जी जी,
1: तो उसमें जो बच्चा किसी जिले से अपने पर्टिकुलर गेम में 2-3 नेशनल खेला हुआ है, तो उनके लिए पास चैंपियन अथॉरिटी के थ्रू एक खेलो इंडिया का एक सेंटर हर जिले में डेवलप किया गया था, जिस उसके जिले की डिमांड को देखते हुए, उसके तहत आप लोगों को गेम मिला था शॉर्ट बॉल
0: जी।
1: तो उसमें पार्ट टाइम एथलेटिक के लिए कोच की वैकेंसी आई थी, तो उसमें मेरा उसमें चयन हुआ। फिर उसके बाद मेरे को उनकी भारत सरकार द्वारा एनआईएस कराई गई, तो जैसे मैं एनआईएस करने गया तो फिर को वहां पे लगा कि कोच एक्चुअली होता क्या है।
0: जी जी जी।
1: मेरा सपना था कि मैं नई पीटीआई बन के किसी गवर्नमेंट स्कूल में से करेंगे, बट वहां जाने के बाद पता चला कि नहीं यार, पर्टिकुलर अपने गेम का एक कोच और पीटीआई मतलब कि सभी उसको गेम कराने पड़ेंगे, असली फीलिंग तो अपने गेम को खिलाने में है बच्चों से। तो फिर मेरे को लगा हुआ कि नहीं अब तो बनना तो कोच ही है, तो उसकी सर मेहनत करते रहे और अभी पार्ट टाइम लगे हुए हैं, देखो भविष्य में फिर अगर वैकेंसी आती है तो।
0: और इस समय जूनियर सब जूनियर और सीनियर और लड़के और लड़कियां यानी सभी प्रकार के खिलाड़ियों को आप सॉफ्टबॉल के लिए प्रशिक्षित कर रहे हैं, तो क्या रेस्पॉन्स बच्चों का आ रहा है?
1: सर बच्चों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। अभी 2025-26 के मैचमेंट बताते हैं आपको, तो हमारे लगभग 9 बॉयज और 3 लड़कियां
0: जी जी।
1: अभी ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप खेल के आई है, जो अपने वहाँ कर्नाटक में आयोजित हुई थी सर। और छोटे बच्चे में हमारे एक मयंक नागर है लड़का, तो वो नेशनल खेल के आया है। झालावाड़ में पहला एक गेम है जो गोल्ड मेडल नेशनल लेवल पे लेके आ रहा है, तो लोगों का क्रेज बढ़ रहा है। अभी जैसे गर्मियां बड़ी छुट्टियां लगी तो बच्चे आ रहे हैं।
0: और कौन सा फेडरेशन या संस्था सॉफ्टबॉल की खेल गतिविधियां आयोजित कराती है?
1: भारतीय सॉफ्टबॉल एसोसिएशन द्वारा इसको बहुत अच्छे से करवाया जा रहा है
0: जी, जी।
1: और इसके समय समय पर सीनियर जूनियर सब जूनियर प्रतियोगिताएं का आयोजन करवाते हैं हर साल। और सबसे अच्छी बात यह है कि झालावाड़ के बच्चे इसमें अधिकतर बहुत ही अच्छे तरीके से इसमें आगे बढ़ रहे हैं। अभी तक जब भी लगभग मैं जब से मैं खेल रहा हूँ, हर एक ऐसा कोई सा टूर्नामेंट नेशनल नहीं गया जिसमें झालावाड़ का बच्चा राजस्थान टीम में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा हो, चाहे वो सब जूनियर हो या सीनियर हो।
0: झालावाड़ के लिए वास्तव में यह गौरव की बात है कि नए खिलाड़ी उभर के आ रहे हैं और सॉफ्टबॉल में अपना नाम रोशन कर रहे हैं
1: जी।
0: प्रैक्टिस कितनी जरूरी है और पूरा रूटीन प्रैक्टिस का किस प्रकार से होना चाहिए?
1: सर किसी भी गेम के लिए सर वो बोला जाता है ना कि प्रैक्टिस मैन इज परफेक्ट, तो किसी भी गेम को खेलने से प्रैक्टिस बहुत जरूरी। तो हमारा रूटीन होता है, सुबह हम हमारे बच्चों को सुबह 6:30 बजे ग्राउंड बुला लेते हैं, तब स्कोप द स्कूल, तो उसमें हमारे बच्चे आते हैं, तो हम पहले उसको रनिंग फिर एक्सरसाइज स्पेसिफिक एक्सरसाइज नॉर्मल गेम स्किल्स जो उसका डेवलपमेंट करवाते हैं। उसके बाद जैसे गेम क्लोजिंग सेशन होता है तो उनको थोड़ा वार्म अप रनिंग करा के वार्म अप करवा के और कूल डाउन करके उनको छोड़ देते हैं। अभी एक खेलो इंडिया की एक पॉलिसी के तहत संडे साइकिलिंग जो चल रहा है उसमें भी हमारे बच्चे पार्ट ले रहे हैं, अच्छा रिव्यू आ रहा है, राजस्थान में हमारा फर्स्ट पे चल रहे हैं इसमें
0: जी, भी। जी, जी। और एक सॉफ्ट बॉल प्लेयर के लिए पिचिंग हिटिंग फील्डिंग बहुत महत्व रखती है, तो पिचिंग हिटिंग फील्डिंग में सुधार के लिए आप किस प्रकार की प्रैक्टिस खुद करते हैं और करवाते हैं अपने खिलाड़ियों को, और कौन कौन सी खास एक्सरसाइज?
1: इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है अपने मसल्स
0: जी, जी।
1: मसल्स के लिए हम बच्चों को वेट ट्रेनिंग करवाते हैं, साथ साथ रिस्ट्रोटेशन करवाते हैं। तो हमारे पास अभी इसमें योजना के तहत हमारे पास बच्चों के लिए जिम के इक्विपमेंट्स भी अवेलेबल हुए हैं, तो उससे हम बच्चों को थोड़ा एक्टिविटी करवाते हैं। साथ साथ अभी जो मैं एनाइज करने गया था तो वहाँ पे थोड़ा सा साइंस का भी उसमें यूज सिखाया था, तो उसको हम बच्चों पे अभी धीरे जनरेट कर रहे हैं, जैसे किन्सोलॉजी बायोमैकेनिक्स का उसमें यूज करके बच्चों के कार्डियो सिस्टम्स की कुछ मसल्स का जो भी इशू है उसको दूर करके, तो कोशिश करते हैं कि थोड़ा सा हो जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसी में वही है जो सर अभी आपने बताया मुझे कि पिचिंग, कैचिंग, बैटिंग, तो इससे इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि अगर आपकी पिचिंग अच्छी है तो आपका पिचर ही पूरा गेम जीता लेगा। तो पिचर की अलग से स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, इसके थाइस भी मजबूत होने चाहिए, पिचर यानी कि फुल ऑन फिट एंड स्पीड मैन प्लेयर।
0: जी जी जी, सॉफ्ट बॉल में अंडर आर्म फास्ट पिचिंग भारत में ऐसा माना जा रहा है कि अभी अभी नई नई आई है, तो कोच की हिस्से से आप प्लेयर्स को फास्ट पिचिंग की बुनियादी टेक्निक कैसे सिखाते हैं और कितने समय में वो इस प्रक्रिया से मास्टर बन सकते हैं?
1: एक्चुअली मैं खुद भी इसी गेम में पिचर रहा हूँ। नहीं एक्चुअली में नहीं तो क्या, अंडर आर्म पिचिंग तो होती थी बट वो क्या है जंप से नहीं होती थी, खड़े खड़े पिचिंग करना होता था। तो भी इंडिया में जैसे नहीं आई जंप करके ऐसे पैर लेग पैर पीछे आगे प्लेट पे दोनों पैर रखने पड़ते, पीछे रखे तो जंप करते। फर्स्ट प्रायोरिटी आपका लैंड कैसे हो रहा है, सीधा सा आपकी जब बॉल डालने से पहले आपका लैंडिंग अगर सही है तो पिच अपने आप सही जाएगी। उनको बताते हैं सिखाया गया कि आपको जैसे पॉकेट जैसे लोअर पेन थे उस पॉकेट के पास से बॉल चुन तो अच्छा जाएगा, आपकी फिंगरिंग कैसी होती, ग्रिप्स वगैरह जिसमें ग्रिप बनी सीम बनी होती है तो उस ग्रीस पकड़ के।
0: और विशाल, हार या जीत खेल का हिस्सा होता है, और इस अंतर को आप किस प्रकार से देखते हैं और हार के बाद प्लेयर्स को कैसे मोटिवेट करते हैं?
1: सर हार जीत एक बहुत बड़ा इमोशनल पार्ट्स हैं, ऐसे लोग तो जैसे देखा जाए इसमें दो तरीके स्पोर्ट्स जो प्लेयर होता है उसको दो चीजें से जुड़ा हुआ होता है, एक तो खुशी के आंसू एक गम के आंसू। जैसे हारते हैं तो मैं बच्चों को बहुत सारी चीजें ऐसे कहता हूँ कोई बात नहीं है, अच्छा अगले साल कुछ अच्छा करेंगे, कहीं ना कहीं हमें कमी रहेगी। मैं उनसे ये तक बोलता हूँ कि वो बच्चे से कि कहीं ना कहीं उनमें नहीं है, मेरे में कुछ हमने तुम्हें कम सिखाया, बाकी ठीक ये जैसा चल रहा है। और जीतने के बाद तो फिर आप सबको पता है कैसा क्या होता है।
0: और खेल के दौरान फोकस बनाए रखने के लिए आप किस प्रकार की स्ट्रेटजी अपनाते हैं?
1: हाँ ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स हैं, क्योंकि बच्चों का जैसे ग्राउंड में बाहर से होटिंग वगैरह होती है तो बच्चे का कैसे उसमें फोकस रहे, इसलिए मैं उनको एक सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट्स अभी जो योगा के द्वारा मिलता है लोगों को, तो मैं लगभग इनको बेसिकली इसी चीज़ों से रिलेटेड करके जिसको जुड़वाता हूँ, तो मैं सुबह इनको मेडिटेशन करवाता हूँ, दूसरा इनका फोकस ग्राउंड में रहे तो इसलिए उनके जो उसके कमांड्स होते हैं गेम्स के रूल जो अपन आउटिंग वगैरह करते हैं तो प्लेयर में से बोलते हैं कि थ्रो इन फर्स्ट बेस, तो उसका एक्टिवेशन आता है। और गेम ऐसा गेम है ये तो स्लो के साथ साथ फास्ट भी चलता है। क्रिकेट में क्या होता है कि बॉल पहुंचा नहीं पहुंचा, इसमें पर्टिकुलर जो नौ प्लेयर नाइन प्लेयर्स इन होते हैं तो कभी भी किसी के पास बोलते हो एक्टिवेशन होती है। और दूसरा हम फोकस के लिए बहुत सारी ड्रिल्स करवाते हैं इनसे, बॉल्स जैसे बॉल पर्टिकुलर बॉल थ्रोइंग करवाते हैं, ऐसे 100-150 बॉल से कंटिन्यू हिटिंग करवाते हैं, तो इनका फोकस बनाने के लिए बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं।
0: अच्छा विशाल, आपने सॉफ्ट बॉल में कई बार नेशनल खेला है
1: जी,
0: तो आपसे जानना चाहेंगे कि आपके करियर का सबसे यादगार मैच कौन था और उससे आपको क्या सीख मिली, क्या अनुभव आपके रहे?
1: सर मेरे करियर के में सबसे पहला तो मेरे जो फर्स्ट में खेला तो मैं हम फर्स्ट में विनर हुए तो एक अलग से कि नहीं यार अच्छा लगा भी जीतने के बाद, बट एक हमारा मैच था 2017 में हमने भरतपुर के खिलाफ खेला था स्टेट मैच ओपन स्टेट, तो वो सबसे यादगार मैच था हमारे लिए। हमारा बहुत अच्छा मैच चला था, उस मैच में लास्ट इनिंग में हम थोड़ा 4-5 से मुझसे बिछड़ गए थे हार गए थे, तो उसके बाद मेरे को मोटिवेशन मिला हमारे सभी दोनों कोच जो मेरे को सपोर्ट करते हैं आज, उन्होंने मेरे को समझाया, मैं समझाया थोड़ा सा ऐसा इमोशनली हो गए थे उस टाइम, इतना खेल इतना टाइम तो लंबा मैच चला फिर हम हारे, तो उस दिन से मेरे को सीख मिली कि नहीं अच्छा मेहनत करना चाहिए, साथ साथ आपको क्या क्या हमें कमियां रह गई तो उस पर मेहनत करी, तो वहां से थोड़ा मोटिवेशन मिला। और मेरे जीवन का सबसे यादगार मैच देखा जाए तो वही था, क्योंकि इतनी भीड़ इतनी गैदरिंग झालावाड़ और भरतपुर के मैच को देखने इतनी पब्लिक थी, ऐसे बिल्कुल से तनातनी और अच्छा माहौल में अच्छा मैच चल रहा था, मजे आए।
0: जी जी जी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशाल हम देखें तो हम देखते हैं कि विदेशी टीमों के आगे हमारी भारतीय टीम थोड़ी कमजोर नजर आती है, तो क्या ऐसी वजह है जिनकी वजह से हमारा प्रदर्शन कमजोर सा रहता है?
1: मेरे मेजर जनरल जानकारी से हिसाब से बता रहा हूँ कि बच्चे क्या है हमारा इंडिया की जो टीम जो जाती है एक्चुअली में क्या है पर्टिकुलर उसी बेसिस पे उसी गेम्स के जुड़े हुए लोग हैं ठीक है, पर वो जो टीम जो जाती है उसमें एक्चुअली में पर जो सामने जो टीमें जो आती है इंटरनेशनल लेवल पे जो आती है उनका ऑलरेडी उनकी अच्छा डेवलपमेंट होता है, बहुत लंबी प्रोसेस से आते हैं अच्छी इक्विपमेंट्स, तो हमारे यहाँ थोड़ा सा इशू है कि गेम अभी अच्छे से अपनी कंट्री में डेवलप नहीं हो पाया, जब डेवलप हो जाएगा तो फिर कौन जापान कौन सब इंडिया सबसे बेस्ट होगा।
0: और फिलहाल हमारे देश में हम देखते हैं कि क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और कबड्डी जैसे खेल बहुत पॉपुलर हैं, और इन सब के बीच में आप सॉफ्ट बॉल को कहां पाते हैं और हमारे देश में आप इसका क्या भविष्य देखते हैं?
1: सर इसका भविष्य तो बहुत अच्छा है, एक्चुअली में गेम बहुत अच्छा है, दूसरा आप देखो तो मैं तो मेरे जनरल मेरे गेम को मुझे अच्छा प्यार है तो मैं उसकी तारीफ करूंगा, बट नहीं कहीं ना कहीं सॉफ्ट बॉल का बहुत अच्छा भविष्य, किस किस हर चीज का डेवलपमेंट हो रहा है, साथ साथ मेंटली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब बॉल आ रहा है, किसको कहाँ थ्रो करना है। अब ऐसा नहीं क्रिकेट एक रन लेके तो दौड़ लिया डक, ऐसा नहीं है 24 घंटे हर प्लेयर को एक्टिव, जब गेम खेलेगा तो उसको एक्टिव रहना पड़ेगा कि कब बॉल आ रही है, किस बेस पे थ्रो करना है।
0: जी, जी,
1: थोड़ा नियम थोड़ा सा अलग हटके है, थोड़ा रूल्स तो वो भी है और ठीक है, अपना गेम है तो, और अच्छा खुशी मिलती है लोगों को हर दिन जो नो प्लेयर खेलते हैं, हर टाइम गेम के टाइम एक्टिव रहना पड़ता है, कब किसके पास बॉल आ रही है, अच्छे से बॉल पहुंच पा रही है।
0: विशाल, आप सॉफ्टबॉल और बेसबॉल के नेशनल प्लेयर हैं, साथ ही कोच के रूप में सॉफ्टबॉल के प्लेयर भी इस वक्त तैयार कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप अपने खुद के खेल जीवन को कहां तक देखते हैं, आगे आपका क्या लक्ष्य है?
1: सर मेरा लक्ष्य तो अभी गवर्नमेंट जॉब में अगर मैं कोच बनता हूं तो मेरे को कुछ इससे बड़ा कुछ तो क्या होगा, आने वाला मेरा यही भविष्य है कि मैं जितना हो सके मेरी तरफ से प्रयास करूं कि झालावाड़ से अच्छे प्लेयरों को निकाले, हम साथ साथ राजस्थान की भी टीमें अच्छी जाए, हम उसके लिए पूरे दिल और जान से मेहनत करेंगे, साथ साथ मेरे जो कोच हैं वो भी मुझे आज भी सपोर्ट करते हैं, जैसे बात करूं मैं मेरे कोच दलीप सर हैं, कृपा संघ के सर जो खेल अधिकारी हैं उनका मेरा सबसे बड़ा सपोर्ट है मेरे पे, साथ साथ विनोद सर है हमारे, तो ये लोग हमसे जुड़े हुए तो मेरे साथ बहुत प्रयास करते हैं लोग, मेरे से ज्यादा कहीं ना कहीं ये लोगों ने मेरे को आज जो भी हूं मैं इनकी बदौलत हूं तो ये लोग चाहते हैं, तो साथ साथ ये भी आज जिस तरह से भी इनके व्यक्तिगत जीवन से भी आज जुड़े हुए हैं इतने सफर के बाद, तो मेरे को लगता है कहीं ना कहीं इनके साथ जुड़ के मैं भी कुछ अच्छा करूं, और अगर गवर्नमेंट कोच लगते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, तो उसके साथ हम गेम का वो डेवलप कर पाएंगे।
0: विशाल, आप अपने लक्ष्य में जरूर कामयाब हों, सॉफ्टबॉल के कुछ ऐसे खिलाड़ी तैयार कर पाए जो की नेशनल ही नहीं इंटरनेशनल स्तर पर भी देश का गौरव बढ़ाएं और झालावाड़ का मान बढ़ाएं। इस बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद, नमस्कार।
2: अभी आप सुन रहे थे सॉफ्टबॉल कोच विशाल चौधरी से मोहम्मद सादिक की बातचीत, यह आकाशवाणी केंद्र झालावाड़ का अंशदान था। लीजिए अब सुनिए गोल्फ खिलाड़ी शिक्षा जैन से डॉक्टर गौरव यादव की बातचीत।
3: श्रोताओं नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात गोल्फ प्लेयर शिक्षा जैन से करवा रहे हैं, आइए जानते हैं उनके सफर के बारे में।
4: शिक्षा, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
5: थैंक यू।
4: शिक्षा, आप अपने बारे में बताइए।
5: मैं जयपुर से हूँ और मैं एक नेशनल और इंटरनेशनल गोल्फर हूँ, और मेरी मम्मी का नाम मेघा जैन है और मेरे पापा का नाम सनी जैन है।
4: आप गोल्फ खेलती हैं, आपके टी शर्ट के ऊपर जो इंडिया का फ्लैग है वो भी मुझे नजर आ रहा है, निश्चित रूप से आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है इंटरनेशनल लेवल पे, ये बहुत ही अच्छी बात है। आप जैसे बच्चे जब आगे आकर खेलते हैं तो बहुत सारे बच्चों को और प्रेरणा मिलती है। शिक्षा, आप बताइए कि गोल्फ की शुरुआत आपके जीवन में कैसे हुई?
5: जब मैं अराउंड 8 इयर्स की थी तो मेरे पापा के एक फ्रेंड ने हमें बोला था कि हमें एक बार गोल्फ ट्राई करना चाहिए। उससे पहले मैं बैडमिंटन खेलती थी, तो जब मैंने फर्स्ट टाइम गोल्फ ट्राई किया मुझे धीरे धीरे गोल्फ में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आने लगा। मैंने इन वन ईयर मैचेस खेलने स्टार्ट किए और मैं मैचेस जीतने लगी और मुझे गोल्फ बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इसमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत होनी चाहिए, आपकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत होनी चाहिए, इसलिए तब से मैंने गोल्फ स्टार्ट किया है।
4: बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में आपने मेडल्स भी जीते हैं, आपने कितने मेडल्स जीते हैं अभी तक?
5: अभी तक मैंने अप्रॉक्स 100 अराउंड मेडल्स ट्रॉफीज जीती है।
4: ओके, और आपकी रैंकिंग क्या है, श्रोताओं को बताएं?
5: मेरी रैंकिंग इंडिया में अपनी एज कैटेगरी में सेकंड है, और ओवरऑल इंडिया में नेशनल्स में मेरी रैंकिंग इन एवरी कैटेगरी लाइक सीनियर्स में मेरी 10th है, और वर्ल्ड रैंकिंग मेरी अभी 1600 है।
4: वेरी नाइस। आपने बहुत ही छोटी उम्र में गोल्फ खेलना शुरू किया, और जो हमारे लिसनर्स हैं उनको हम अगर थोड़ा बताना चाहें कि गोल्फ कैसे खेलते हैं, गोल्फ में क्या क्या ध्यान रखने वाली बातें होती हैं, इसके बारे में आप हमें बताइए।
5: सबसे ज्यादा जो चीज मुझे अट्रैक्ट करती है गोल्फ के बारे में वो है कि गोल्फ में 14 तरह के क्लब्स होते हैं, 14 तरह के क्लब्स होते हैं, और हर क्लब का एक डिफरेंट रोल होता है।
4: क्लब का मतलब हम बैट से समझ सकते हैं?
5: हाँ, काइंड ऑफ।
4: जिस तरह से बैट से बॉल को हिट किया जाता है,
5: हाँ,
4: उसी तरह से जो गोल्फ का जो बल्ला होता है उसको क्लब कहते हैं।
5: हाँ, वो काफी डिफरेंट होता है। सो हर क्लब का एक डिफरेंट रोल होता है, लाइक बंकर्स भी होते हैं, मिट्टी होती है, अगर आपको उसमें से मारना है तो आपका क्लब डिफरेंट होगा। अगर ग्रीन होती है, अगर आपको ग्रीन के पास में से मारना है तो उसका क्लब डिफरेंट होगा। अगर आपको ग्रीन के ऊपर से मारना है तो उसका क्लब डिफरेंट होता है, जैसे उसको पटर बोलते हैं, ग्रीन के पास वाले को सैंडविच बोलते हैं। अगर बंकर्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लाइक कुछ ग्रीन के पास होते हैं जिनके लिए लॉब वेज यूज होता है, कुछ ग्रीन से काफी दूर होते हैं उनका डिफरेंट टाइप होता है, और जैसे कुछ नॉर्मली फेयरवेज होते हैं और ग्रीन में डिस्टेंस होता है, तो उनके अलग होते हैं, अगर आप रफ में से मार रहे हो तो उनके अलग होते हैं, आपको लो शॉट मारना है उसके लिए अलग है, आपको हाई शॉट मारना है उसके लिए अलग।
4: तो बहुत सारी टेक्निकल चीजें इसमें हमें

0: ध्यान रखनी होती है। इसके साथ जब हम गोल्फ खेलते हैं तो हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है?
1: बहुत सारे चैलेंजेस है, जैसे पहले मैंने बोला डिफरेंट क्लब्स होते हैं, तो जैसे मान लो आपके ग्रीन और आपके शॉट में अराउंड 130 यार्ड्स का डिफरेंस है, डिस्टेंस है, तो अब आपको उसके लिए पहले हवा चेक करनी पड़ेगी कि हवा हेड है टेल है। हेड मतलब कि अगर हवा पीछे की साइड आ रही है, टेल मतलब अगर हवा आगे लेके जा रही है। तो हवा का भी एक रोल होता है, अगर वो लेफ्ट टू राइट है या फिर वो राइट टू लेफ्ट है, तो उन सब का ध्यान देना पड़ता है। और फिर दूसरा वो आपको डिसाइड करना पड़ता है, लाइक आपके खुद के एडजस्ट होता है, जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आपको इतना आइडिया तो रहता है कि आप कहाँ इतना क्लब इतना जाता है। ये चैलेंजेस, फिर पटिंग, चिपिंग, बंकर, जैसे मैंने बताया मिट्टी से, सैंड से, नियर ग्रीन या फिर ग्रीन पे। और फिर अराउंड ये मैच 6 आवर्स चलते है, एक मैच 18 होल्स का, तो वही होता है आपकी स्टेबिलिटी, आपका स्टेमिना और स्ट्रेंथ, वो बहुत ज्यादा मैटर करती है।
0: अच्छा, जैसे धूप में खेलना होता है तो उसमें आप किस तरह से मैनेज करते हैं?
1: तो लाइक
0: 6 आवर्स तो काफी लंबा टाइम हो गया।
1: हाँ, जैसे बहुत ज्यादा समर्स होते हैं, लाइक अराउंड 35-40 degrees हम यूजुअली खेलते हैं, तो वो अराउंड पीक टाइम होता है हमारा, जनरली 11 to 4 o'clock होता है। सो लाइक फुल पीक टाइम, तो उसमें हम लाइक वी हैव अम्ब्रेलास होते हैं, तो हमारी जो ट्रॉलीज होती है उन पे अम्ब्रेला का स्टैंड बना हुआ होता है, या फिर हम जब वॉक करते हैं शॉर्ट्स के बीच में हम अम्ब्रेला ले लेते हैं। और फिर हम बहुत सारी चीजें जैसे वाटर, इलेक्ट्रोल्स, हमें वो सब कैरी करने पड़ते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा धूप होती है और हमें बीच में लाइक रेस्ट नहीं मिलता है। आपको जो भी कंज्यूम करना है तो वो आपको चलते चलते ही कंज्यूम करना पड़ता है, जैसे वाटर हो गया, इलेक्ट्रोल हो गए, और बीच में जो होल्स होते हैं तो फिर मम्मा या कोई भी बीच में लाइक नींबू पानी या फिर कोई तरह का जूस दे देते हैं।
0: तो मम्मा आपको सपोर्ट करती है गेम में?
1: हाँ, काफी।
0: अच्छा,
1: मम्मा पापा दोनों का ही बहुत ज्यादा रोल है।
0: अच्छा, जैसा आपने बताया कि फिटनेस बहुत जरूरी है, तो फिटनेस के लिए आप क्या स्पेशल करती हैं, क्या ध्यान रखती हैं?
1: फिटनेस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है गोल्फ में, तो मेरे कोच है सागर सर, वो चंडीगढ़ से है, तो मैं चंडीगढ़ जाती हूँ कोचिंग लेने उनसे। वो लाइक क्रिकेटर्स जैसे युवराज, शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, उन सबको भी वही ट्रेन करते हैं फिटनेस में, एंड वो मुझे कार्ड दे देते हैं, फिर मैं जयपुर आके उनको रेगुलर बेसिस पे फॉलो करती हूँ।
0: जैसे बहुत से बच्चे भी हमें सुन रहे हैं, आप उनको क्या बताना चाहेंगे कि कौन से रूटीन को आप फिटनेस के लिए फॉलो करती हैं जिससे वो भी सीख सकें या कोई प्रेरणा ले सकें?
1: मैं गोल्फ स्पेसिफिक रूटीन भी करती हूँ और नॉर्मल वर्कआउट रूटीन भी होता है मेरा, मोस्टली गोल्फ स्पेसिफिक होता है, लाइक कोर, शोल्डर्स, लेग्स, बैक, क्योंकि गोल्फ में सबसे ज्यादा रोल कोर, बैक, शोल्डर्स, लेग्स, मतलब हर एक बॉडी पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं ट्राई करती हूँ कि मैं गोल स्पेसिफिक भी करूँ और हर बॉडी पार्ट को अच्छे से ट्रेन कर पाऊँ।
0: इसमें आप इतना समय देती हैं तो साथ में पढ़ाई भी करनी होती है, तो उसको कैसे मैनेज करती हैं?
1: मैं जनरली जयपुर में मैं उतना नहीं रहती हूँ बिकॉज मेरे नेशनल्स चलते हैं, तो मैं अराउंड 10 days ही रहती हूँ जयपुर में इन अ मंथ, बट जब भी होता है तब मैं ट्राई करती हूँ कि मैं स्कूल जाऊँ। सो हाँ,
0: तो आपको तो फिर डबल मेहनत करनी पड़ती है।
1: हाँ, पढ़ाई में, क्योंकि मेरा बहुत ज्यादा बैकलॉग हो जाता है, मैं काफी मेरा सिलेबस छूट जाता है, पर जैसे भी एग्जाम्स है तो 1 month काफी सारी पढ़ाई एक साथ करनी पड़ेगी।
0: स्पोर्ट्स से हमें वो कंसंट्रेशन की पावर मिलती है जिससे हम, हाँ, डिसिप्लिन सिखाता है स्पोर्ट्स हमें, तो हम कम समय में भी क्यूरिकुलम को कवर कर सकते हैं।
1: हाँ, क्योंकि स्पोर्ट्स सबसे ज्यादा आपको डिसिप्लिन सिखाता है, कंसिस्टेंसी स्पोर्ट्स में होना बहुत जरूरी है, सो वो सब स्पोर्ट्स आपको बहुत ज्यादा सिखाता है।
0: गोल्फ की बात करें, कौन से खिलाड़ी हैं जिनको आप फॉलो करती हैं या जिनसे आप प्रेरित होती हैं?
1: सबसे ज्यादा मैं टाइगर वुड्स, रॉरी मैकलरॉय और स्कॉटी शेफलर। सो स्कॉटी शेफलर भी वर्ल्ड नंबर 1 है, तो वो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, क्योंकि जिस तरह रॉरी मैकलरॉय, उनका जो बॉल स्ट्राइकिंग का जो वे है, उनका जो फोकस है, कि जिस तरह वो मैचेस खेलते हैं, उनका जो डिसिप्लिन है, वो सब मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है। इंडिया के प्लेयर्स शुभांकर शर्मा एंड आदित्य अशोक दी, दोनों मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं, और अनिर्बान लहरी सर, तीनों मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करते हैं।
0: कौन कौन से कंट्रीज में आपने खेला और इंडिया को रिप्रेजेंट किया?
1: मैंने इंडिया को थाईलैंड, बैंकॉक, मलेशिया, सिंगापुर, इन सारी कंट्रीज में रिप्रेजेंट किया है। और मैंने थाईलैंड में 3 to 4 टूर्नामेंट्स खेले, थाईलैंड में लाइक डिफरेंट सिटीज जैसे चियांग में, बैंकॉक और हुआही, इन तरह की कंट्री सिटीज में मैंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया है।
0: ओके, इसके अलावा भी कोई आपकी हॉबीज हैं?
1: जनरली तो उतना नहीं टाइम मिल पाता हॉबीज को, बट मेरी हॉबीज है डांस, आर्ट एंड क्राफ्ट एंड लॉन टेनिस।
0: करियर अपॉर्चुनिटीज को आप किस तरह से

0: हैं और अपने आप को आप कहां देखती हैं आज के टाइम में?
1: मेरे को इंडिया के लिए गोल्फ में ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल लाना है और मैं वही अपने आप को स्टैंड करती हूँ और मैं वही चाहती हूँ।
0: जब लक्ष्य का हमें पता होता है और बहुत ही छोटी उम्र में हमारा प्रयास भी उसी दिशा में होता है। चलते चलते आपसे हम ये जानना चाहेंगे, हमारे जो श्रोता हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको आप क्या मैसेज के तौर पे कहना चाहेंगे?
1: मैं कहना चाहूंगी कि आपका जिस स्पोर्ट में इंटरेस्ट है, क्योंकि सबका इंटरेस्ट अलग होता है, किसी का बैडमिंटन में, किसी का गोल्फ में, किसी का लॉन टेनिस में, आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है आपको वही स्पोर्ट फॉलो करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी चीज को बिना मन से करोगे तो वो चीज नहीं हो सकती। गोल्फ मेरे लिए सब कुछ हो चुका है तो हाँ।
0: हमारी शुभकामनाएं आपके साथ यही है कि आप गोल्फ में आगे से आगे बढ़ते जाएं और इंडिया को रिप्रेजेंट करें।
1: थैंक यू सो मच।
2: अभी आप सुन रहे थे गोल्फ खिलाड़ी शिक्षा जैन से डॉक्टर गौरव यादव की बातचीत। यह आकाशवाणी केंद्र जयपुर का अंशदान था। अब हमें आगे दीजिए, अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।

0: या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे, तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चुरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज। ये आकाशवाणी का प्रसारण है, आप सुन रहे हैं 100.7 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी चूरू। क्या आप चाहते हैं कि आपका व्यवसाय, आपकी सेवाएं और आपके उत्पाद सीधे लाखों लोगों तक पहुंचे, तो आइए जुड़िए आकाशवाणी चूरू के साथ। आकाशवाणी चुरू क्षेत्र की सबसे भरोसेमंद और लोकप्रिय आवाज, जहां से आपका विज्ञापन पहुंचेगा हर घर हर दिल तक। कम लागत में अधिकतम पहुंच, यही है आपका सही निवेश, आपके ब्रांड की सही पहचान। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें आकाशवाणी चुरू से और दीजिए अपने व्यवसाय को एक नई उड़ान। आकाशवाणी चुरू, आपकी पहचान हमारी आवाज।
1: अंतरालों के बाद श्रोताओं का कार्यक्रम में स्वागत है। अभी श्रोता सुन रहे थे आकाशवाणी केंद्र जयपुर से रिले कार्यक्रम खेल जगत।

श्रोताओं, रात्रि के 10:30 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे चंदन दास की आवाज में गाई कुछ गैर फिल्मी

0: अभी श्रोता सुन रहे थे सुगम संगीत का कार्यक्रम। श्रोताओं, आज इस कार्यक्रम में आपने चंदन दास को सुना। अब ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के चूरू केंद्र से बोल रहे हैं, FM 100.7 MHz पर। रात्रि के 11 बजने वाले हैं। अब आप दिल्ली केंद्र से सुनेंगे पहले हिंदी में और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार।
1: के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राज

भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा,

0: अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचू सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
1: High international crude prices and
2: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
1: Fertilizer and foreign exchange.
0: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देश भर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। President Draupadi Murmu today conferred Padma Awards to 66 eminent personalities for the year 2026 at the civil investiture ceremony held at Rashtrapati Bhavan. Of them, 2 were conferred with Padma Vibhushan, 6 with Padma Bhushan and 58 personalities were conferred with Padma Shri. Noted film actor Dharmendra Singh Deol has been honored with the Padma Vibhushan posthumously for his contribution in the field of art. The actor's wife and Lok Sabha MP Hema Malini received the award. The legendary Indian violin maestro Dr. N. Rajam were also honoured with Padma Vibhushan. During the ceremony, Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi, Union Ministers Amit Shah, Gajendra Singh Shekhawat and H.D. Kumaraswamy were also present on the occasion. In Jammu and Kashmir, all tourists stranded in cabins of the Gulmarg Gondola ropeway were rescued safely after a major technical snag halted operations at the famous tourist resort. Officials today said more